नमस्कार, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। आज दिन है बुधवार, शक संवत 1948, सावन महीने की आज 21वीं तिथि है। साथ ही अंग्रेजी सन 2026 अगस्त महीने की आज 12वीं तारीख है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हो चुके हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन के साथ मैं मीना स्वागत करती हूं आज की पहली सभा में।

FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। अब से कुछ ही समय में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की जाएंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। विधेयक के अंतर्गत संविधान की पहली अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। लोकसभा ने इसे कल ही पारित कर दिया है। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। वहीं लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और उसे पारित करने की प्रक्रिया होगी। कल विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही एक बार फिर बाधित रही। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
1: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायंफ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माय लाइफ माय स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जीवन की यात्रा का एक अत्यंत व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में व्यापक पौधारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। श्री चौहान की अपील पर वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी अपने अपने गांवों और शहरों में पौधारोपण अभियान चलाएंगे। इस अवसर पर देश भर में 50,000 से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन कल 18वें दिन भी जारी रहा। विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने शेयर बाजारों को वित्तीय नतीजों को जमा करने संबंधी अपने विनियमनों के अंतर्गत सूचीबद्ध ऋण साधन वाले नगर पालिकाओं की समय सीमा में छूट दी है। कल जारी किए गए नियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध नगर पालिकाओं को अब बिना ऑडिट वाले पहली छमाही के नतीजे 60 दिनों के भीतर जमा करने होंगे, जबकि पहले ये समय सीमा 45 दिन की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
2: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराने जाने की जरूरत है।
0: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित कॉमनवेल्थ

0: फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करुण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिली किए गए हिंदी में समाचार। FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफ्रंग केंद्र है। आइए अब आपको जानकारी दे देते हैं आज की पहली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

अब से कुछ ही समय में यानी कि सुबह 6:10 पर आप आनंद ले पाएंगे कुछ भक्ति गीतों का। महिलाओं पर केंद्रित फिल्मी गानों का आनंद आप ले पाएंगे सुबह 6:30 पर।

सुबह 7 बजे आप सुन पाएंगे हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 7:05 पर आपको आज के दिन की विशेषताओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। सुबह 7:30 पर आप आनंद ले पाएंगे युवा पर आधारित कार्यक्रम का, जिसकी प्रस्तुतकर्ता रहेंगी अंकिता पॉल।

सुबह 8 बजे आप सुन पाएंगे समाचार प्रभात रिले की जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 8:15 पर आप सुन पाएंगे देशभक्ति गीत। नॉर्थ ईस्ट न्यूज आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से सुबह 8:30 पर।

सुबह 8:40 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सुरों की रंगोली। सुबह 9 बजे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से रिले किए जाएंगे पुआर आंचलिक बातरी।

सुबह 9:15 पर स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम को आरंभ करते हुए सबसे पहले आपको सुनवाएंगे खेलमा कार्यक्रम के तहत खेलमा भक्ति गीत गुलजनली जीते और उनके साथियों की आवाज में। 9:25 पर रांगखोल कार्यक्रम के तहत रांगखोल लोकगीत आप सुन पाएंगे ललदारथंग रांगखोल और उनके साथियों की आवाज में। जयंतिया कार्यक्रम के तहत जयंतिया भक्ति गीत आप सुन पाएंगे सुबह 9:35 पर। गायक कलाकार रहेंगे इविशा शदाब और उनके साथी। दार्थंग सांगी ब्याते और उनके साथियों के गाए ब्याते भक्ति गीत आप सुन पाएंगे सुबह 9:45 पर।

सुबह 10 बजे से विविध भारती के कार्यक्रम का आनंद ले पाएंगे आप आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से शाम के 5 बजे तक। लेकिन उसी बीच आप सुन पाएंगे दोपहर 12 बजे हिंदी में समाचार, 1 बजे हिंदी में समाचार, दोपहर 2 बजे मिड डे न्यूज़,

2:15 पर दोपहर समाचार और शाम 4 बजे हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। श्रोताओं, ये थी आज की पहली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है।

श्रोताओं, भी आप आनंद ले रहे थे भक्ति गीतों का। ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। आइए आरंभ करते हैं महिलाओं पर केंद्रित फिल्मी गानों के इस सफर को। और सबसे पहले

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे दिल तो पागल है फिल्म का एक गीत सुनिधि चौहान और उदित नारायण की आवाज़ में। आइए अगला गीत सुनते हैं कमाल खान और सुनिधि चौहान की आवाज़ में, मैंने प्यार क्यों किया फिल्म से।

श्रोता, हम आ चुके हैं कार्यक्रम के आखिरी गीत पर। ये गीत आइए हम सुनते हैं अभिजीत भट्टाचार्य जी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है बादशाह।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही महिलाओं पर केंद्रित फिल्मी गाने यहीं पर समाप्त होते हैं। ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। अब से कुछ ही समय में आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र सीरी लिखी जाएंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का

0: प्रावधान है। लोकसभा ने कल ही इस विधेयक को पारित कर दिया था। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। वहीं लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और उसे पारित करने की प्रक्रिया होगी। कल विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों ही सदनों की कार्यवाही एक बार फिर बाधित रही। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा को तैयार है।
1: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को संबोधित भी करेंगे। ये आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जीवन की यात्रा का एक अत्यंत व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में व्यापक पौधारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। श्री चौहान की अपील पर वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी अपने अपने गांवों और शहरों में पौधारोपण अभियान चलाएंगे। इस अवसर पर देश भर में 50,000 से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। नागरिकों से अपील करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का पर्व है। उन्होंने कहा कि देश के हर त्योहार के पीछे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जीवन को बेहतर बनाने का संदेश छिपा होता है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन कल 18वें दिन भी जारी रहा। विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन को और तेज करने की घोषणा की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का विभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई भी बदल नहीं सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। कर्कटिका वावू के अवसर पर आज सुबह सुबह केरल में हजारों श्रद्धालुओं ने पितृतर्पण देना शुरू किया। हिंदू परंपरा में मलयालम महीने कर्कटम की अमावस्या को दिवंगत आत्माओं की शांति और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए अनुष्ठान करने का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। नाइजीरिया के लागोस में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग का कहना है कि पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार रिले किए गए थे आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। आइए अब सुनते हैं आज का पोएम ऑफ द डे।
3: मेरा नाम अर्पिता है और आज मैं जागो प्यारे का कविता बोलने जा रही हूँ। उठो लाल, अब आंखें खुलो, पानी लाए हो, मुख धो लो,

0: बीती रात कमर दल फूले, उनके ऊपर बोरे झूले, चिड़िया चहक उठी, पैरों पर बहने लगे, हवा आती सुंदर, नम है नयारी, लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाए, और भोर हुआ, सूरज आँख आया, जल में परी सुनहरी छाया, ऐसा सुंदर समय न खो, मेरे प्यारा अब मत सो। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऊध।
1: पांचवी कक्षा में पढ़ने वाली अर्पिता दास की जुबानी आपने सुनी ये प्यारी सी कविता। आइए बात करते हैं आज के दिन की विशेषताओं के बारे में।

श्रोताओं, आज 12 अगस्त है। आज के दिन देश विदेश के इतिहास में बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। जानेंगे उन्हीं महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, साथ ही जानेंगे उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम जिनका जन्म आज के दिन हुआ, साथ ही जानेंगे उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम जिन्होंने आज के दिन दुनिया को अलविदा कहा। शुरुआत करते हैं आज के दिन घटी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। अमेरिका के शिकागो शहर की स्थापना 1833 में हुई थी आज के दिन। आज के दिन एम्स्टर्डम में नवे ओलंपिक खेल 1928 को समाप्त हुई। नासा ने 1960 में अपना पहला सफल संचार उपग्रह इको ए प्रक्षेपित किया आज के दिन। 30वें ओलंपिक खेल का लंदन में 2012 को समापन हुआ आज के दिन। श्रोताओं, ये थी आज के दिन घटी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। आइए अब जानते हैं उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम जिनका जन्म आज के दिन हुआ। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के जनक और भारतीय भौतिक वैज्ञानिक विक्रम साराभाई का जन्म 1919 को हुआ था आज के दिन। भारतीय क्रिकेटर ज्ञानेन्द्र पांडे का जन्म 1972 को हुआ था आज के दिन। श्रोताओं, ये थे उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम जिनका जन्म आज के दिन हुआ। आइए अब जानते हैं उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम जिन्होंने आज के दिन दुनिया को अलविदा कहा। भारत के लिए अपना जीवन समर्पित कर देने वाले अंग्रेजी व्यक्तित्व जॉर्ज सिडनी अरुंडेल का निधन वर्ष 1945 को हुआ था आज के दिन। प्रसिद्ध इतिहास सेवत्ता विचारक और निबंधकार भगवत शरण उपाध्याय का निधन 1982 को हुआ था आज के दिन। श्रोताओं, ये थे उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम जिन्होंने आज के दिन दुनिया को अलविदा कहा।

श्रोताओं, आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हर वर्ष 12 अगस्त को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यह दिन युवाओं की प्रतिभा, ऊर्जा, रचनात्मकता और समाज के विकास में उनके योगदान को सम्मान देने के लिए समर्पित है। युवा किसी भी देश की महत्वपूर्ण शक्ति होती है, क्योंकि उनकी नई सोच और विचारों में समाज और देश को बेहतर दिशा देने की क्षमता होती है। ये दिवस युवाओं से जुड़े मुद्दे, उनकी चुनौतियों और उनके अधिकारों पर ध्यान आकर्षित करने का भी अवसर प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 की विषय वस्तु है अलग अलग परिस्थितियां, समान आकांक्षाएं। इस विषय वस्तु का संदेश है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले युवाओं की परिस्थितियां, संस्कृति और जीवन के अनुभव भले ही अलग हों, लेकिन उनके सपने और उम्मीदें काफी हद तक समान है। हर युवा बेहतर शिक्षा, रोजगार के अवसर, समानता, सम्मान, सुरक्षा और एक उज्जवल भविष्य चाहता है। इसीलिए युवाओं की अलग अलग परिस्थितियों को समझते हुए उन्हें आगे बढ़ने के समान अवसर देना आवश्यक है। आज के युवा शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खेल, कला, उद्यमिता और सामाजिक सेवा सहित अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। वे जलवायु परिवर्तन, बेरोजगारी, असमानता और अन्य सामाजिक समस्याओं के समाधान में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 हमें याद दिलाता है कि युवाओं का केवल देश का भविष्य नहीं, बल्कि वर्तमान में बदलाव के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में भी माना जाना चाहिए। जब युवाओं का सही अवसर, मार्गदर्शन और अपनी बात रखने का मंच मिलता है, तो वे अपने सपनों के साथ साथ समाज और राष्ट्र के विकास को भी दिशा दे सकते हैं।

श्रोताओं, आज के दिन को ओडिशा में चितलगी अमावस्या के रूप में भी मनाया जाता है। चितलगी अमावस्या ओडिशा में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे मुख्य रूप से भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन बलभद्र एवं देवी सुभद्रा से जुड़ा जाता है। ये पर्व श्रावण मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस अवसर पर भगवान जगन्नाथ के मस्तक पर विशेष प्रकार के आभूषण, जैसे चिताव या चितलगी कहा जाता है, धारण कराया जाता है। श्रद्धालु भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और परिवार की सुख समृद्धि तथा मंगल की कामना करते हैं। चितलगी अमावस्या ओडिशा की समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक है। इस दिन मंदिरों में विशेष पूजा और धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। भगवान के को विभिन्न प्रकार के भोग अर्पित किए जाते हैं और भक्त श्रद्धा के साथ दर्शन करते हैं। ये पर्व भगवान जगन्नाथ का के प्रति भक्तों की आस्था और ओडिशा की विशिष्ट जगन्नाथ संस्कृति को दर्शाता है। साथ ही श्रोताओं, आज के दिन तमिलनाडु में आदि अमावस्या मनाई जाती है। आदि अमावस्या तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण धार्मिक दिवस है, जो तमिल माह आदि की अमावस्या को पड़ता है। ये दिन विशेष रूप से पूर्वजों की स्मृति और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। लोग अपने दिवंगत पूर्वजनों के लिए तर्पण और अन्य धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तथा उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। आदि अमावस्या का अवसर पर तमिलनाडु के विभिन्न पवित्र स्थानों और नदियों के किनारे बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्र होते हैं। कई लोग पवित्र स्नान करते हैं और अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। ये पर्व हमें अपनी पारिवारिक परंपराओं और पूर्वजों के प्रति सम्मान तथा कृतज्ञता की भावना को बनाए रखने का संदेश देता है।

श्रोताओं, आज के दिन को केरला में कर्किदका वायु मनाया जाता है, वावू मनाया जाता है। कर्किदका वावू केरला में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है, जो मलयालम महीने कार्किदकम की अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है। इस दिन लोग अपने दिवंगत पूर्वजों और पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी आत्मा की शांति और परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। इसे केरला की पितृ परंपरा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अवसर माना जाता है। इस अवसर पर श्रद्धालु सुबह नदियों, समुद्र तटों और

पवित्र जल शहायों में स्नान करते हैं और विशेष पितृतर्पण तथा अन्य धार्मिक विधियां करते हैं। चावल, तिल, जल और अन्य सामग्री अर्पित करके पूर्वजों का स्मरण किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन पूर्वजों को श्रद्धापूर्वक याद करने और उनके लिए किए गए अनुष्ठान से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। कर्कीदका वावू केरला की संस्कृति और पारिवारिक परंपराओं में गहरी जगह रखता है। तिरुवल्लम परशुद्रमा मंदिर, अलुवा शिव मंदिर और विभिन्न समुद्र तटों एवं नदी घाटों पर इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्र होते हैं। ये पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता, सम्मान और पारिवारिक संबंधों को याद करने का भी एक अवसर है।

श्रोताओ, आज भारत के महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई जी की जयंती है। इस खास दिन पर आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें। हर वर्ष 12 अगस्त को भारत के महान वैज्ञानिक और अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई की जयंती मनाई जाती है। उनका जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद, गुजरात में एक समृद्ध और प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। बचपन से ही विज्ञान और गणित में उनकी गहरी रुचि थी। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और भारत लौटकर वैज्ञानिक अनुसंधान का के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देना शुरू किया। वे केवल वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि एक दूरदर्शी विचारक और संस्थान निर्माता भी थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। उन्होंने ये समझा कि अंतरिक्ष विज्ञान का उपयोग केवल अंतरिक्ष की खोज के लिए नहीं बल्कि देश के विकास के लिए भी किया जा सकता है। उनके प्रयासों से 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी INCOSPAR की स्थापना हुई, जिसने आगे चलकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की नींव तैयार की। उन्होंने भारत में उपग्रह संचार, मौसम पूर्वानुमान, दुष्ट शिक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के अध्ययन जैसे क्षेत्रों में अंतरिक्ष तकनीक का उपयोग की मजबूत आधारशिला रखी। विक्रम साराभाई ने देश में वैज्ञानिक शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना और विकास में योगदान दिया है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला यानी PRL का विकसित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके नेतृत्व और दूरदर्शी सोच ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों को एक नई दिशा दी और आने वाली पीढ़ियों के वैज्ञानिकों को प्रेरित किया। 30 दिसंबर 1971 को उनका निधन हुआ, लेकिन विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में उनके योगदान आज भी भारत की प्रगति में दिखाई देता है। उनकी जयंती हमें ये संदेश देता है कि दूरदर्शी सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और दृढ़ संकल्प से देश के विकास के लिए नई राह बनाई जा सकती है।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे फिल्मी गीत, ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है।
1: आपके गीत दोस्तों, एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत, हर मंगलवार रात के 9 बजे, यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों, आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं।

श्रोताओं, आइए आरंभ करते हैं युवाओं पर आधारित कार्यक्रम। आज के युवाओं पर आधारित कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे खास बातचीत जीतू दास के साथ। विषय रहेगा यूथ लीडरशिप एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करता है अंकिता पॉल।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी दोस्त अंकिता और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हाफ लॉन्ग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर हमारा खास युवा कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आप सुन पाते हैं हर हफ्ते बुधवार सुबह 7:30 पर। श्रोताओं, युवा सिर्फ कल का भविष्य ही नहीं बल्कि आज की सबसे बड़ी ताकत भी है। जब एक युवा अपने सपनों के साथ साथ अपने समाज के लिए भी जिम्मेदारी उठाता है तब वो कई और लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाता है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स है मिस्टर जीतू दास, जो फैल्कन यूथ क्लब के फाउंडर है और यूथ एम्पावरमेंट और कम्युनिटी सर्विस के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनकी लाइफ जर्नी, उनकी एक्सपीरियंसेस और उनकी सोच के बारे में। सबसे पहले तो जीतू जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी हमारे आकाशवाणी हाफलों के स्टूडियो पे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी।
0: जी, तो मैं सबसे पहले चाहूंगी कि जैसे आपको सभी जानते हैं फैल्कन यूथ क्लब के फाउंडर के रूप में
1: जी।
0: लेकिन हर सफर की एक शुरुआत होती है, तो सबसे पहले मैं आपके बचपन से यूथ तक की आपकी जर्नी कैसी रही है?
1: हाँ जी, थैंक यू अंकिता जी और आकाशवाणी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे जैसे किसी को स्टूडियो में बुलाकर अपनी बातें रखने का मौका दिया आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं बेसिकली मैं तो उमरांगसू से हूँ, डिमासा का एक बहुत इंडस्ट्रियल टाउन कहा जाता है, टूरिज्म हब कहा जाता है। मेरा जन्म वहाँ पे हुआ उमरांगसू में ही, और मेरे जो पिताजी थे वो अभी फिलहाल तो रहे नहीं, वो गर्म पानी नाम के जगह से थे
0: जी। जी,
1: तो वहीं पे पला बड़ा और वहीं पे सीखा है। तो सोशल वर्क में इंटरेस्ट बढ़ा और उस उम्र के साथ साथ हमने 2016 में हमने फैल्कन यूथ क्लब उसको एस्टेब्लिश किया था एडुकेशन को थोड़ा सा एनहेंस करने के लिए। हमने देखा है डिमा हसाओ में एडुकेशन सेक्टर से लेकर आपका बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत सारा काम होना बाकी है, इनफैक्ट अभी भी बाकी है। उस समय हमारा दिमाग इतना भी मेच्योर नहीं था, लेकिन हम लोगों ने फिर भी सोचा कि नहीं, एजुकेशन सेक्टर को थोड़ा सा बढ़ावा देना चाहिए और यूथ्स को लेकर काम करना चाहिए। तो हमने देखा है बहुत सारे नेता, बहुत सारे लीडर्स जो होते हैं वो काम करते हैं एक साथ, हमारे साथ जुड़ के। तो ये जो वातावरण था उसको कंटिन्यू रखना था और एटलीस्ट समाज में कुछ काम करने के लिए युवाओं को तो आगे बढ़ कर रहना चाहिए, ये मेरा मानना था। इसीलिए हमने एक एनजीओ खोला था जिसका नाम था फैल्कन यूथ क्लब। और आज मैं बता दूं आपको, मुझे गर्व है इस बात का कि हम फैल्कन यूथ क्लब दिमासा का एक ऐसा एनजीओ है जिसने बहुत ही अलग अलग सेक्टर्स में काम किया है और कर रहे हैं। मैं यहाँ पर और एक बात जोड़ दूं कि हमने फिलहाल उमरांगसू में हमारा बेसिकली काम चलता है, तो हमने उमरांगसू को असम के अंदर वन ऑफ द क्लीनेस्ट टाउन बनाने का हमने प्रण लिया है विद इन एक साल। और ये 2027 के जुलाई तक हमने ये टारगेट रखा है कि एटलीस्ट उमरांगसू जो टाउन है वो असम का क्लीनेस्ट टाउन बने।
0: जी जी, ये बहुत अच्छी एक सोच है आपकी। उम्मीद करते हैं आपकी ये जो सोच है आने वाले साल तक आपका ये गोल पूरा हो। तो अभी मैं जानना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा आपने 2016 को आपने अपना ये जो क्लब है उसकी शुरुआत की थी, तो लाइफ का आपका क्या वो टर्निंग पॉइंट था जिसने आपको एक लीडरशिप और सोशल वर्क की तरफ इंस्पायर किया है?
1: हमारे दिमाग हसाओ, हम लोग लकी है कि हम लोग इतने सारे जाति उपजाति के साथ रहते हैं। यहाँ पे ट्राइबल है, नॉन ट्राइबल है, बहुत सारे जनजाति के लोग हैं। हम लोगों को जन्म से एक चीज मिला हुआ है कि हम लोग हमारे बीच वो चीज है कि हम विभिन्न तरह के लोगों के साथ मिलजुल के रह सकते हैं।
0: जी जी।
1: तो हमने इसी के साथ एक चीज देखा है कि अलग अलग जाति, अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच अलग अलग प्रॉब्लम्स भी होती है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है जिनके पास, जिनका सोल्यूशन उनके पास नहीं होता है। बहुत सारे सोल्यूशन जो होते हैं दूसरे किसी जाति के पास होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: बहुत सारी चीजें कंफ्यूजिंग करती है लोगों को, बहुत सारे रिचुअल्स जो है लोगों को कंफ्यूज करता है। तो इन सब को देखते देखते बड़ा हुआ और एंड ऑफ द डे मुझे लगा कि नहीं, सभी लोगों का एक कुछ कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स भी है जिसको सॉल्व करना चाहिए। उसके लिए कोई आगे बढ़ के नहीं आ रहा था क्योंकि हर कोई अपना जाति का रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे एज ए होल सभी का रिप्रेजेंट करने के लिए कोई नहीं था। तो मुझे उस टाइम ऐसा लगा कि नहीं, कुछ तो करना चाहिए जो कि सबके लिए हो, सबकी भलाई के लिए हो, पूरे समाज की भलाई के लिए हो, पूरे दिमासों की भलाई के लिए हो। तो मेरे साथ कई लोग जुड़े
0: जी,
1: जुड़ के फिर ये कारवा शुरू हुआ।
0: जी जीतू जी, आपकी जो सोच है वो बहुत अच्छी लग रही है हमें सुन के। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आपने वैसे हमें थोड़ा बता दिया है कि आपके क्लब की शुरुआत कैसे हुई है, आपको कब लगा कि आपकी जो सोच थी इसको एक प्लेटफॉर्म देने का वक्त आ गया है?
1: जी बिल्कुल, ये सही सवाल है क्योंकि हम लोगों ने जब शुरू किया था, मैंने बोला आपको कि एडुकेशन को लेकर शुरुआत किया था, तो हमने जब सरकारी स्कूलों को

0: ने प्लांटेशन के मामले हो या फिर कुछ अलग अलग कामों के जरिए हम जब उनसे जुड़े सरकारी
1: जी
0: स्कूलों से, तब हमने एक चीज़ देखा, कॉमनली एक चीज़ देखा कि वहाँ पे जो एडुकेशन है वहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज़ थे. क्यों? ये तो आपको पता होगा, सरकारी स्कूलों में टीचर जो है और स्टूडेंट्स अलग जाति के होते हैं, तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता है उनको.
1: होता है.
0: तो कॉमनली हिंदी बोला जाता है दिमासों के अंदर भी, लेकिन वो हिंदी अलग अलग जाति का अलग अलग सुर में होता है, किसी को समझ में आता है किसी को नहीं आता है.
1: बिल्कुल
0: तो ये जो
1: बिल्कुल.
0: कॉमन प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए मुझे लगता है कि कॉमन प्लेटफॉर्म चाहिए जिससे लोग जुड़े, एटलीस्ट कम्युनिकेशन में बाधा ना आए. तो हमने उसी को मद्देनजर रखते हुए इसको सोचा था कि नहीं, फाल्कन यूथ क्लब नाम से खोलते हैं, बच्चों को कॉमनली हम लोग पर्सनलिटी डेवलपमेंट का फ्री का क्लास करवाते हैं,
1: जी.
0: क्योंकि हम भी बहुत ज़्यादा मेच्योर नहीं थे उस टाइम. तो हमने सोचा कि चलो यही करके देखते हैं, सारे बच्चों को इकट्ठा लाएंगे और उनको हम लोग समझाएंगे कि कैसे बोला जाता है हिंदी और किस तरह से आप इसको सुधार सकते हो. तो इसी से शुरुआत हुआ था, एक छोटा सा हमारा शुरुआत था कि हम लोग एडुकेशन को थोड़ा सा ईजी बनाते हैं, एडुकेशन को थोड़ा सा कॉमन, बच्चों को डरावना चीज़ ना लगे, उसको खेल कूद के जरिए उसको समझ में आए, इस तरह का कुछ एक बढ़िया सा एटमोसफेयर बनाते हैं. तो उसी को लेकर हमने इस बात की शुरुआत की थी. और आपने एक क्वेश्चन मुझे पूछा था कि लीडरशिप का ये जो बात आया था, मैं एक्चुअली
1: जी
0: लीडरशिप का तो पता नहीं कब आ गया अपने आप, लेकिन मैं वैसे लीडर तो हूँ नहीं, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि मैं लोगों को बोलता हूँ तो वो मान लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जो बोलता हूँ वो सही बोलता हूँ. यही बात शायद उनको भी लगता होगा कि अभी जीतू बोल रहा है तो ये सही बात बोल रहा है, करना चाहिए. बहुत ज़्यादा बहस ना 2016 में हुआ था और ना ही आज 2026 में होता है. कोई बहस नहीं करता मेरे से कि आप ये गलत बोल रहे हो, आपका सोच गलत है, ये है गलत, क्योंकि मैं कॉमनली एक बात मैं मान के चलता हूँ कि हम बस इंसानों की मदद करना चाहते हैं, ना किसी धर्म को, ना किसी जाति को, ना ही किसी को इंडिविजुअली. हम पूरे समाज के बारे में सोचते हैं. मेरा जहन में यही है कि समाज का डेवलपमेंट होना चाहिए, किसी जाति का वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, मेरा ये मानना है, दिल से मानता हूँ ये बात.
1: जी. तो जीतू जी, आपने हमें कहा है कि आपकी जो क्लब की शुरुआत है एक मोटिव से हुई थी, और वो मोटिव से जुड़ के आपने कई अलग अलग सेक्टर में भी काम किया है, बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को फेस किया है. मैं ये जानना चाहूँगी, अब तक की जो जर्नी है इस क्लब की, ऐसी कौन सी अचीवमेंट या इनिशिएटिव है जिस पर आपको सबसे ज़्यादा गर्व महसूस होता है?
0: गर्व करने लायक बहुत सारा काम हम लोगों ने किया है.
1: जी
0: एक तो यही है कि हम लोगों ने उमरांग सू जैसे जगह को हमने सोचा है कि एक साल के अंदर हम क्लीन कर देंगे, और उसके लिए बहुत, मतलब बहुत ही जोरदार काम चल रहा है उमरांग सू में. अगर आप खबर रखते हो सोशल मीडिया में
1: जी जी
0: तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो फाल्कन यूथ क्लब का फेसबुक पेज है उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से काम हो रहा है, और हमने बहुत बारीकी से उसको सोचा है. और मैं आपके माध्यम से एक खबर, ये बात सबको बताना चाहूँगा, दिमासों के खास करके जो यूथ्स है उनको,
1: बिल्कुल.
0: कि आप लोग अलग अलग प्रांत में, जैसे कि हम उमरांसू में कर रहे हैं, उमरांसू टाउन को हम डेवलप करने की, बस क्लीन करने का सोच रहे हैं, इसी तरह से हाफलोंग में कोई ग्रुप निकले, माइबंग में कोई निकले, माहौर में कोई निकले, हरंगजाओ में कोई निकले, इस तरह से सभी अपना अपना ग्रुप्स बनाए यूथ खास करके. और वो इस तरह से अगर अपने अपने जो वहाँ पे म्यूनसिपल बोर्ड होते हैं या फिर टाउन कमिटीज़ होते हैं उनके साथ जुड़ के अगर वो ये कोशिश करना शुरू करें अपने अपने जगहों को साफ करने का, माइक्रो लेवल में जाकर, मतलब ऐसे छोटी जो सिगरेट बच्स होते हैं वहाँ तक सोचे उसको कैसे साफ किया जाए, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मिशन बन सकता है और डिमहासव का नाम बहुत ज़्यादा अच्छा रोशन हो सकता है
1: बिल्कुल
0: एक
1: बिल्कुल.
0: समय पर जाके. मैं वही बोलूँगा, हमारा मिशन फाल्कन यूथ क्लब ने उमरांसू का सोचा है, इसलिए सोचा क्योंकि उमरांसू एक, आपको पता होगा, टूरिस्ट हब है, और ये सारे लोग जो बाहर से आते हैं वो, उनको क्या लगता है, एक अच्छा सा परिवेश चाहिए उनको, एटमोसफेयर साफ सुथरा चाहिए, और उनको उमरांसू में आके एक कंफर्टेबल एक माहौल मिले, उनको गंदगी ना मिले, उनको बदबू ना मिले.
1: जी
0: ये सारी चीज़ें हमने महसूस किया है कि हम अगर कहीं पर घूमने जाते हैं, हमें वो उस माहौल की तलाश रहती है, तो हम सोचते हैं कि हमें जो हमारे यहाँ पे जो लोग आते हैं तो उनको भी वही रहेगा. तो हमने इसलिए इसको सोचा है, ये एक मिशन जो है हमने किया है. हमारा एक हाल ही में हमने एक मिशन किया है जो फ्लड को लेके, अपने आपको पता होगा असम का ये जो अपर असम वाला फ्लड है उसको लेके भी हमने किया है. मुझे गर्व है इस बात का भी
1: जी
0: कि
1: जी
0: हमने फाल्कन यूथ क्लब ने वहाँ पे लगभग 4 लाख रुपए का, अगर हिसाब किया जाए तो अमाउंट के हिसाब से 4 लाख रुपए का मटेरियल्स हमने वहाँ शिवसागर हम लेकर गए, हमारे सारे यूथ क्लब के लड़के गए और जाकर वहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया जरूरतमंदों को, और अंदरूनी अंदरूनी गाँव तक घुसे, उसमें सामान डाला और हम वापस आए. उस बात का भी गर्व है मुझे.
1: जी. बहुत अच्छा लगा ये सुन के, और हमें बहुत खुशी है कि ऐसा एक यूथ क्लब हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा है, और हम चाहेंगे ये और भी आगे जाए और भी ग्रो करे ये.
0: बहुत बहुत धन्यवाद.
1: जी, तो अभी हमने क्लब के बारे में काफ़ी बातचीत की है. मैं आपके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगी कि ये जो फाल्कन यूथ क्लब से आप जुड़े हैं, इसके अलावा आप किन किन फील्ड्स में एक्टिवली इन्वॉल्व्ड हैं?
0: मैं एक्चुअली लगभग आपका जैसा ही काम है मेरा भी, मैं भी एंकरिंग करता हूँ,
1: जी
0: मैं भी मीडिया में काम करता हूँ, और मेरा खुद का छोटा छोटा बिजनेस है, कुछ डिलीवरी सर्विस का एक बिजनेस है उमरांगसो में, और मेरा होम स्टे है. लेकिन बेसिकली मैं एक, आप कह सकते हो कि मैं मीडिया पर्सन हूँ, मैं खुद का एक मेरा पोर्टल यहाँ पे चलाता हूँ और इसी से जुड़ा हुआ हूँ मैं.
1: जी जी

0: तो आप एक बहुत मल्टी टैलेंटेड पर्सन बोल सकते हैं हम, कि हर तरफ आप जुड़े हुए हैं, इतने सारे फील्ड पे आप एंगेज है। और जैसे हम जानते हैं कि हर काम में एक भी काम करें हम, उसमें भी चैलेंज आती है,
1: हाँ
0: और
1: बिल्कुल
0: आप तो इतने सारे फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो हर जर्नी में चैलेंजेस भी आती है लोगों
1: बिल्कुल
0: को।
1: बिल्कुल।
0: तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा और आपने उसे कैसे ओवरकम किया है?
1: बिजनेस ना एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आके ना आपका सारा जो मान धर्म ईमान धर्म सब कुछ खत्म हो जाता है।
0: जी
1: मैं
0: जी
1: ये मानता हूँ, लेकिन आपको रोजी रोटी, आपका पेट, आपका मतलब बोलते हैं ना कि भूखा पेट आप काम नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। आपको अपना पेट का तो ख्याल रखना पड़ेगा,
0: जी
1: अपने परिवार का ख्याल रखना पड़ेगा, उसके लिए आपको कुछ पैसा कमाना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके लिए वही मैं फिर से एक बार बोलूंगा कि पैसा कमाना इतना मुश्किल टास्क नहीं है लाइफ
0: जी
1: में। बहुत सारा पैसा है लाइफ में, पर आप उठा लो, ऐसा हवा में उड़ रहा है पैसा, आप उठा लो।
0: जी
1: लेकिन मुद्दा यह है कि आप किस तरीके से पैसा उठा रहे हो,
0: बिल्कुल
1: मतलब कौन सा रास्ता चुना है आपने। आपने ये गंदगी वाला रास्ता चुना है, 2 नंबर वाला चुना है, या फिर 1 नंबर से जाकर पैसा कमाने का सोचा है। जो लोग तो 1 नंबर का सोचा है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। मैं तो बस एक छोटा सा, मेरा एक डिलीवरी सर्विस है, ठीक है। उसी को अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर लूँ, तो मुझे लगता है कि अगर मैं कर पा रहा हूँ तो बहुत सारे लोग कर सकते हैं यह काम। और मुझे लगता है कि बहुत सारे एडुकेटेड यूथ्स हैं उमरासो डिमासो के अंदर, जो कि कुछ इनोवेटिव नहीं सोच रहे हैं। और
0: जी
1: मुझे उस बात का बुरा लगता है। अंकिता जी, मैं एक बात बताऊं आपको, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, सभी लोग क्या कर रहे हैं, कई फैक्ट्रीज में जाकर जॉब कर रहे हैं, या फिर वो आसाम में हो सकता है, बाहर भी हो सकते हैं। वो सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जाकर बाहर कुछ ना कुछ जॉब में एंगेज है, सही है, चलो ये मान के चलते हैं कि सबको पैसा चाहिए तो वो काम कर रहे हैं। लेकिन दिमाहासाओ का कौन सोचेगा? अगर दिमाहासाओ ऐसा ही रहा, कोई कुछ सोचा ही नहीं, दिमाहासाओ का जितने भी पोटेंशियल्स हैं, जैसे कि बेम्बू है यहाँ पे, इतने सारे हमारे यहाँ पे चीज़ें हैं जो कि बाहर के लोगों को पता भी नहीं है। एक बेम्बू का जो प्राइस होता है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे 100-120 रुपये होता होगा, और
0: जी
1: बाहर उसका प्राइस होता है 600-700 ना। तो इस चीज़ को बहुत बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन किसी ने सोचा है? किसी ने टूथपिक तक बनाने का सोचा है? नहीं सोचा है। किसी ने स्ट्रो बनाने का सोचा था बीच में? मैंने कभी देखा है हमारे यहाँ पे कोई लोकल लड़के ने बेम्बू से स्ट्रो बनाया है, कितना अच्छा लगा सुन के, प्राउड होता है। इसी तरह से हजारों ऑप्शन खुले हुए हैं
0: जी
1: एग्रीकल्चर लाइन्स में। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको पता है डिमासो में मटेरियल्स मतलब बोलते हैं कि बहुत भरा हुआ है, भंडार है यहाँ पे जमीन के अंदर, बहुत सारे खनिज है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसको इनोवेटिवली यूज़ करने के बारे में जो सोचेगा कौन, अगर यूथ ना इसके बारे में सोचे,
0: जी
1: यूथ को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। आज नहीं कल आपको कुछ ना कुछ इनोवेटिव लाना पड़ेगा हमारे यूथ्स के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए। हम अगर यहाँ पे एक चूना का फैक्ट्री भी नहीं खोल पाए, हम अगर यहाँ पे एक बेम्बू का कुछ प्रोडक्ट बनाने वाला फैक्ट्री नहीं खोल पा रहे हैं, हम एक माइक्रो इंडस्ट्री नहीं खोल पा रहे हैं, हम एक टूथपिक का फैक्ट्री नहीं खोल पा रहे हैं, हम अगरबत्ती का एक फैक्ट्री नहीं खोल पा रहे हैं, तो वहाँ पे दुख लगता है। क्योंकि
0: जी
1: कैपेबिलिटी सबको है, ऐसा नहीं है कि उन लोगों के पास दिमाग नहीं है, सबका है। लेकिन शुरुआत कहाँ से करें, फिनेंस कौन करेगा, यही सब चीज़ों में उलझ के बैठे हैं। तो इस बात से दुख है मुझे। और प्रॉब्लम आपने बोला कि प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, हाँ
0: जी
1: सेम वही प्रॉब्लम होता है, लोग मदद करने के लिए आगे नहीं आते क्योंकि उसको भरोसा ही नहीं है। मैं एक बात बताऊँ आपको, जैसे कि आप सोच लो कि डिमासों में बालू मिलता है, मान लो कि बालू, नदियों में बालू बहुत है, तो आपको बिजनेस करना है, तो उसका क्या है, आपको वहां से नदी से वो बालू उठाना है और कोई सामने वाला फैक्ट्री में जाकर डाल के आना है, वो फैक्ट्री आपको पैसा दे देगी, बात खत्म। बहुत
0: जी
1: सिंपल टास्क है ये,
0: जी जी
1: इससे सिंपल टास्क नहीं हो सकता। आपको जाना है नदी से बालू उठाना है, फैक्ट्री में छोड़ना है, पैसा लेना है, घर जाना है, यही है।
0: जी
1: ये जो आसान वाला टास्क है, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं, इसलिए सभी उसी में एंगेज हो रहे हैं। लेकिन जहाँ पे चैलेंजेस आ रहे हैं ना, वहाँ पे कोई फेस करने के लिए तैयार ही नहीं है। दिमाग के लोग ही अगर ये सब प्रॉब्लम से फेस करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो कोई दूसरा, कोई कहाँ बाहर से आएंगे क्या, कोई यहाँ पे ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए
0: नहीं नहीं
1: नहीं आएगा। अगर हम लोग अगले जनरेशन के लिए रास्ता खोल के नहीं जाएंगे, तो जो आने वाले जनरेशन है वो क्या करने वाले हैं? मतलब अभी अल्फा जेन अल्फा आने वाले
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: ये जेन जीस आने वाले हैं ना, ये क्या करेंगे अगर हम लोग रास्ता बनाकर नहीं जाएंगे? तो प्रॉब्लम वो
0: सोचने
1: है।
0: वाली बात है ये। जी, तो एक बहुत गहरी चैलेंज आपने बताया है, हमारे सामने रख दिया है। और अभी एक और डर है कि जितना टाइम जा रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है,
1: हाँ
0: तो आगे की जो पीढ़ी है वो लोग कैसे क्या करेंगे हमें भी नहीं पता है, तो
1: बिल्कुल
0: उसके लिए रास्ता हमें देखना पड़ेगा।
1: बिल्कुल
0: जी, तो आपने जैसे अभी कहा है कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा है, काम नहीं कर रहा है, फिर भी जानना चाहूंगी कि आप यूथ को लेके काम कर रहे हैं, यूथ को लेके सोच रहे हैं, आपको क्या लगता है ये जो यूथ है उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है आपके नज़र में?
1: मैं बोलूँ, सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ये है कि कॉन्फिडेंट, ये हमारे बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट है। ये चाहे जेंजीज हो, आज के तो मैं जेंजीज के बारे में बहुत ज़्यादा बोलता हूँ क्योंकि यही तो है जो कल लीड करने वाले हैं,
0: जी
1: तो
0: जी
1: इनको आप गलत बोलो सही बोलो यही रहेंगे, आप मानो या ना मानो।
0: जी
1: अगर आप जल्दी मान लेते हो तो आपका फायदा है, आप अगर बहुत देर से मानते हो तो आपका वो लॉस है, आपका आपने टाइम गवा दिया है। तो अच्छा ही यही है कि आज के यूथ में कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, बस यही है कि उनको आपको राह दिखाना पड़ेगा और किसी ना किसी को तो दिखाना पड़ेगा। तो इसमें सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारियां आती है, इनफैक्ट

0: अंकिता जी आपका भी आता है, आपके वॉइस बहुत लोगों के पास पहुंचती है, तो आपकी
1: जी
0: जो बातें हैं वो लोग सुनते हैं, आपकी बातें लोगों को समझ में आती है, और आप बहुत बहुत सुंदर से बोल सकती हो,
1: जी
0: तो लोग कनेक्ट कर पाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे एनजीओस हैं, बहुत सारे मेनली तो हमारे लीडर्स हैं जो लीड करते हैं हमें, वो कोई भी पार्टी का हो, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट जो दिमागों के लीडर्स हैं, मुझे लगता है कि दे आर कैपेबल, दे आर गुड, दे आर गुड ह्यूमन बींग, और उनके पास वो क्षमता है, उनके पास वो कैपेसिटीज है, क्योंकि वो किसी यूथ को एक डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप लोग ये करो। एक समय था जब हमारे देश में ग्रीन आंदोलन, जो ये जो कृषि आंदोलन हुआ था ना, तो किसी ने तो शुरुआत किया था,
1: जी जी
0: है ना, तो वो ही कोई आंदोलन यहाँ पे भी चाहिए, दिमाहसाओं में भी चाहिए, कि यूथ को किसी भी काम की कमी ना हो, मतलब करे हजारों काम है, जो मर्जी आप करें, लड़कियां निकल के काम करें, लड़के निकल के काम करें, कोई भी करे, लेकिन उनके लिए काम कमी ना हो, इसके लिए एक डायरेक्शन की जरूरत है और ऐसा लीडरशिप की जरूरत है।
1: जी बहुत सच बात है ये, उम्मीद करती हूँ कि हमारी जो बातें हैं हमारे लिसनर्स को बहुत इंस्पायर करेंगी और वो काम पे भी लगेंगी। तो आपसे अभी जानना चाहूंगी कि आपका जो फाल्कन यूथ क्लब है, ये जो डिमाहासाओ की टूरिज्म कल्चर हेरिटेज और क्लीनलीनेस को प्रमोट करने में किस तरह का योगदान दे रहा है?
0: आज मैं अगर यहाँ पे बैठा हूँ तो फाल्कन यूथ क्लब का ही है जो, जिसके वजह से मैं यहाँ पे बैठा हूँ,
1: जी
0: तो मैं खुशी से बताना चाहूंगा कि फाल्कन यूथ क्लब एक ऐसा एनजीओ है जिसने उमरांसू में बहुत सारी चीजें की है पहले से भी, और अब जो है टूरिज्म, हमने सोचा है कि टूरिज्म को इसलिए सोचा क्योंकि इज्जत का सवाल है,
1: जी
0: है ना, अब ये डिमासो का इज्जत है और उमरांसू को ये इज्जत रखना है, ठीक है, सबसे पहले उमरांसू टूरिस्ट आते हैं तो उमरांसू को हिट करते हैं, उमरांसू में उतरेंगे, उमरांसू के जो ऑटो वाले भैया लोग हैं, पान दुकान वाले भैया लोग हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ये सारे लोग जो हैं यही सबसे पहले फेस करते हैं टूरिज्म को, है ना, वो बाहर से आते हैं तो उनको देखते हैं,
1: जी
0: तो ये लोग अगर बिहेव उनका सही नहीं होगा तो टूरिस्ट डर जाते हैं, घबरा जाते हैं,
1: जी
0: ठीक है ना,
1: बिल्कुल
0: तो हमने फाल्कन यूथ क्लब वॉलेंटियर करते हैं उस चीज को कि हर कोई टूरिस्ट के साथ ऐसा बिहेव करे कि टूरिस्ट बाहर जाकर बोले घूमने जाना तो उमरांसू जाओ और बिंदास जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उमरांसू में, इसका मतलब हम लोग को श्योर करना है कि हाँ ऐसा कोई भी लफड़ा उमरांसू में ना हो किसी भी टूरिस्ट के साथ, चाहे वो टूरिस्ट कोई आता है, कभी कभी वो थोड़ा सा पी के आता है, कभी कभी कुछ होता है, बहुत सारे तरह तरह के लोग आते हैं, लेकिन हम लोग कुछ भी लफड़ा या फिर कोई भी कुछ गलत होने नहीं देते हैं, उसके लिए फाल्कन यूथ क्लब के वॉलंटियर्स हैं जो इस चीज को मेंटेन करके रखते हैं। सफाई हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान पे रखते हैं, सफाई के लिए हम लोग बहुत ज्यादा अवेयरनेस करते हैं उमरांसू में, और सफाई के लिए हर हफ्ता हमारा ये निकलता है, ड्राइव निकलता है, बहुत सारी चीजें हम लोग पोस्टरिंग करते हैं, हम लोग रोड ड्रामा करते हैं, हम लोग स्कूल स्कूल में जाकर सेमिनार्स करते हैं, हम लोग इंडस्ट्रीज के साथ बात करते हैं, उमरांसू म्युनिसिपल बोर्ड जो है वो हमारा इतना साथ देते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं उमरांसू में। फिर से बोलूंगा कि बाहर जो हाफलोंग माइबंग माहौर हरंगा जहाँ पे भी यूथ है उनको जुड़ना चाहिए और अपनी अपनी जगह को साफ करना चाहिए और उसमें आगे बढ़कर हिस्सा लेना ही चाहिए।
1: जी जी बहुत अच्छा लगा ये सुन के। अभी मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी जो आपका ये फाल्कन यूथ क्लब 2016 में आपने शुरू किया था, अभी 2026 है, 10 साल हो चुके हैं, तो अभी आने वाले समय में इस क्लब को लेकर क्या प्लान्स है आपका?
0: हाँ देखिए, आपने बोला, आपने इसका आंसर ना आपने खुद ने दिया था थोड़ा पहले कि आईटी सेक्टर, मतलब हमारा जो अभी टेक्निकल चीज है ना, जैसे कि एआई आ चुका है,
1: जी
0: अभी मुझे लगता है स्कूल्स में तो एआई नहीं सिखाया जाएगा, आपको भी लगता होगा कि ऐसा, तो शायद समय लगेगा,
1: समय लगेगा, शुरू हुआ है, समय लगेगा,
0: समय लगेगा, स्कूलों तक पहुंचने में टाइम लगेगा, तो हमने इसीलिए हमारा एक ग्रुप बन रहा है अभी, एकदम इनिशियल स्टेज में है, कि हमारे पास कुछ लड़के हैं जो कि एआई के बारे में बहुत जानते हैं, हैकिंग के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, एथिकल हैकिंग, ओके, और हैकिंग फिर दो तरह के होते हैं, एथिकल हैकिंग जो हम लोग एथिकली करेंगे, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर हमने सोचा है कि एक अवेयरनेस उसके ऊपर हो, और कई स्कूलों को, एक साथ तो पॉसिबल नहीं है, बट कई स्कूलों के टैलेंटेड बच्चों को चुनना पड़ेगा हमें, ताकि जिसको टेक्नोलॉजी के ऊपर इंटरेस्ट है, सभी का तो नहीं होता है, तो जिसका है इंटरेस्ट है उनको हम लोग कलेक्ट करेंगे और उनको हम लोग एआई के बारे में, क्योंकि एआई फ्यूचर है,
1: फ्यूचर है।
0: अभी अगर आप एआई के बारे में, रोबोट के बारे में आप नहीं जानोगे, हमारे बच्चों को नहीं सिखाओगे, तो ऐसा होगा कि आपके घर में कल ऐसा भी हो सकता है कि फेसबुक में आप ऐसा वीडियो देख रहे हो जो कि आपकी आपकी जान पहचान के किसी लोग की हो, आपकी दीदी बहन किसी की हो, लड़की की हो, माँ की हो, डीप फेक हो सकता है,
1: जी जी
0: ऑब्जेक्शनेबल कुछ भी बन सकता है वहां पे, जो कि आप देखोगे आप बिलीव कर लोगे कि मेरी दीदी ऐसी है, मेरी माँ ऐसा कर रही है,
1: जी।
0: लेकिन रियल में ऐसा है, आपकी माँ को आपकी बहन को शायद पता भी ना हो किसी ने ऐसा कर लिया आपके साथ, तो आप अगर खुद इतना समझदार ना बनो कि आपको एआई वाला वीडियो, एआई वाला फोटो और नॉर्मल फोटो का, ओरिजिनल फोटो के बारे में फर्क पता ही ना चले, तो फिर आप उसको नहीं रोक सकते हो,
1: जी जी।
0: तो लोगों को बेसिक नॉलेज होना चाहिए एआई का कि ये एआई से बना हुआ चीज है और ये ओरिजिनल है, इतना एटलीस्ट हम लोग सिखाएंगे फाल्कन यूथ क्लब। आगे आपको ये वादा करते हैं, हम अगली बार जब वहां पे आपके स्टूडियो में बैठेंगे तो आपको

0: जिसका पता चलेगा कि एआई के बारे में सबसे ज्यादा अगर आसाम में कोई जानता है तो वो डिमासा के बच्चे जानते हैं।
1: जी, बहुत अच्छा लगा। ये जो सोच है कि आने वाले टाइम पे हमें ये सारी चीज़ अपने बच्चों को सिखाने को मिलेगी, बच्चों को नहीं सिर्फ इस सब की हमें भी ज़रूरत है।
0: बिल्कुल
1: जी, बहुत अच्छा लगा सुन के। तो अभी हम धीरे धीरे हमारे कार्यक्रम के अंत में पहुंचने वाले हैं। मैं आखिर में ये चाहूंगी कि वैसे तो आपने ऑलरेडी हमारे यूथ्स के लिए, लिसनर्स के लिए, सभी के लिए आपने बहुत सारे मैसेज दे चुके हैं आप ऑलरेडी, फिर भी मैं चाहूंगी आखिर में आप हमारे यूथ्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: बी स्ट्रॉन्ग यूथ को, सिर्फ दिमाशाओं के नहीं। और एक बात ना, दिमाशाओं में खास करके हमारे, मैं क्योंकि दिमाशाओं से, तो दिमाशाओं के बारे में बोलूंगा कि हमारे यूथ में एक यूनिटी है। आपने नोटिस किया है नहीं किया है मुझे पता नहीं, मैं बहुत डीपली नोटिस करता हूँ। मैं
1: जी
0: दिल्ली गया, वहाँ पे मैं, यहाँ के लोग मिले मुझे, वहाँ पे भी रहते हैं ना, तो उनसे मिला। मैं गुवाहाटी में जब भी जाता हूँ या फिर कहीं पे भी जाता हूँ तो मिलता हूँ ना, तो ना आपको इतना कंफर्टेबल फील होता है उनके बीच होना। कोई भी जाति का हो सकता है वो, डिमासा हो सकता है, कार्बी हो सकता है, मार हो सकता है, मिजो हो सकता है, वो आसामीज, बंगाली, नेपाली, खेलमा, कोई भी हो सकता है, लेकिन उनके बीच रहना, वो जो सेफ वाला फील होता है ना, वो किसी और के साथ नहीं होता है। तो यही जो चीज़ जो है ना, ये हमेशा बरकरार रहे उसके बीच। पॉलिटिक्स हमें कभी कभी बिछड़ने की कोशिश भी करेगी, धर्म हमें कभी कभी बिछड़ने की कोशिश करेगी, हमारे सोच हमें अलग अलग दिशाओं में लेके जाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन हमें एज ए यूथ हमें एटलीस्ट यूनाइटेड रहना है और कंट्रीब्यूट करना है। जैसे कि दिमाशाओं में अगर ड्रग्स हो, कोई भी ऐसा गलत चीज़ें, कोई भी गलत चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, चल रहा है, आपके पास इन्फॉर्मेशन है, तो उसके लिए आप लोग आवाज़ उठाओ, उसको बंद करो, क्योंकि ये जगह हमारा है और हमें दिमाशाओं को गंदा होने से बचाना है। और आज नहीं तो कल आपको उसका साइड इफेक्ट दिखाई देगा, इसलिए आपको ये चीज़ करना चाहिए कि गलत अगर हो रहा है तो उसके बारे में आवाज़ उठाओ। यही यूथ का काम है, यूथ को एटलीस्ट नहीं डरना चाहिए।
1: जी, बहुत अच्छा मैसेज दिया है आपने सभी को कि बी स्ट्रांग।
0: बी स्ट्रॉन्ग।
1: ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है। जी, तो हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। आपकी जो सारी थॉट्स है वो सब जान के हमें बहुत खुशी हुई है, और हमें ये भी बहुत खुशी है कि आप हमारे स्टूडियो पे आए, अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अंकिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमने फेल्कन यूथ क्लब के बिहाफ में मैं आया और उनके बारे में, फेल्कन यूथ क्लब के बारे में बोलने का मौका आपने दिया मुझे। आपके जरिए दिमाशाओं के सारे लोगों से बात करने का मौका मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी हाफलोंग का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी, श्रोताओं, तो आज की बातचीत में हमारे अतिथि ने सिर्फ अपनी जर्नी ही नहीं बल्कि ये भी बताया है कि एक अच्छी सोच और सही नीयत के साथ की गई छोटी सी शुरुआत भी समाज में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। हमें विश्वास है कि आज की ये बातचीत हमारे लिसनर्स, खासकर युवाओं को नए विचारों के साथ आगे बढ़ने और समाज के लिए सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी। अब दीजिए मुझे यानी अंकिता को इजाजत। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए विषय और नए अतिथि के साथ। तब तक जुड़े रहिए आकाशवाणी हाफलोंग के साथ, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 MHz पर। नमस्कार।

श्रोताओं, युवाओं पर आधारित कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे खास बातचीत जीतू दास के साथ। विषय था यूथ लीडरशिप एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी अंकिता पॉल। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। आइए अब आपको सुनवाते हैं कुछ फिल्मी गीत।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे फिल्मी गीत। ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। अब से कुछ ही समय में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे समाचार प्रभात।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य
3: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में करण सिंह, शेरजिन शांतिमोल और तनिष्का खत्री ने नाइजीरिया में स्वर्ण पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
5: केरल नाम परिवर्तन विधेयक का उद्देश्य संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करना है। इस संबंध में केरल विधानसभा ने जून 2024 में एक प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि मलयालम में राज्य को केरलम के नाम से जाना जाता है, जबकि संविधान की पहली अनुसूची में इसका नाम केरल दर्ज है। इस बीच खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करना है। इस विधेयक का उद्देश्य देश के बढ़ते महत्वपूर्ण खनिजों की मांग को पूरा करने के लिए भारत के खनन क्षेत्र को अधिक प्रभावी, निवेश के अनुकूल और सक्षम बनाना है। दिलनशी आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। यह आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जीवन यात्रा का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान का संचालन करेंगे। एक रिपोर्ट।
6: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी उनकी अपील पर अपने अपने गांवों और शहरों में वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे। नागरिकों से आग्रह करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने वाला त्योहार है। श्री चौहान ने कहा कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता केवल शब्दों से ही व्यक्त नहीं की जानी चाहिए, बल्कि वृक्षारोपण के माध्यम से भी प्रदर्शित की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पौधा लगाना केवल पर्यावरण संरक्षण का कार्य ही नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित और सुंदर भविष्य की नींव रखने का भी एक तरीका है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। ये रैली स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा है। इसका उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और मजबूत करना है। रैली में बड़ी संख्या में युवा, स्वयंसेवी संगठन और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। अभियान के अंतर्गत देश भर के लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त करने का आह्वान किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज सुबह मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मांडविया ने दिल्ली विश्वविद्यालय के माय भारत वॉलंटियर्स के साथ इस रैली का नेतृत्व किया। इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि इस रैली से पूरे देश में फिटनेस का संदेश जाएगा।
7: दिल्ली में माय भारत के 1000 से अधिक वॉलंटियर्स ने हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा के द्वारा देश को फिटनेस का संदेश दिया है। कोई भी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनना है

0: तो देश के नागरिक स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक है। साइकिलिंग ये फिटनेस का संदेश है, पोल्यूशन का सॉल्यूशन है। चलो हम सब लोग हमारी तिरंगा की आन बान और शान के लिए, देश के युवा फिट रहे इस हेतु को सिद्ध करने के लिए साइकिलिंग करते रहे।
1: जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलवर्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रैली का नेतृत्व किया, जिसमें हजारों विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए एक विधेयक लाने की योजना बना रही है। बांकुरा में कल पश्चिमांचल उन्नयन परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द ही एक समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में युवाओं, विशेषकर जेन जी से जुड़ने और कविता के जरिए उनके विचारों को समझने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रंग दे बसंती कैंपेन कल शुरू हुआ और ये 14 अगस्त तक राज्य के अलग अलग शहरों में चलेगा।
2: कल रात प्रयागराज की हिंदुस्तानी अकादमी में अपनी कविताओं के माध्यम से माफिया संस्कृति पर निशाना साधा। कार्यक्रम समन्वयक विश्वदीप शुक्ला ने बताया कि वीर रस और ओज रस की कविताओं के माध्यम से युवा पीढ़ी की भावनाओं को समझने वाले 8 कवियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रख्यात गीतकार डॉक्टर विनम्र सेन सिंह और अंतर्राष्ट्रीय कथाकार आचार्य शांतनु जी महाराज ने की। अगला कार्यक्रम आज लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। कल मुजफ्फरनगर में कॉमिक्स वितरण और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जो युवाओं को जोड़ने के लिए कई रचनात्मक माध्यमों को एक साथ लाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन में प्रवेश कर गया है। विद्यार्थी कथित परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्र संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, सीबीआई जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग दोहरा रहे हैं। छात्रों ने कल शाम मौन जुलूस निकाला और कहा कि इसका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची और आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने दोहराया कि उनकी प्रमुख मांगें पूरी होने तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज वैज्ञानिक और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर विक्रम साराभाई को उनकी जयंती पर स्मरण किया। श्री बिरला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर साराभाई का मानना था कि विज्ञान को केवल प्रयोगशालाओं तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। कर्कटिका वावू के अवसर पर आज सुबह केरल में हजारों श्रद्धालुओं ने पितृतर्पण देना शुरू किया। हिंदू परंपरा में मलयालम महीने कर्कटम की अमावस्या को दिवंगत आत्माओं की शांति और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए अनुष्ठान करने का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। अधिकांश मंदिरों में यह अनुष्ठान सुबह 3:30 से 5 के बीच शुरू हुए। समाचार सेवा प्रभाग की विशेष श्रृंखला पर्सन बिहाइंड द स्टोरी के अंतर्गत आगामी कड़ी में आज हम दुनिया के पहले तीनों सेनाओं के महिला नेतृत्व वाले समुद्र यात्रा अभियान का हिस्सा रहीं विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता इस कार्यक्रम को न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल सुबह 9:10 से किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2-3 तक देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, सिक्किम, हिमालयी पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, कोंकण, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है, जिसके चलते कई स्थानों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मंडी जिला प्रशासन ने भारी बारिश के कारण भूस्खलन और पत्थर गिरने के खतरे के दृष्टिगत मंडी कुल्लू राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 और मंडी जोगिंदर नगर राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 पर यातायात बीती रात से ही पूर्णतः बंद रखा है। 45 विद्युत ट्रांसफार्मर जबकि 82 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 6 जिलों कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, चंबा और लाहौल स्पीति में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
5: मौसम विज्ञान विभाग ने आज उड़ीसा में व्यापक बारिश का अनुमान लगाया है, जिसमें ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बछौरे पड़ने की संभावना है। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे इलाकों में ऊपरी हवा में चक्रवाती परिसंचरण के कारण आज उसी क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इस सिस्टम से उड़ीसा में बारिश की गतिविधि बढ़ने की उम्मीद है। IMD ने अनुगुल और केंदुझर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मछुआरों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: धन्यवाद मुनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर सबसे ऊपर छाई खबरें हैं, झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी नोक झोंक, और हाल ही में फुकेट से नई दिल्ली आ रहे एयर इंडिया विमान में अस्थिरता की जांच में सामने आई कुछ नई बातें। लोकसत्य की पहली सुर्खी है पक्ष विपक्ष का आमने सामने प्रदर्शन, संसद में हंगामा। नवभारत टाइम्स ने इसी खबर को सचित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है ऐसे भिड़े सांसद हो गई धक्का मुक्की। जनसत्ता में इस खबर का शीर्षक है संसद परिसर में सत्ता पक्ष विपक्ष के सांसद आमने सामने, भारी हंगामा। पिछले सप्ताह फुकेट से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान के अचानक 300 फुट नीचे आने के मामले में हुई जांच को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए जनसत्ता ने शीर्षक दिया है मारिहुआना के प्रभाव में था पायलट, जबकि अमर उजाला की सुर्खी है एयर इंडिया पायलट गांजा के नशे में था, सहयोगी उड़ा रहा था विमान। पत्र ने पायलट एसोसिएशन द्वारा रखे पक्ष को भी शीर्ष समाचार में जगह देते हुए लिखा है टर्बुलेंस मामले में पायलट एसोसिएशन ने कहा हाइड्रोलिक में खराबी से हुई घटना। दैनिक भास्कर ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कुछ राज्यों में बांटे जा रहे उपहारों के मुद्दे को अपनी संपादकीय लेख का विषय बनाया है और शीर्षक दिया है कम से कम गरीब राज्य तो रेवड़ी संस्कृति से दूर रहें।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिली किए गए समाचार प्रभात FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। आइए प्रारंभ करते हैं देशभक्ति गीतों के कार्यक्रम को। सुनते हैं कुछ देशभक्ति गीत।

श्रोताओ, इसी गीत के साथ ही देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। अब से कुछ ही समय में आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से रिले किए जाएंगे नॉर्थ ईस्ट न्यूज़।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के शिलोंग केंद्र से रिले किए गए नॉर्थ ईस्ट न्यूज। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। आइए आरंभ करते हैं कार्यक्रम सुरों की रंगोली। आज के सुरों की रंगोली कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे मशहूर गायक पेपॉन के कुछ सदाबहार गाने।

श्रोताओं, भी आप आनंद ले रहे थे सुरों की रंगोली कार्यक्रम के तहत मशहूर गायक पेपन के कुछ सुपरहिट गाने का। यह आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अब से कुछ ही समय में आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से रिले के जाएंगे पुवार आंचलिक बातोरी।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से रिले की गए पुआर आंचलिक बातरी। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है।
1: हेलो हाफलॉन्ग, आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हाफलॉन्ग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हाफलॉन्ग।
2: हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे, यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM।
1: इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं, और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हाफलॉन्ग।

श्रोताओं, आइए आरंभ करते हैं स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम को। और कार्यक्रम में सबसे पहला गीत हम आपको सुनवाएंगे खेलमा कार्यक्रम के अंतर्गत, खेलमा भक्ति गीत गुलचंद जीते और उनके साथियों की आवाज़ में।

श्रोताओं, मूलजन लीजेते और उनके साथियों की गाई इसी भक्ति गीत के साथ ही खेलमा गीतों का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हाफ रंग केंद्र है। आइए आरंभ करते हैं रांगखोल कार्यक्रम। सुनते हैं रांगखोल लोकगीत ललदार थंग रांगखोल और उनके साथियों की आवाज़ में।

श्रोताओ, ललदार थांग रांगखोल और उनके साथियों के गाए से लोकगीत के साथ ही रांगखोल गीतों का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। आइए आरंभ करते हैं जयंतिया कार्यक्रम। सुनते हैं जयंतिया भक्ति गीत युविशा शदाब और उनके साथियों की आवाज़ में।

श्रोताओं, युविशा शिदाब और उनके साथियों के गाए इसी भक्ति गीत के साथ ही जयंतिया गीतों का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। आइए आरंभ करते हैं ब्याते कार्यक्रम। सुनते हैं ब्याते भक्ति गीत दार्थंग सांगी ब्याते और उनके साथियों की आवाज़ में।

श्रोताओं, दार्थन सांगी ब्याते और उनके साथियों के गाए इसी भक्ति गीत के साथ ही ब्याते गीतों का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही समाप्त होता है स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का हाफ रंग केंद्र है। आइए आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप आनंद ले पाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम का। इसी के साथ मैं यानी मीनता लेती हूँ आप सभी से इजाजत। नमस्कार।

0: सेलुलाइट के सितारे इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी अभिनेत्री और निर्देशिका तनिष्ठा चटर्जी से यूनुस खान की बातचीत। आइए सुनते हैं इस बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी।
1: फिर से एनएसडी की तरफ चलता हूँ, इसलिए क्योंकि एनएसडी में आपने एक्टिंग का डिप्लोमा लिया, हालांकि आपने डायरेक्शन की तरफ घूमने की कोशिश जरूर की लेकिन वो कामयाब नहीं होने दी गई, है ना। अब बात ये है कि एक्टिंग के ऑफर्स तो आने लगे थे और पहली फिल्म जो है वो बड़ी इंटरनेशनल टाइप की फिल्म आपने की थी, वहां से आगे की बातें करते हैं।
0: मेरी एक्चुअली पहली फिल्म थी अनवर जमाल की एक फिल्म स्वराज।
1: अच्छा, अनवर साहब डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जो
0: जी
1: है।
0: जी जी, और उन्होंने एनएसडी में रहते हुए ही जब एक प्ले देखने आए थे वो अपने पत्नी के साथ, सहजोजी के साथ, वहाँ उन्होंने मुझे देख के मुझे कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ। और सारे एनएसडी के मेरे सीनियर्स थे एक्टर्स, चार औरतों की कहानी थी वो।
1: ओके।
0: और उन्होंने वहां से मुझे कास्ट की और हमें बहुत

0: मजा आया। और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक करते
1: वाह
0: थे
1: वाह
0: गाना, क्योंकि
1: वाह
0: हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहां बिजली नहीं थी,
1: जहां बिजली
0: और
1: अरे अरे
0: हम गांव में मतलब रह रहे थे। इतना मजा आया था ना राजस्थान के एक गांव में। और शाम में मतलब 6 साढ़े 6 के बाद अपने हट में जाओ रजाई के अंदर,
1: आहा
0: और पूरी रात हम गाना गाते थे। और सुबह 4 बजे उठ के नहा के शूटिंग, क्योंकि 6 साढ़े 6 7 बजे से हम लोगों की शूटिंग शुरू हो जाती थी, हमको तैयार होना पड़ता था। बहुत मजा आया। वो मेरी पहली फिल्म थी स्वराज, एंड स्वराज को नेशनल अवार्ड भी मिली थी सोशल ड्रामा के लिए, बेस्ट सोशल ड्रामा। फिर उसके बाद मैंने एक छोटी सी फिल्म की बम्बई में, बस यूं ही करके। और फिर मुझे बस यूं ही के बाद राजा मेनन की फिल्म, जो अभी बहुत ही फेमस डायरेक्टर है, उन्होंने एयर लिफ्ट बनाई, उनके साथ मैंने 2 पिक्चरें की, बस यूं ही और बारह आना। उसके बाद मुझे मिली शैडोज ऑफ टाइम, जो एक जर्मन प्रोडक्शन थी, और एक ऑस्कर विनिंग जर्मन डायरेक्टर फ्लोरियन गैलनबर्गर, उनकी फिल्म
1: ऑडिशन से मिली थी।
0: ऑडिशन से, बहुत राउंड्स ऑफ ऑडिशन थी।
1: ओहो
0: हाँ, और उस समय बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो कंसिडरेशन में थे उस रोल के
1: हो
0: लिए।
1: जिनके नाम हम नहीं लेना
0: नहीं
1: चाहेंगे।
0: लेंगे। और मुझे लगा था कि यार मतलब वो बड़े, बहुत बड़े स्टार्स थे। मैंने कहा मैं क्यों दे रही हूँ ऑडिशन। बट अगेन मुझे इसलिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि वेस्ट में ना वो लोग लिपसिंग नहीं करते हैं, और रोल था एक कोठे में जो गाना गाती है और नाचती है उस औरत का। एंड फ्लोरियन वांटेड कि ऑब्वियसली जो एक्टर है वो लाइव गाएंगे, ही वांटेड अ सिंगर। तो मैंने वहीं पे स्कोर किया
1: क्या बात है।
0: कि, और मतलब हमको डांस भी करना था वहां पे और गाना भी था। एंड वो जो गाना है बंगाली ठुमरी थी जो आई हैड टू सिंग फॉर दैट फिल्म।
1: यू हैव टू सिंग।
0: ओके।

0: তোমার নই, তোমার নই, তোমার নই।
1: क्या सुंदर तो बोल है, मतलब अद्भुत, क्या लाइन है वो, कामना के फूल,
0: हाँ
1: क्या बात है, क्या बात है, सुंदर। तो इस फिल्म ने बहुत नाम दिया,
0: हाँ
1: और एक्सपीरियंसेस किस तरह से रहे एक
0: ये
1: इंटरनेशनल टीम के साथ काम
0: बिल्कुल
1: करने के?
0: इंटरनेशनल टीम के साथ, क्योंकि योगन योगस जो हमारे सिनेमाटोग्राफर थे वो विम वेंडर्स के फिल्म
1: हो,
0: उन्होंने
1: टुवर्ड्स
0: शूट
1: द
0: किया
1: एंड ऑफ
0: था।
1: द वर्ल्ड।
0: यस सो एक एक नाम ऐसे आ रहे थे तो हमें लग रहा था माय गॉड हम लोग ऐसे लोगों के साथ, और पहला ब्रेक होता है। उसके बाद जब फिल्म बन गई और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स हम लोग ट्रैवल हुए, वो पहला एक्सपीरियंस था। टोरंटो से शुरू हुआ, फिर हम बर्लिन आ ले गए, और बर्लिन में हम बड़े स्टार्स से मिले, मतलब कियानो रीव्स तो वो मतलब बहुत ही कमाल का
1: चार पांच
0: एक्सपीरियंस था।
1: धड़कन मिस।
0: हाँ बिल्कुल टोटल। और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। अच्छा वो पहली पिक्चर थी जहां हम लोगों को इतना मतलब वो मिला था। पैसे भी अच्छे मिले थे लेकिन तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, तो बर्लिन आले जब होती है ना बहुत ठंड होती है वहां, -10। मेरे पास एक ही कोट था, कपड़े भी ठीक ढंग से नहीं थे, एक साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की बहुत अच्छी,
1: वाह,
0: लेकिन -10 में रेड कार्पेट और कोट भी, मतलब वहां जाके मुझे फ्लोरियन ने और एक कोट मतलब दिया, एक विंटर कोट की दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, क्योंकि मेरे पास दिल्ली की ठंड वाली कोट थी।
1: बिल्कुल।
0: इंडिया में ऐसे कोट्स मिलते ही नहीं थे, वो तो बाद में ब्रिक लेन करने के बाद जब मैं लंदन शिफ्ट हो गई थी देन आई अंडरस्टूड व्हाट विंटर कोट्स आर।
1: क्या
0: तो
1: एक्सपीरियंस था वो एकदम, है
0: हाँ
1: ना।
0: मतलब बूट्स भी नहीं थे, चप्पल और सॉक्स पहन के गए थे बर्लिन आले अटेंड करने और मिल
1: वाह
0: रहे किसे, कियानो रीव्स
1: वाह
0: पर
1: वाह वाह,
0: ये
1: यही तो
0: कहानियां
1: मजा है।
0: बहुत ही कमाल। और मेरे को एक्टर प्रशांत नारायणन वो भी आए थे, और हम लोगों को रिट्स कार्लटन में ठहराया गया था, तो हम तो
1: वाह
0: पागल हो
1: वाह,
0: गए थे, मतलब लाइक द होटल इज सो ऑप्यूलेंट
1: ग्रैंड।
0: या बट थैंकफुली लेटर इन लाइफ दिस बिकेम अ नॉर्म इन लाइफ, लाइक मेनी मोर फिल्म्स हैपेंड लाइक दिस, जहां मतलब बहुत ट्रेवल मैंने किया, जूरी में भी रही, और ये धीरे धीरे ये पार्ट ऑफ लाइफ बन गई।
1: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये जो
0: दिस इज
1: है,
0: द बिगिनिंग। या
1: यस बिल्कुल, लेकिन इसके बाद इंटरनेशनल फिल्म्स और उनमें अवार्ड्स लेने और तारीफ पाने का सिलसिला लगातार चलता रहा,
0: जी
1: तो इसके बाद कौन सी फिल्म आई?
0: इसके बाद मैंने यहाँ 12 आना किया, मतलब इंडिया में एक फिल्म की
1: मेनन के साथ।
0: महाराजा मेनन के साथ ही किया
1: जी
0: एक, और फिर ब्रिक लेन हैपेंड। फिर कुछ दिन कुछ साल मुझे बहुत अच्छी फिल्में नहीं मिल रही थी, फिर भी देख इंडियन सर्कस करके एक फिल्म की मैंने उस समय, और उसमें मुझे नेशनल अवार्ड मिला, लेकिन फिर भी
1: मजा
0: ऐसा
1: नहीं
0: नहीं
1: आ
0: है
1: रहा था
0: कि मतलब बहुत काम मिल रहा था, ऐसा
1: उस
0: नहीं हो
1: दौरान।
0: रहा।
1: एक बांग्ला फिल्म भी की,
0: बिबौर, हाँ
1: बिबौर।
0: बांग्ला बिबौर भी की, फिर मुझे ब्रिक लेन मिला, और एक फ्रेंच फिल्म भी की थी मैंने, लेट द विंड ब्लो, हवा आने दे करके। फिर ब्रिक लेन के बाद मैं लंदन शिफ्ट हो गई कुछ साल के लिए।
1: ये डिसीजन किस चीज पर बेस्ड था?
0: ये एक्चुअली वहां से कुछ अच्छे काम मिल रहे थे इसलिए था, और मैंने शादी भी कर ली ये भी था,
1: ये भी
0: हाँ
1: था,
0: प्यार हो गया
1: वाह
0: ये भी था,
1: वाह।
0: दोनों चीजें थी। और मैंने वहां पे म्यूजिकल थिएटर भी किया, बहुत बड़ा वेस्ट एंड पे, यू नो रॉयल ओपरा हाउस में, जॉसलिन पुक जिन्होंने गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क में म्यूजिक दिया वो म्यूजिक डायरेक्टर थे इस म्यूजिकल के, तो बहुत मजा आया काम करके। और फिर
1: कितना फर्क है इंडियन थिएटर की दुनिया और ब्रॉडवे की दुनिया में?
0: द थिंग इज इंडिया में हमें थिएटर, मराठी थिएटर या गुजराती थिएटर जैसे प्रोफेशनल थिएटर है, लाइक
1: बिल्कुल
0: प्रोफेशनली चलती है वो, लेकिन हिंदी थिएटर में प्रोफेशनल थिएटर एक रेपुटरी कंपनी या ऐसे छोड़ के नहीं है। तो प्रोफेशनलिज्म जो है, क्योंकि जहां आपको पैसे मिलते हैं अच्छे खासे अपनी जिंदगी बिताने के लिए कि आप सिर्फ थिएटर कर रहे हो, वो नहीं होता यहाँ। तो अगर वो नहीं होगा तो आपकी क्वालिटी जो है वो सफर करेगी, क्योंकि अभी मैं एक प्ले कर रही हूँ जो मैंने और शारिब हाशमी हम दोनों ने मिलकर लिखा, पर क्या होता है कि
2: हमें जब फ्री वक्त मिलता है तभी हम वो कर पाते हैं, क्योंकि हमें पैसे नहीं मिलते हैं इससे। ये हॉबी हो जाती है, जबकि हम अपने पूरे मतलब अब हम लोग एक्सपीरियंस्ड हैं तो फिर भी उसको एक लेवल के प्रोफेशनलिज्म तक ला पाते हैं, बट नो वन इज फंडिंग अस।
1: तो इसके सहारे जिंदगी नहीं बिताई जा सकती।
2: या तो उसमें फर्क हो जाता है। अभी जब मैं वहां पे प्ले कर रही थी तो हम जो 8 वीक्स का रिहर्सल कर रहे थे, हमें बाकायदा फुल पेमेंट मिलता था उसका, वीकली मनी, विच यूज टू बी वेरी गुड। उसके बाद शोज जब कर रहे हैं तो हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है उस समय। तो अगर ऐसा हो तो मैं तो जिंदगी भर थिएटर ही करूं।
1: बिल्कुल,
2: बिकॉज आपको लाइव परफॉर्मेंस में जो मजा आता है, जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलती है, जो रिएक्शन मिलता है, वो फिल्म में नहीं मिलता है।
1: ऑफ कोर्स,
2: बट द थिंग इज वी ऑलवेज हैव टू बैलेंस इट बिकॉज वो है ही नहीं।
1: तो लंदन में थिएटर होता रहा।
2: हाँ,
1: अलग अलग प्रोडक्शन में काम
2: किया। और यहाँ पे भी मैंने पोस्टकार्ड्स फ्रॉम गॉड करके एक बहुत बढ़िया प्रोडक्शन किया दक्षा शेट और उनके डांस कंपनी के साथ, इंटरप्रिटेशन ऑफ इम्तियाज धारकर्स पोएम्स, और म्यूजिकल ही था वो।
1: क्या बात है,
2: इट वाज फैंटास्टिक। तो ऐसी ऐसी चीजें करती गई मैं, बट ब्रिक लेन चेंज्ड अ लॉट ऑफ
1: एवरीथिंग। यस, मुझे ये बताइए कि लंदन में रहते हुए और कौन कौन सी फिल्में भी हुई।
2: फिल्में भी हुई, मैंने देव बेनेगल के साथ रोड मूवी की, मतलब यहाँ आना जाना, फिर और एक फिल्म की थी मॉनसून शूट आउट करके, जिसमें नवाज और मैं हैं, गुनीत ने प्रोड्यूस किया था उसको, बॉम्बे समर करके एक अमेरिकन डायरेक्टर के साथ एक फिल्म की। सो ऐसी चीजें मैं करती गई।
1: और लंदन का ये जो प्रवास है, ये कब और कैसे खत्म हुआ?
2: धीरे धीरे क्या हुआ कि इकोनॉमिक वहां पे स्टैग्नेशन आ रही थी ना, 2009-10, ये दैट वॉज लाइक यू नो जो उनका स्टॉक मार्केट पूरा गिर गया, लीमन ब्रदर्स वगैरह सब क्रैश हो गए। सो वर्क वॉज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट देयर। आई वॉज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क हियर ओनली।
1: अच्छा,
2: तो मतलब जैसे देव बेनेगल की फिल्म है, मैं रह वहां रही थी पर यहाँ काम कर रही थी काफी सारा। सारी फिल्में इंटरनेशनल टाइप की थी बट आई वॉज डूइंग वर्क हियर, तो मुझे लगा कि यहाँ थोड़ा वक्त ज्यादा बिताया जाए।
1: तो आप वहां से वापस आ गई?
2: वापस आ गई।
1: और
2: एक चीज थी, मुझे पहले ही कहा था मुझे ठंड पसंद नहीं। सो द वेदर वॉज गेटिंग ऑन टू माई नर्व्स, वेदर आई लाइक इट और नॉट।
1: ये सही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जो है मुंबई आपका घर हो गया।
2: जी।
1: अब भोपाल वाली फिल्म तभी हुई?
2: भोपाल वाली फिल्म भी लंदन में रहते हुए हुई।
1: अच्छा,
2: क्योंकि वो भी वहीं का प्रोडक्शन था। या रवि कुमार जो डायरेक्टर थे, ही इज ब्रिटिश।
1: ओके।
2: या
1: उस फिल्म में अभय आपके साथ थे?
2: नहीं, भोपाल प्रेयर फॉर रेन में मैं और राजपाल यादव थे।
1: ओके।
2: और मार्टिन शीन, कार्ल पेन, ये
1: अच्छा,
2: सब
1: हाँ,
2: वो इंटरनेशनल फिल्म।
1: करेक्ट, करेक्ट।
2: या, या
1: जी जी जी
2: या।
1: बिल्कुल, उसका एक्सपीरियंस कैसा था?
2: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रवि मतलब डॉक्टर थे एक्चुअली, और उनकी ये पहली फिल्म थी।
1: अच्छा।
2: और
1: एक ट्रेजेडी होने वाली है उसके इर्द गिर्द।
2: हाँ,
1: बुनी गई।
2: हाँ।
1: फिल्म।
2: फिर मैंने अन्ना कारेनिना भी किया उस समय, व्हेन आई वाज इन लंदन, जो राइट के साथ, मतलब काफी सारा वहाँ इधर दोनों का काम कर रही थी।
1: बिल्कुल मजेदार है ये। मुझे लगता है कि यहाँ भी एक गाना सुनते हैं, फिर आगे की बात करते हैं।
2: बिल्कुल।
1: तो अब बताइए कौन सा गाना आपके जहन में आ रहा है?
2: मुझे नूर जहान के गाने जो है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा।
1: क्या बात है, उन्हीं ने गाया है, आवाज दे कहाँ है।
2: बिल्कुल,
1: वो भी सुना जा सकता
2: है। वो भी, हाँ हाँ, वो भी सुना जा सकता है।

0: इन तमाम फिल्मों की बात हो रही है, इस बीच में मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपने आई लव न्यू ईयर जैसी फिल्म भी की,
1: जी
0: मीना की, सिद्धार्थ की, ये सारे इंटरनेशनल फिल्म हैं, इंडिपेंडेंट फिल्म्स भी कहा जा सकता है। क्या बम्बैया चमक दमक वाले सिनेमा ने आपको आकर्षित नहीं किया?
1: आई लव NY, सनी देओल और कंगना रनावत है उसमें.
0: वो एक फिल्म थी, यस
1: वो
0: यस।
1: मेन स्ट्रीम फिल्म ही थी. और सो आई प्ले हिज फर्स्ट गर्लफ्रेंड एंड आई डंप हिम. सो
0: अरे
1: आई हैड द
0: वाह,
1: प्लेजर ऑफ डंपिंग सनी देओल ऑन
0: डंपिंग
1: स्क्रीन.
0: द मेन हीरो, क्या बात है, मजे की बात है।
1: नहीं, ऐसा नहीं है एक्चुअली. मैं तो सिद्धार्थ बहुत ही, मतलब रिची मेहता जिन्होंने दिल्ली क्राइम डायरेक्ट की, उनकी फिल्म थी. और बहुत ही अच्छी फिल्म मेकर हैं वो, बहुत अच्छे राइटर भी हैं, दोस्त भी हैं. बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके. ये सब फिल्में की मैंने, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं मेन स्ट्रीम फिल्में नहीं करना चाहती थी. लेकिन ऐसा ही काम आता रहा मेरे पास. और मुझे लगता है कि ये ऐसा, आप हमेशा टाइप कास्ट हो जाते हो ना, कि आपको स्लॉट में ढाला जाता है कि आपने ऐसा काम किया है तो आप ऐसे ही हो. और स्पेशली आप अगर ड्रामा स्कूल से हो तो लोग ये समझते हैं कि आप अगर अच्छे एक्टर हो तो आप मेन स्ट्रीम काम नहीं कर सकते. ऐसा नहीं होता है.
0: एक सील ठप्पा, एक टाइप
1: हाँ
0: कास्ट वाला मामला
1: हाँ बट
0: होता है।
1: ऐसा नहीं होता है. हम लोग सब कुछ कर सकते हैं. बट दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स, पार्च्ड की मैंने,
0: हाँ,
1: पार्च्ड
0: मैं
1: जो
0: बस उसी की तरफ आ रहा
1: किया.
0: था कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म आपके करियर की है
1: हाँ,
0: पार्ज, जो
1: पार्च्ड.
0: महिलाओं की जिंदगी पर एक तरह से कहा जाना
1: यस,
0: चाहिए।
1: और पार्च्ड वॉज एक्चुअली अ स्टोरी दैट आई हैड रिटन
0: अरे
1: इनिशियली.
0: वाह,
1: यस
0: ये तो कमाल की बात है, ये मुझे नहीं पता था,
1: हाँ,
0: वाह।
1: मैंने ये लिखा था. और मैंने एक दिन, हम लोग मिले थे लीना और असीम, और हम सोच रहे थे कुछ करे कुछ करे. तो मैंने लीना को ये कहानी सुनाई और उसको बहुत अच्छी लगी. उसने कहा कि यार इसको बनाते हैं. मैंने कहा बनाओ, मैं दे देती हूँ तुमको. सो दैट्स हाउ इट एक्चुअली स्टार्टेड. देन आई टुक हर टू दैट प्लेस जहां से मुझे सोर्स मिला था उस कहानी का. एंड देन शी डिड हर रिसर्च एंड शी रोट द स्क्रीन प्ले. और ऐसे करके बनी वो.
0: वो एक शानदार फिल्म बनी।
1: हाँ, वो फिल्म मेरे लिए बहुत स्पेशल इसलिए भी है कि द जर्म ऑफ द आइडिया केम फ्रॉम मी. और
0: इसकी शूट से जुड़ी हुई कुछ बातें,
1: हाँ, तो उसके बाद राधिका आप्टे, सुरवीन चावला, इन सब की कास्टिंग हुई. एंड वी हैड लाइक अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टाइम, शूटिंग दिस टुगेदर, बॉन्डिंग. एंड हमने साथ में बनाई इस फिल्म को. वी ऑल गॉट टुगेदर एंड मेड द फिल्म. रसल कार्पेंटर, जिन्होंने टाइटैनिक शूट किया है, ही इज अ सिनेमाटोग्राफर ऑफ एवटार्स एंड टाइटैनिक, ऐसे बड़े बड़े फिल्मों, ही शॉट द फिल्म. और ये असीम बजाज की वजह से है,
0: वाह
1: हु इज आर
0: वाह,
1: प्रोड्यूसर. और लीना के पार्टनर भी हैं वो. सो असीम इज रियली इनक्रेडिबल प्रोड्यूसर. वो ऐसे ऐसे लोगों को लेकर आए,
0: वाह,
1: एक छोटी फिल्म जो है उसका विजन बड़ा हो गया
0: बड़ा हो
1: पूरा.
0: गया, और फिल्म
1: हाँ,
0: बात भी बड़ी करती
1: बड़ी.
0: है, और
1: हाँ
0: इसलिए वो बहुत दूर तक पहुंची एक
1: यस.
0: तरह
1: यानी
0: से।
1: लीना टुक दैट लिटिल स्टोरी दैट आई हैड, वो उसको वहां तक लेके चली गई.
0: वाह,
1: सो इट वॉज रियली फैंटास्टिक. एंड ऑल्सो वर्किंग विथ सच अमेजिंग एक्टर्स, सब लोग बिंदास खुल के हम लोगों ने काम किया.
0: बिल्कुल सही है। जोरम के बारे में बात कीजिए,
1: जी,
0: क्योंकि वो एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म
1: फिल्म
0: है।
1: है. हाँ, तो अगेन देवशीष मखीजा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. और मुझे उसका काम, सिर्फ काम ही पसंद नहीं है, मुझे वो इंसान बहुत पसंद है.
0: वाह,
1: ही इज अ अनअपोलोजेटिक, अनकॉम्प्रोमाइजिंग आर्टिस्ट
0: बिल्कुल, अपनी
1: जो
0: तरह की फिल्में करनी है।
1: आज की तारीख में आपको बहुत कम मिलती है. और मैं इसलिए देवशीष को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत मानती हूँ. तो जब जोरम वो कास्ट कर रहा था तो मैं एक्चुअली आबूधाबी में थी. आई वॉज शूटिंग फॉर अ फिल्म कॉल येल्लो बस. और वो भी एक इंटरनेशनल फिल्म है, अमेरिकन डायरेक्टर की फिल्म है. तो देवशीष ने कहा मुझे कि मेल ड्रिवन फिल्म है, बट आई वॉन्ट यू बिकॉज दिस कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड आई वॉन्ट समबडी हु विल जस्ट बी एफर्टलेस. मैंने कहा मैं कुछ नहीं पूछूंगी, मैं कर रही हूं,
0: वाह,
1: दैट्स ऑल.
0: क्या बात है, और जोरम ने काफी नाम कमाया, काफी चर्चा बटोरी
1: बिल्कुल
0: देवाशीष की तमाम फिल्मों की
1: बिल्कुल
0: तरह।
1: बिल्कुल कमाल. और मुझे मनोज के साथ काम करने में बहुत अच्छा लगा. जीशान मेरा जूनियर है और बहुत अच्छा एक्टर है, तो इतने अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने में बहुत बहुत मजा आया. एंड मनोज भी बहुत अच्छे इंसान है.
0: बिल्कुल
1: यू नो ही इज सच अ ब्यूटिफुल पर्सन. एक्टर तो सबको पता ही है वो है.
0: बिल्कुल। तो ये आपकी जो फिल्मोग्राफी है उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म बन जाती है। मुझे गौरी हरी दास्तान का नाम भी आपकी फिल्मोग्राफी में दिखता है, और
1: बिल्कुल
0: मुझे लगता है कि इस फिल्म की भी बात होनी चाहिए,
1: या
0: क्योंकि अनंत बहुत अलग तरह से फिल्में बनाते हैं।
1: अनंत जी के साथ मैंने 4 फिल्में की है.
0: हाँ बिल्कुल, पीछे भी वो
1: मैंने गौर हरी दास्तान से शुरू की, वो जर्नी जो है गौर हरी दास्तान से शुरू हुई. फिर रफ बुक करके मैंने एक फिल्म की थी उनके साथ, और वो काफी साल तक थी, अभी शायद वो हटाई गई है
0: अच्छा
1: पे थी वो, और उसको थिएट्रिकल रिलीज भी विवेक वासवानी ने प्रोड्यूस किया था. वो एजुकेशन सिस्टम पे था, वहां पे मैंने एक फिजिक्स टीचर का किरदार निभाया था. और एक्चुअली रफ बुक में मैंने अपने आप को कास्ट कर लिया था, क्योंकि
0: अच्छा
1: अनंत जी
0: ऐसा
1: के ऑफिस में मैं उनसे मिलने गई थी, उन्होंने कहा मैं रफ बुक करके एक फिल्म लिख रहा हूँ. तो यू नो इट्स अ स्टोरी अबाउट अ फिजिक्स टीचर एंड ही डज दिस एंड ही, अरे व्हाई कांट इट बी अ शी, बिकॉज ही वॉज एक्चुअली ऑफरिंग मी अ रोल इन द फिल्म बट नॉट द सेंट्रल कैरेक्टर.
0: राइट
1: सो ही सेट ओके. और मैं डैलस जा रही थी नेक्स्ट डे किसी और फिल्म के लिए. व्हेन आई केम बैक ही सेट कि ओके दीज आर योर डेट्स एंड यू कम, एंड या नाउ इट्स नॉट ही इट्स शी. आई वॉज लाइक ओके
0: वाह
1: वंडरफुल.
0: क्या बात है।
1: देन उसके बाद मैंने डॉक्टर रखमाबाई
0: वो भी उनके साथ है,
1: उनके
0: बिल्कुल,
1: साथ
0: जिसका
1: की,
0: जिक्र हमने अभी पीछे किया,
1: बिल्कुल
0: देश की पहली डॉक्टर, महिला
1: देश की
0: डॉक्टर।
1: प्रैक्टिसिंग महिला डॉक्टर.
0: जी
1: हाँ वो की मैंने, और उसमें तो बहुत ही मतलब इट वॉज अ हार्ट, क्योंकि ये जर्नी थी उसकी. और आई हैड टू लर्न ऑल्सो मराठी फॉर दैट. पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जब मुझे बेस्ट एक्ट्रेस मिला, तो वहां लोगों को लगा कि मैं तो पुणे चा मुलगी हूँ.
0: क्या बात है।
1: और मुझसे ऑडियंस ने आके मराठी में बातचीत करना शुरू किया, एंड आई वॉज लाइक कंफ्यूज, कि मैंने कहा मैंने उतना ही सीखा
0: जो वहां दिख रहा
1: वहां दिख रहा है. एंड इट वॉज ओल्ड मराठी ऑल्सो,
0: है। यस
1: इट्स नॉट द बोलचाल मराठी दैट इज बींग स्पोकन नाउ. अपनी बेटी को मैं ये जरूर कहती हूँ कि प्लीज आप मराठी सीखो, यू नो बिकॉज यू आर स्टडिंग मराठी इन स्कूल, तो आपको सीखना है और आप बिल्कुल सीखो, अच्छे से सीखो.
0: क्या बात है। तो 3 फिल्मों की बात हुई ना अनंत महादेवन के साथ,
1: हाँ अभी पास्ट टेंस करके और एक फिल्म अभी मैंने उनके साथ अभी खत्म की है.
0: क्या बात है, एक ही डायरेक्टर के साथ 4 फिल्में,
1: हाँ उनके
0: ये तो
1: साथ मुझे
0: कमाल
1: काम
0: की
1: करने
0: बात
1: में
0: है।
1: बहुत मजा आता है. वो सब्जेक्ट हमेशा बहुत ही अलग अलग चूज करके लाते हैं, मतलब दे आर सो. तो पास्ट टेंस में परेश, और स्टोरी टेलर भी की, फिफ्थ, यस
0: लीजिए, एक फिल्म तो छूटी गई थी।
1: आई हैव डन स्टोरी टेलर ऑल्सो विद आनंद जी.
0: क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, एंग्री इंडियन गॉडेस भी आपके करियर की एक इंपॉर्टेंट फिल्म है, और
1: बिल्कुल
0: बहुत फेस्टिवल्स में इस फिल्म ने अपना झंडा लहराया है।
1: जी. एंग्री इंडियन गॉडेस एक्चुअली पूरा इम्प्रोवाइज्ड फिल्म है, और वो बहुत ही कमाल का प्रोसेस था उसमें, क्योंकि वहां पैन नलिन जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने हमें कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, कुछ नहीं था. ऑल द एक्सेप्ट फॉर माय कैरेक्टर एवरीबडी ऑल्सो डिवेलप देयर ओन कैरेक्टर्स. मैं एक्चुअली और एक फिल्म शूट कर रही थी उस समय विकास मिश्रा की, इसलिए मेरे पास डेट्स नहीं था. दैट्स वाई आई हैड टू आई ज्वाइन दैट प्रोसेस लेटर. तो इसलिए मुझे नलिन ने कहा कि आई हैव टू गिव यू अ कैरेक्टर वेर यू हैव टू फिट इन एंड रिजॉल्व द थिंग्स नाउ, बिकॉज एवरीबडी एल्स इज ऑलरेडी सिलेक्टेड, देव गॉन थ्रू द 20 डेज वर्कशॉप विच आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ. आई कुडंट बी, जबकि मैं मतलब इट वॉज अ थिंग दैट आई ऑलवेज फील अ लिटिल कि यू नो आई वॉज देयर इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, और वो एंड
0: लेकिन फिर
1: वक्त
0: बीच में
1: यहाँ डेट
0: चीजें
1: आए तो हो
0: दूसरी।
1: गया. एनी वे सो इट वॉज लाइक कंप्लीटली डिवाइज्ड, एंड इट वॉज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस, क्योंकि उस समय निर्भया का केस हुआ था 1 साल पहले, और सब लोग हिले हुए थे कि जिस ढंग का वायलेंस देखा गया, जिस ढंग की मतलब कॉन्वर्सेशंस पब्लिक में आई, यू नो एवरीथिंग वॉज. सो द फिल्म केम आउट ऑफ दैट. सो इट्स अ पर्सनल फिल्म फॉर ऑल ऑफ अस, एंग्री इंडियन गॉडेसेस.
0: वाह बिल्कुल, और उस फिल्म को अपना प्रॉपर ड्यू मिला, उसका काफी नाम हुआ उस फिल्म का। यहां भी एक गाना सुनते हैं,
1: बिल्कुल.
0: कौन सा गाना होगा?
1: इस समय मुझे लगता है स्वानंद किरकिरे.

0: मेरा दोस्त भी है और मेरे प्ले में उसने गाना लिखा भी है, और
1: वाह,
0: उसका जो मतलब मेरा फेवरेट गाना बावरा मन, वो
1: हमने
0: सॉन्ग
1: अब तक स्वानंद की आवाज में सुना है, अब हम
0: हाँ
1: तनिष्ठा की आवाज में सुनना चाहते
0: स्वानंद माफ कर दे पर ये एनएसजी में जब हम थे ना, वो तब से गाता था
1: तब से
0: ये।
1: गाते हैं। बिल्कुल
0: हाँ
1: बिल्कुल।
0: बा

0: अब बातचीत को हमें उस मोड़ पर ले जाना होगा जहां आपकी जिंदगी अचानक एक दिन पूरी तरह से बदल गई। वो क्या था और वो कैसे सामने आया?
1: मैं फुल प्लेट शूट कर रही थी। फुल प्लेट की जर्नी बहुत मुश्किल रही क्योंकि प्री प्रोडक्शन में आई लॉस्ट माय फादर एंड आई वाज वेरी क्लोज टू हिम। और

0: शूटिंग इट, सो इट वॉज एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल. और फिर फिल्म खत्म हुई, शूटिंग खत्म हुई, तो मुझे दूसरे और एक को प्रोड्यूसर को लाना पड़ा टू फिनिश द फिल्म. इट वॉज इनक्रेडिबली स्ट्रेसफुल. फिर जब वो हुआ और हमने एडिट खत्म की, मेरी तबीयत थोड़ी सी अजीब लग रही थी एंड आई हैड जस्ट रैंडमली गॉन टू माई गायनोकोलॉजिस्ट टू डू सम चेकअप्स. लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा था कि इतना कुछ हो जाएगा. और वहां उन्होंने मतलब स्क्रीनिंग और इन सब के बाद कहा कि मुझे स्टेज 4 मेटास्टेटिक कैंसर है.
1: लेकिन इसके कोई लक्षण पहले कहीं नजर नहीं आए, आप काम करती रहीं लगातार
0: तो इतना फैल गया था मेरा कैंसर मेरे बॉडी में,
1: और उसने कोई संकेत नहीं दिए।
0: मतलब संकेत अभी मुझे लगता है कि शायद दिए, लेकिन वो ऐसा कुछ मतलब नहीं था, यू नो दैट इट इज. सो आई वॉज लाइक ये कैसे हो सकता है,
1: बिल्कुल
0: यू नो, एंड इट वॉज अनरियल. और इट वॉज जस्ट लाइक अ फ्यू मंथ्स बैक आई लॉस्ट माई फादर टू,
1: सेम थिंग।
0: या इट वॉज ही हैड क्रॉनिक माइलॉयड ल्यूकेमिया, CML. सो आई डिडंट नो हाउ वुड आई टेल माई मदर.
1: ओ गॉड।
0: तो मैं रिपोर्ट्स जो है, हर दिन एक पॉजिटिव रिपोर्ट निकलता था, मतलब आपके लिए वो नेगेटिव है उस समय, कि हर एवरी रिपोर्ट इज पॉजिटिव, एवरी रिपोर्ट इज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है ये भी. तो मैं रिपोर्ट्स गाड़ी में रखती थी और फिर ऊपर आई हैड अ 9 ईयर ओल्ड, अभी वो 10 साल की, 9 साल की थी, डॉटर एंड एंड अ मदर हु हैड लॉस्ट हर हस्बैंड जस्ट लाइक यू नो ईयर बैक, एंड आई डिडंट नो हाउ टू टेल हर. बट ऑब्वियसली आई हैड टू टेल हर एट सम पॉइंट. मेरी बहन न्यूयॉर्क में रहती है, मैं उसके साथ बात कर रही थी, और मेरे कुछ एक बहुत अजीज दोस्त है दिल्ली में, वो मेरे स्पिरिचुअल गुरु भी है, वैसे दोस्त है, बट ही इज सच अ काम एंड अ ब्यूटिफुल पर्सन. तो मैंने मतलब आई जस्ट ब्रोक डाउन एंड आई वॉज टॉकिंग टू दीज टू पीपल. मेरी बहन ने मुझे सबसे पहले ये कहा कि दीदी आई विल कम बट यू कान डू दिस अलोन, आई एम टू फार अवे, यू आर इन टू मच ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन. क्योंकि मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, मैं सिंगल हूं, मेरी बेटी के लिए एक माँ है सिर्फ और कोई नहीं है. मेरी मम्मी के लिए भी मैं ही सपोर्ट सिस्टम हूं, नाउ दैट माई डैड इज नॉट देयर. इमोशनली, प्रैक्टिकली, फाइनेंशियली, देर इज नो बडी एल्स. सो हाउ वुड आई डू दिस? एक्सेसली हाई. इनिशियली इंश्योरेंस ऑल्सो रिफ्यूज माई क्लेम.
1: क्यों?
0: उनके बहुत ही गंदे फंडे होते हैं, उसके अंदर मैं जा ही नहीं रही हूं, एंड आई हैड टू फाइट एंड फाइट एंड फाइट विद द इंश्योरेंस.
1: आप जीती?
0: यस, बट द थिंग इज देर आर टू मेनी बैटल्स, यू नो. इसमें मैं हील कैसे हूं? बिकॉज इट्स ऑल्सो अबाउट हीलिंग एंड आई वॉज कमिंग एंड द स्ट्रेस ऑफ द फिल्म.
1: वो तो रखा ही हुआ था।
0: तो इट वॉज जस्ट आई हैड रीच द रॉक बॉटम द डे द इंश्योरेंस क्लेम गॉट रिजेक्टेड. मेरा अगले हफ्ते कीमोथेरेपी शुरू, और मेरा इंश्योरेंस का मैंने जो पेपर वर्क करके दिया था, जो मांगा था मैंने सब कुछ दिया उनको, उन्होंने फिर भी मुझे मैसेज आया कि योर इंश्योरेंस क्लेम हैज बीन रिजेक्टेड. दैट डे आई रियली हिट द रॉक बॉटम कि यार इसके आगे अब अच्छा ही होगा, इससे बुरा और क्या होगा.
1: बिल्कुल।
0: बट माई सिस्टर टोल्ड मी कि नहीं, तुमको अपने दोस्तों को बताना पड़ेगा, यू हैव टू टेल योर फ्रेंड्स, नहीं तो इफ नॉट नाउ देन वेन. वो सिर्फ पार्टी करने के लिए है क्या? दैट्स वेन आई रीच्ड आउट. मेरा एक गर्ल गैंग है, मैंने सबसे पहले उनको बताया.
1: वो लोग
0: फिर
1: कौन है?
0: शबाना जी हमारी गैंग की लीडर है.
1: इसीलिए तो मैंने नाम पूछे हैं जी।
0: और उसमें दिया है, दिव्या है, तन्वी है, कोंकोना है, विद्या है, शहाना है, संध्या मृदुल है, उर्मिला मतोंडकर है. दिस वॉज आर गर्ल गैंग. ऋचा चड्ढा है. तो ये इन्होंने मुझे, एक्चुअली ऋचा ने मुझे डॉक्टर का मतलब रेफरेंस दिया, जिनके पास मैं गई फाइनली. शबाना जी आके मेरी मम्मी से मिलके, यू नो जावेद साहब, शबाना मतलब टर्न बाय टर्न घर आए थे, उनको जो मतलब हौसला दिया, दैट रियली सॉर्ट ऑफ मेड माई मदर्स लाइफ इजियर, कि उनको लगा कि नहीं, अकेली नहीं है. एंड अपार्ट फ्रॉम देम आई हैव अ लॉट

0: फ्रेंड्स जो मेरे घर के आसपास रहते हैं, संजय सूरी है, ऑनीर है, मेरे बहुत अच्छे अजीज दोस्त हैं, दीप्ति गुप्ता जो सिनेमाटोग्राफर हैं, और मतलब उसका तो मैं क्या कहूँ कि रात के 2 बजे भी उसको फोन करो तो वो आ जाती है।
1: गजब।
0: हाँ, अनुराधा शेट्टी है, सब बहुत सारे और भी दोस्त हैं जो सब टर्न्स लेने लग गए मेरे हॉस्पिटल के साथ। एंड तो ये जर्नी फिर ऐसा लगा कि प्यार और मोहब्बत से ना सब कुछ जीता जा सकता है। मेरा जब ट्रीटमेंट खत्म हुआ, फर्स्ट राउंड ऑफ ट्रीटमेंट खत्म हुआ, अभी भी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, आई एम स्टिल ऑन अ टारगेट मेडिसिन। मुझे हर
1: जबकि
0: 21,
1: 1.5 साल बीत चुका है।
0: हाँ 21 दिन बाद मुझे अभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ता है मेरे टारगेट मेडिसिन के लिए। बट जो मेन मतलब कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन, इन सब के बाद मैंने एक पोस्ट लिखा था फेसबुक पे, और मुझे यही उस समय एहसास हुआ दैट हम लोग मतलब सब चीज रोबोट्स के थ्रू रिप्लेस करने जा रहे हैं, एआई, बट इट इज एक्चुअली जस्ट द टच ऑफ अ रियल ह्यूमन बीइंग विच हील्स एवरीथिंग। और मेरे डॉक्टर्स ने भी मुझे यही कहा था कि अगर तुम पॉजिटिव रहोगे, माइंड डाइवर्टेड रहेगा, एंड इफ यू बिलीव दैट यू विल बी ओके, देन यू विल बी ओके।
1: ये कितना मुश्किल
0: सो
1: था।
0: ये मुश्किल नहीं था, बिकॉज मेरे पास ये सपोर्ट था, और मेरी बहन आई थी, मेरी बहन मेरी बेटी को अपने साथ न्यूयॉर्क लेके गई कुछ महीने के लिए जब मेरा कीमो चल रहा था। एटलीस्ट वन पर्सन इज टेकन केयर ऑफ। मैंने बोला था मेरी मम्मी को भी लेके जाओ, दोनों को ले जाओ तुम, पर मम्मी ने रिफ्यूज किया कि मैं तुम को अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगी। आई थिंक दैट्स द थिंग दैट ये सपोर्ट, और फिर मैंने कीमोथेरेपी के दौरान इसी वजह से आई कुड फिनिश माई फिल्म, आई स्टार्टेड राइटिंग अ प्ले कॉल्ड ब्रेस्ट ऑफ लक
1: ये
0: अलॉन्ग।
1: प्ले का आइडिया जो शुरू होता है,
0: हाँ,
1: ये वाली कहानी बताइए,
0: ये
1: क्योंकि
0: शारे
1: इस पूरे दौर से आप
0: बिल्कुल,
1: गुजर रही
0: जिस
1: थी।
0: दिन मुझे फर्स्ट मेरा रिपोर्ट आया था, मैं शारिब से मिलने वाली थी, और मैंने सोचा मैं मिल क्यों रही हूँ उससे, और मैंने सोचा था कैंसिल करूं, फिर मुझे लगा कि नहीं यार मिलती हूँ क्योंकि माइंड
1: डाइवर्ट
0: डाइवर्ट
1: होगा।
0: रहेगा। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था मैं उसको बताऊंगी कि ऐसा रिपोर्ट में आया है, पर मैं रोक नहीं पाई अपने आप को, एंड आई ब्रोक डाउन। उसने मुझे अपनी पत्नी नसरीन से बात करवाया फोन पे, बिकॉज शी हैड गॉन थ्रू माउथ
1: वेरी
0: कैंसर,
1: डिफिकल्ट
0: शी
1: टाइम।
0: वेरी
1: या
0: डिफिकल्ट, शी गेव मी अ लॉट ऑफ होप। और मैंने जैसे फोन रखा, मैंने शाहरुख को अभी लिखते हैं, हम
1: वाह
0: इसी इसी के बारे में
1: वाह
0: लिखते हैं।
1: क्या बात है।
0: एंड इमेजिन दैट वॉज इवन बिफोर आई हैड स्टार्टेड द ट्रीटमेंट। तो दैट इवनिंग वॉज इनक्रेडिबल, क्योंकि हमारा और एक दोस्त इंद्रनील जो भी मेरे फिल्म में है वो भी आया हमसे मिलने, और दैट वॉज द लास्ट इवनिंग। मैं एक तरफ से रो रहे हैं, दूसरी तरफ से मजाक कर रहे हैं कि अरे यार क्या है,
1: देख लेंगे।
0: मेरा ही बॉडी है ना, मैं ही बॉडी को कहूंगी कि अब ठीक हो जा, अपने ही सेल्स हैं विच हैव गॉन रूग, इट्स अप टू मी इफ आई कैन हील। ये मतलब इट जस्ट वेंट बैक एंड फोर्थ लाइक दैट, एंड दैट्स द डे मतलब शारिब को मैंने बताया कि यार यही इसी सब्जेक्ट पे करते हैं हम अपना प्ले। फिर मेरा कीमो शुरू हुआ तो मैंने लिखना शुरू किया, और जब एक ढांचा लिख लिया था मैंने, फिर शारिब और मैं मतलब हम लोग जैम करते गए और उसको आगे बढ़ाते गए, डायलॉग्स पे काम करना शुरू किया, और लास्ट कीमो साइकिल पे मैंने शारिब को बुलाया अपने कीमो हॉस्पिटल में, और वहां से एक बहुत ही कॉन्क्रीट शेप लेना शुरू किया प्ले ने।
1: क्या बात है।
0: या
1: और इस पूरी जर्नी के दौरान वो आपने प्ले कंप्लीट भी कर लिया।
0: यस, हमने शोज भी किए अब
1: पहला
0: तो।
1: शो कब कहाँ हुआ था?
0: पहला शो G5A में फरवरी एंड में हुआ,
1: जी।
0: उसके बाद हम काला घोड़ा फेस्टिवल में हम लोगों ने परफॉर्म किया, लखनऊ में किया, और अभी 24 मई को रंगशीला में हमारा परफॉर्मेंस है, और फिर आगे और भी करेंगे शोज।
1: यहां एक गाने की जगह बनाई जाए,
0: हाँ
1: सुनते हैं।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: इस शो को किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है और जो लोग इस पूरे दौर से, इस मुश्किल से गुजर चुके हैं, वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इससे?
2: तो ब्रेस्ट ऑफ लक को बहुत ही बढ़िया रिस्पांस, मतलब वी कुडंट थिंक, सर्वाइवर से और ऑन्कोलॉजिस्ट से और आम जनता, हर तरीके के ऑडियंस से बहुत बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। जैसे मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट भी आए थे देखने, और लखनऊ में बहुत फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट आए थे, और उन लोगों ने भी यही कहा कि ये प्ले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखानी चाहिए, क्योंकि कॉन्वर्सेशंस अराउंड कैंसर एंड अराउंड ब्रेस्ट कैंसर, अराउंड द फैक्ट दैट स्क्रीनिंग, आप चाहे कितनी भी हेल्दी हो, आपको क्या कब हिट करती है आप नहीं कह सकते। और ये चीज हम प्ले के तहत कहना चाह रहे हैं कि, और इमोशनली कह रहे हैं, क्योंकि वो एक एंटरटेनिंग प्लेटफॉर्म भी है जिसमें हमने कहानी कही है। पर स्क्रीनिंग करवाना, अगर आप 40 के हिट कर गए हो एज अ वुमन, आज की तारीख में मैमोग्राफी करवाना, टेस्ट करवाना, ये बहुत जरूरी है। इवन इफ यू आर हेल्दी, आपको पता नहीं है मैंने ये नहीं की, ये गलती की मैंने, क्योंकि मुझे लगा मैं तो फिट हूँ, मुझे कुछ नहीं है, मैं बहुत हेल्दी लाइफ लिव करती हूँ। सो बट यू जस्ट नेवर नो, ये जो म्यूटेशंस क्यों होती है आज तक साइंस को नहीं मालूम। तो हम लोग बहुत सारे चर्चे करते रहते हैं कि अरे आयुर्वेदा कर लो या ये कर लो वो कर लो। हाँ, उन सब चीजों से क्या होता है कि आपका जनरल हेल्थ अच्छा होता है, तो प्रोग्नोसिस सबका अच्छा होता है, लेकिन दैट डजंट गारंटी एनीथिंग। ये म्यूटेशंस क्यों होता है वी रियली डोंट नो, साइंस डजंट नो इट। और आपको चीजों को साइंटिफिक नॉलेज के थ्रू ही एनालाइज करना पड़ेगा, और उस

0: के बेसिस पे ही आपकी जिंदगी आपको जीनी पड़ेगी।
1: बिल्कुल, इस तरह की जब लाइफ थ्रेटनिंग चीजें होती हैं तो करेज कायम रखना, अपना मेंटल और इमोशनल बैलेंस कायम रखना सबसे इम्पोर्टेंट होता है एज अ सर्वाइवर। इतने सारे लोग जो इन चीजों से, इन मुसीबतों से गुजर रहे हैं, उनको आप अपने अनुभव से क्या कहना चाहेंगे?
0: पहला तो ये कि मैं अपने आप को अभी भी सर्वाइवर कह सकती हूँ कि नहीं मुझे नहीं मालूम, बट मैं ये मानती हूँ कि आज मैं यहाँ पे हूँ, आपके साथ बातचीत कर रही हूँ, आज मैं अपने फिल्म को लेकर दुनिया भर ट्रैवल कर रही हूँ, अपना प्ले कर रही हूँ, अपनी जिंदगी जी रही हूँ, अपनी बेटी को पृथ्वी में वर्कशॉप करवाने ले जा रही हूँ। आई एम लिविंग माई लाइफ एंड दैट्स ऑल आई कैन डू एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप यही कर सकते हो,
1: जो भी है बस
0: हियर एंड नाउ। कल का तो हमने ना तो आपको पता है ना मुझे, ये रियलाइजेशन मुझे हमेशा से था बट अब तो मतलब ये इंटरनल है, वी रियली डोंट नो। मतलब मैं एक दिन पूरा आई वॉज एब्सोल्युटली फाइन, द वेरी नेक्स्ट डे आई हैड अ टर्मिनल इलनेस। हाउ बिजार इज दैट। मेरे दोस्तों को जब पता चला वो सब ये कहने लगे कि टैन मतलब यू नो, क्योंकि आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, आई एम नॉट दैट, यू नो, सिगरेट मैंने आज तक जिंदगी में हाथ नहीं लगाया, आई ईट हेल्दी, आई हैव ऑलवेज बीन फिट, मेरा कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है रिप्रोडक्टिव कैंसर्स का, मेरा ब्राका टेस्ट नेगेटिव है विच इज सपोज टू बी द हेरिडिटरी एलिमेंट ऑफ इट, सो हाउ देन यू जस्ट नेवर नो। तो आप वही पंडित रविशंकर ने जो कहा था ना कि जा हवा तहबे, आप अपनी जिंदगी जियो इस वक्त, हियर एंड नाउ। मैं जब कीमोथेरेपी पे जाती थी मैं दोस्तों को बुला लेती थी, वहां हमारे अड्डे चलते थे, वहां कोई पोएट्री पढ़ रहा है, कोई म्यूजिक सुना रहा है, वो हम चुटकुले मतलब ये ताकि वो वक्त निकल जाए। मेरे ट्रीटमेंट का जो पेन है, बाल झड़ रहे थे मैंने शेव करवा लिए
1: और वो भी पब्लिक को दिखाया प्रॉपरली।
0: यस
1: कि यस आई एम गोइंग थ्रू दिस,
0: यस आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट, आई मीन दैट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, आई एम एन आर्टिस्ट एंड आई एक्सपीरियंस्ड इट, आई एम एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट थिंग्स एंड आई विल एक्सप्रेस माई सेल्फ थ्रू दोज एक्सपीरियंसेस। और हम यही करते हैं और यही कर सकते हैं।
1: बिल्कुल तनिषा, क्या कुछ फ्यूचर प्लान्स जैसी कोई चीज होती है लाइफ में, वो आपने कुछ कर रखा है कि अभी कल का क्या करना है?
0: नहीं मत कल का सिर्फ पता है क्योंकि मैं परसों दिल्ली जा रही हूँ, फुल प्लेट की एक स्क्रीनिंग है वहाँ हैबिटेट सेंटर में।
1: तो क्या अगले प्ले की कोई प्लानिंग है?
0: कुछ चीजें लिख रही हूँ लेकिन वो कब आएगी कब होगा ये पता नहीं अभी, बट आई एम राइटिंग सर्टन थिंग्स, फिल्म भी लिख रही हूँ, प्ले भी लिख रही हूँ।
1: तो एक्टिंग चलने वाली है या अभी आप डायरेक्टर हो गई हैं?
0: नहीं नहीं एक्टिंग तो बिल्कुल चलने वाली है, अभी ब्रेस्ट ऑफ लक में तो मैं एक्टिंग ही कर रही हूँ। हमने लिखा है, हम एक्टिंग कर रहे हैं। मैंने एक्चुअली लीना को रिक्वेस्ट किया कि आप डायरेक्ट कर दो, सो शी हैज डायरेक्टेड इट।
1: ओके वाओ, बढ़िया बात है। तो अब मुझे ये बताइए कि जब आप प्ले या फिल्म या लिखना ये कुछ नहीं कर रही है, मतलब कोई क्रिएटिव प्रोसेस नहीं है, उस बीच में क्या चल रहा होता है?
0: हाँ, क्रिएटिव लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है फिर मैं स्विमिंग कर रही हूँ आजकल, बहुत मजा आ रहा है। तो आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द पूल, थोड़ा वहाँ रिलैक्स भी हो जाते हैं, बेटी भी सीख रही है स्विमिंग सीख रही है, देन आई स्पेंड टाइम विद हर। खाना बनाने में मुझे मजा आता है और आजकल थोड़ा सा मुझे अपने डाइट पे भी कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, तो मैं खुद अपना कुछ बना लेती हूँ।
1: क्या बनाती है?
0: हाँ, मैं बोलूंगी ना आपको हार्ट अटैक आ जाएगा मेरा खाना आजकल जो हो रहा है मम्मी कहती कि अच्छे इसको बुला लो उसको बुला, मैंने कहा कि घर पे लोगों बुलाएंगे खिलाएंगे क्या, क्योंकि क्यूजीन तो ये बन रहा है मेरी वजह से। अभी मेरी बेटी भी जो है वो हेल्दी सुन सुन के, उसका एक चैप्टर है साइंस में अबाउट फूड एंड विटामिन्स, उसको सब एफर्टलेसली आता है, इतना सुन चुकी है वो किस खाने में क्या विटामिन है, क्या खाने से क्या डेफिशिएंसी होगी।
1: राइट राइट, सो शी इज एन एक्सपर्ट नाउ।
0: या
1: बिल्कुल,
0: वो एक्चुअली मुझे टीज करने लगती है, अभी मम्मी पता है क्या कहेगी, ये देखो ये टेस्टी भी है और हेल्दी भी है, इसमें पता है ये विटामिन है, वो मिनरल्स है और ये मिलेगा,
1: पहले ही बोल देती है क्या बात है तनिषा, बहुत दिलचस्प बातचीत आपसे हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे फिर कभी बैठेंगे और फिर इसी तरह से बातें करेंगे।
0: बिल्कुल, और जाते जाते एक गाना
1: जरूर,
0: जीवन से भरी तेरी आंखें
1: मजबूर करें जीने के लिए।

0: तनिषा, बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए।
1: थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। मुझे बहुत मजा आया चीजें शेयर करने में, एक्चुअली यहाँ आने में। और जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि मैं अपने बेटी को लेकर यहाँ से और
0: जरूर आइए, स्वागत है।
2: अभी आप सुन रहे थे तनिष्ठा चटर्जी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन किया मनीषा सिंह ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले।

अध्याय की लेखनी से अवतरित दिव्य रचना जो बनी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तेजोमय प्रेरणा। स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर सुनिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अनुवादों पर आधारित वंदे मातरम एक जय घोष, इस रूपक श्रृंखला की विशेष कड़ी।

शनिवार 15 अगस्त 2026 को दिन में 11 बजे केवल विविध भारती पर। विशेष मेगा एपिसोड वंदे मातरम, एक जय घोष।

0: दोस्तों नमस्कार, रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज का रंग तरंग कार्यक्रम विशेष है। इस कार्यक्रम में आज हमने एक ऐसे कलाकार को आमंत्रित किया है जिनके गाने सुनते ही आपके पांव थिरकने लगते हैं, होठ संग संग गुनगुनाने लगते हैं। तो अब आपको बता दें, वो हैं जाने माने गायक, संगीतकार, पियानो वादक अदनान सामी। तो आइए सुने गायक, संगीतकार और पियानो वादक पद्मश्री अदनान सामी से यूनुस खान की बातचीत।
1: बहुत बहुत स्वागत विविध भारती में अदनान जी। और मुझे ये बताएं कि इतना लंबा सफर म्यूजिक की दुनिया में तय करने के बाद भी जब कोई नया गाना रिलीज होता है, क्या चल रहा होता है आपके दिल में?
2: वही चल रहा होता है जो पहले दिन चला था। मतलब कि जिस तरह की बटरफ्लाईज या गुदगुदियां अपने पेट में पहले दिन से थी, शुरू से
1: जी,
2: वो आज भी बरकरार है और आज भी उतनी शिद्दत के साथ होती है और नर्वसनेस होती है, बेचैनी होती है कि हमारी जो मेहनत है वो लोगों को पसंद आएगी या नहीं आएगी। और बस यही दुआ रहती है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो लोगों को पसंद आए। अब तक लोगों ने बेतहाशा प्यार दिया है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और बस दुआ यह है कि मैं उनकी जो उम्मीदें होती हैं उन पे मैं ठीक तरह से उतरूं और उनको वो चीज़ें मैं दूं। तो आज भी उतनी नर्वसनेस होती है, इसलिए जब मेरी नए गाने की जो वीडियो जब आप देख रहे थे, तो मैं जब आपकी आपके रिएक्शंस सुन रहा था, तो मैं उसी तरह से बेचैनी के साथ सुन रहा था जैसे कि मैं पहली दफ़ा कर रहा हूँ। क्योंकि हर दफ़ा जब आप कोई चीज़ करते हैं तो कोशिश ये होती है कि कोई अलग सी चीज़ करें, कोशिश करते हैं कि नई चीज़ करें, और उसके तहत कुछ पता नहीं होता कि लोगों को जो देख रहा होता है या सुन रहा होता है कि उनको वो चीज़ पसंद आएगी कि नहीं आएगी
1: जी।
2: तो और जितना एक और एक्स्ट्रा चीज जो होती है जो जो शुरुआत में नहीं होती
1: जी,
2: जब शुरुआत में आप जब काम शुरू करते हैं तो कोई आपका कोई पिछला गाना नहीं होता जिसमें लोग बोले कि नहीं वो ज्यादा अच्छा था। वो पहला गाना जो होता है वो कहते हैं यार वाह क्या बात है, क्योंकि कोई पुराना गाना होता ही नहीं है जिसके साथ वो कंपेयर करें। लेकिन फिर जैसे आप

0: आगे आगे बढ़ते जाएं तो ये बहस शुरू हो जाती है कि कुछ लोग बोलते हैं नहीं यार ये बड़ा अच्छा था, और फिर कुछ लोग बोलते हैं नहीं, लेकिन वो बात नहीं रही या फिर वो बोलते नहीं वो पिछला गाना ज्यादा बेटर था, यू नो
1: तो
0: व्हाटएवर।
1: खुद से मुकाबला होता है
0: हाँ, फिर इंसान खुद से ज्यादा मुकाबला कर रहा होता है।
1: जी।
0: तो और क्या है कि एक तरफ से आप ये कहने की कोशिश कर रहे होते हो कि यार वो उस वक्त का था, उसके साथ मत कंपेयर करो। लेकिन मैं समझता हूं लोगों के जज्बातों को भी, कि क्योंकि नए गाने के ऊपर भी ये एक तरह की नाइंसाफी है, क्योंकि आप एक नए गाने को एक पुराने गाने जो आपके अंदर घुसा हुआ है पता
1: जी
0: नहीं कितने सालों से, जिसने वो एक मकाम बनाया हुआ है आपके पास, मेरे को ओवरनाइट तो नहीं हुआ था।
1: जी
0: आज
1: जी
0: अगर जिस तरह से लोग तेरा चेहरा के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि जी वाह क्या गाना है, लेकिन उसको भी वक्त लगा था,
1: जी
0: उसको भी वक्त लगा था क्या कहते हैं लोगों के दिमाग में बैठने के लिए। उस वक्त जब तेरा चेहरा आया तो उन्हें कुछ लोगों ने कहा नहीं, भीगी भीगी रातों में ज्यादा बेहतर गाना था।
1: जी
0: तो मैंने कहा यार वो गाना जो है आपके अंदर आपके सिस्टम में सालों से बैठ गया है,
1: जी
0: ये नया गाना है, इसको थोड़ा वक्त तो दो। अच्छा, फिर वक्त के साथ साथ कुछ गाने जो हैं वो ज्यादा मकबूल हो जाते हैं,
1: जी
0: कुछ गाने जो हैं वो फेड आउट हो जाते हैं, यू नो। अब जैसे कि एक मजे की बात ये है कि एक मेरा गाना है नैन से नैन मिला, अच्छा जब वो रिलीज हुआ था तो किसी को समझ नहीं आई,
1: ओ
0: क्योंकि इट वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम फॉर
1: व्हाट यू
0: एग्जाम्पल।
1: डू नॉर्मली
0: हाँ, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल कभी तो नजर मिलाओ, भीगी भीगी रातों में, तेरा चेहरा, मेरी याद रखना, एंड देन सडनली लिफ्ट करा दे
1: जी बारिश
0: बारिश, एंड देन सडनली नैन से नैन आ जाता है, जहां पे वो क्लासिकल भी है बीच में एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो वो शुरू शुरू में नहीं पसंद आया, लेकिन वो वक्त के साथ साथ इट बिकम अ काइंड ऑफ अ कल्ट सॉन्ग, वो बहुत पॉपुलर हो गए खासतौर पे डांस प्रोग्राम्स में एंड रियलिटी शोज में। तो वो कुछ गाने होते हैं जो बाद में अचानक उभर जाते हैं, और
1: जी।
0: कुछ गाने जो होते हैं वो फेड आउट भी हो जाते हैं। तो यू नो
1: ऐसे कौन से गाने हैं जो आपके दिल के करीब थे लेकिन पब्लिक से उतना खास रिस्पॉन्स शुरुआत में नहीं मिला लेकिन आपके दिल के
0: हाँ,
1: करीब आज भी है?
0: दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन।
1: जी
0: आई थिंक नैन से नैन, क्योंकि नैन से नैन
1: ये
0: मेरे
1: तो
0: लिए,
1: बेशक
0: हाँ मैंने कि नैन से नैन जब मैंने बनाया था
1: जी
0: तो मैं उस गाने पे बहुत उस वक्त उम्मीदों के साथ मैं बैठा हुआ था कि ये गाना जो है ये एकदम लोगों को पसंद आएगा, और वो उस वक्त नहीं पसंद आया इतना, क्योंकि लोग जो गाने उससे पहले रिलीज हुए थे वो उसी एल्बम के, पहले तेरा चेहरा था, फिर मेरी याद रखना, फिर चैन मुझे आए ना
1: जी
0: गाना था, अच्छा उसके बाद फिर नैन से नैन आया, तो क्या था कि वो एकदम अलग किस्म का गाना था इन कंपैरिजन टू द प्रीसीडिंग सॉन्ग्स। तो वो कहीं पे लोगों को झटका लगा, तो क्योंकि दे वर कंपेयरिंग इट एट दैट पॉइंट इन टाइम विद द अदर सॉन्ग्स, तो वो वहां उन जॉनर्स में वो फिट नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे दिल के बहुत करीब था। तो फिर बाद में तो मेरे अंदर थोड़ी सी मायूसी हुई, क्योंकि मैंने कहा यार ये तो होना चाहिए, यू नो इसमें राग दरबारी है, ये तो
1: जी
0: बड़े करीब है हमारे हमारे म्यूजिक में, राग दरबारी के तकरीबन सारे गाने सुपरहिट रहते हैं, वो
1: बिल्कुल
0: राग ही
1: आप
0: ऐसा है।
1: जी
0: तो आई वॉज क्वाइट यू नो स्लाइटली डिसअपॉइंटेड, यू नो। तो लेकिन मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा पर ठीक है, यू नो आई मीन जो हुक्म जनता का उसको तो सारा आंखों पे बंदा करता है, यू नो। तो कुछ सालों के बाद मैंने देखा कि इट वॉज सडनली गेटिंग रिवाइव्ड,
1: राइट
0: एंड इट वॉज गेटिंग रिवाइव्ड फ्रॉम द रियलिटी शोज, क्योंकि
1: हाँ
0: उसके अंदर रिदम जो था ना वो बहुत यूनिक किस्म का रिदम था,
1: जी
0: तो वो जो डांसर्स थे उनको बेहद पसंद आ रहा था, क्योंकि वो इट लेंट इट सेल्फ टू अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ इंटरेस्टिंग डांस।
1: वाह
0: तो वहां से अचानक वो गाना जो था
1: वापस आ
0: वो
1: गया
0: वापस आया, और फिर इट बिकेम वेरी पॉपुलर,
1: बिल्कुल
0: सो मच सो कि फिर, और मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात, क्योंकि एक होता ना वो एक एक वो जो एक निग्लेक्टेड बच्चा होता है वो अचानक जो है उसको अपनी जगह मिल रही है, यू नो।
1: क्या बात
0: तो देन आई हैड टू देन ऑल्सो इंक्लूडेड इन टू माई कॉन्सर्ट्स,
1: यस
0: क्योंकि अक्सर इंसान कॉन्सर्ट्स जो है वो उन्हीं गानों को शामिल करता है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं, यू
1: जी
0: नो। तो उसकी अहमियत ऐसी हो गई थी फिर, जिसकी वजह से वो फिर पॉपुलर हुआ।
1: जब आप आशा जी के साथ काम कर रहे थे तो
0: जी
1: वो किस तरह की आपकी कैफियत थी और उनसे जुड़ी कोई यादगार घटना हमारे साथ शेयर कीजिएगा।
0: देखिए, जैसे मैंने अक्सर ये जिक्र किया है, आशा जी का और मेरा जो रिश्ता था वो एक बहुत ही अलग किस्म का रिश्ता था, एक तरफ से वो मेरी माँ का दर्जा था।

0: इसकी शुरुआत कैसे हुई हुई?
1: सबसे पहले मेरी मुलाकात उनसे हुई थी तकरीबन 10-11 साल की उम्र में। आई वॉज अ किड इन लंदन और वो और पंचम दा दोनों आए हुए थे। उनका कॉन्सर्ट था रॉयल आल्बर्ट हॉल में, तो जो रिकॉर्ड भी हुआ है
0: जी,
1: उसकी रिकॉर्डिंग भी है। तो मैं उस कॉन्सर्ट में था, तो जो ऑर्गेनाइजर्स थे उस कॉन्सर्ट के वो हमारे फैमिली के जानने वाले थे। तो मेरी अम्मी ने उनसे कहा कि देखो हम उनसे मिलना चाहते हैं, और उनको पता था कि बेटा जो है वो बहुत म्यूजिक में है एंड ऑल दैट। तो उन्होंने उस कॉन्सर्ट के बाद उन्होंने एक मुलाकात करवाई लंदन में, क्योंकि वो कॉन्सर्ट के बाद दे वर जस्ट स्पेंडिंग फ्यू डेज एज अ हॉलीडे। तो मैं वहाँ पे गया अपनी वालदा के साथ, तो मैं म्यूजिक 5 साल की उम्र से मैं बजा रहा था। तो लेकिन उस वक्त मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में बजाता था, तो मैं अपनी कैसेट लेके गया हुआ था, कुछ रिकॉर्डिंग्स थी मेरी पियानो पे। तो आशा जी मिली, तो आशा जी को मैंने अपनी पोर्टेबल मशीन पे मैंने उनको म्यूजिक सुनाया, उन्हें बेहद पसंद आया। तो उन्होंने कहा कि एक सेकेंड ठहरो,
0: पंचम
1: ये तो मैं पंचम को मैं बनाती हूँ, ये तुमको पंचम को भी सुनाना पड़ेगा। मैंने कहा जी ठीक है। आई यूज टू लव आरडी बर्मन, बल्कि बचपन में हम जब लिस्बन में रहते थे तो वहाँ पे हिंदी फिल्में जब आती थी तो मैं बस ये ढूंढ रहा होता था। लोग अक्सर हीरोज हीरोइंस को देख रहे होते थे, मैं ढूंढता था कि बर्मन नाम कहाँ पे है।
0: वाह वाह वाह,
1: अब बर्मन नाम है तो बस ठीक है, मैं देखूंगा फिल्म। और वो यकीनन, चाहे वो मुझे अभी तक याद है, वहां पे मैंने अभिमान देखी, मैंने मैंने यादों की बारात देखी, दीवार देखी, शोले देखी, वहीं पे सब बर्मन। लेकिन मुझे एक उलझन थी कि यार ये SD और RD क्या है।
0: हाँ, बिल्कुल
1: मुझे समझ नहीं आती, ना ही मुझे कोई बताए
0: जी
1: बर्मन है ना, बस ठीक है मैं भी देख लूंगा। बाद में पता चला कि बाप बेटे, अब समझ भी आता है कि भाई उनका जॉनर जो था, जो मिठास थी वो उसमें एक कॉमन DNA था।
0: यस,
1: यू नो, सो यू कुड टेल। सो एनी हाउ पंचम दा आए और मैंने उनको कैसेट सुनाई। अच्छा, उनका रिएक्शन जो था वो बड़े मजेदार था।
0: हाँ.
1: उनका रिएक्शन जो था वो थोड़ा शक्की मिजाज का था। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, उन्होंने कहा ये तुमने बजाया? मैंने कहा हाँ जी मैंने बजाया। अगर तुमने बजाया तो बहुत अच्छा बजाया। मैंने कहा अगर क्या मतलब है
0: जी?
1: अगर से मतलब कि अच्छा, मैं लियो लियो की शान के खिलाफ है कि अगर आप उसकी गुस्ताखी कर दे या फिर शक करे उसकी बात के।
0: जी जी,
1: मैं भी फिर जिद में, मैंने कहा हाँ जी मैंने ही बजाया। देन ही वुड टर्न अराउंड, हाँ हाँ अगर तुमने बजाया है तो वो बहुत अच्छा बजाया। मैंने कहा जी मैंने ही बजाया। अच्छा, वो भी उनके अंदर भी थोड़ा सा बचपना था। ही वेंट इन टू द रूम नेक्स्ट डोर एंड ही ब्रॉट आउट अ पोर्टेबल कैसियो।
0: जस्ट टू टेस्ट यू।
1: हाँ, मैंने कहा उस जमाने में कैसियोज जो थे ना, उनके सबसे नए, मैंने कहा नए नए निकले थे कैसियो ब्रांड से, विच वर पोर्टेबल। बाद में दुनिया में बेतहाशा पोर्टेबल आ गए थे, लेकिन कैसियो वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज दैट स्टार्टेड दीज पोर्टेबल ones. अच्छा, वही ब्रॉट आउट अ कैसियो, मैंने कहा बजा के दिखाओ।
0: ओ हो,
1: तो मैंने बजा दिया। ही लुक्ड एट मी सर, हाँ तुमने ही बजाया।
0: क्या बात,
1: बहुत अच्छा बजाया,
0: क्या बात।
1: यू नो, एंड दैट्स व्हेन ही वाज कन्विंस्ड दैट इट वाज मी हु हैड प्लेड इट, यू नो।
0: मतलब वो इतना नायाब था
1: जी, जी जी,
0: अनबिलीवेबल हो गया था।
1: हाँ,
0: द ग्रेट पंचम के लिए बिलीव करना कि ये बच्चा जो है वो इतना शानदार बजा सकता।
1: हाँ, करेक्ट।
0: तो बचपन से आप जादू ही रहे हैं।
1: तो उसके बाद फिर ये हुआ कि मुझे अभी तक याद है आशा जी के अल्फाज, कि उन्होंने कहा कि देखो बेटा अगर तुम इसी तरह से मेहनत करो तो शायद एक दिन तुम म्यूजिक डायरेक्टर बनाओ।
0: वाह।
1: तो मैंने कहा यार मतलब कि क्या बात है, यू नो, आई वाज लाइक वाओ, यू नो, दी आशा भोसले सेइंग दिस टू मी। और देखो प्रोफेसीज भी कभी कभी कैसे निकलती है कि मेरा पहला रिकॉर्ड और मेरा पहला रिलीज इंडिया में वो उनके साथ था।
0: जी,
1: यू नो, आई मीन शी कुड नॉट हैव प्रेडिक्टेड दैट, नोबडी कुड हैव प्रेडिक्टेड दैट।
0: यस,
1: दिस वाज फेट, यू नो, एंड दिस वाज डेस्टिनी, एंड इट हैपेंड। एंड वो खुद इस बात पे हैरान है कि देखो याद है मैंने तुम्हें कहा था। एंड मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल मुझे याद है। एंड आई सेड देखो ऊपर वाले ने किस तरह से हमको इकट्ठे किया कि आपने ये बात बोली और जब मेरा पहला रिलीज हुआ तो आप ही के साथ हुआ। तो मैंने कहा ये ऊपर वाला ही चीजें तय करता है।
0: कुछ बहुत इंटरेस्टिंग वाकयात हुए होंगे इस पूरे एल्बम को बनाने के दौरान, क्योंकि आशा जी वाज वेरी चौली एज वेल एज वो बहुत मेहनत करती थी।
1: मैं आपको एक चीज बताऊं कि जब हम पहले दिन जा रहे थे स्टूडियो, लंदन में, तो मुझे अभी तक आशा जी यूज्ड टू बी अ वेरी मतलब कि बहुत जॉली मिजाज की थी, बहुत हंसमुख थी और बहुत बबली थी, अपने एटीट्यूड उनका बड़ा ज़बरदस्त था और एंड शी वाज़ वेरी टॉकेटिव, बहुत बोलती थी अलग अलग चीज़ों पे, एंड शी वाज़ ऑलवेज फुल ऑफ लाइफ। तो जिस सुबह मैंने उनको पिक किया उनके होटल से, और हमारा रास्ता जो था स्टूडियो का तकरीबन 40-50 मिनट का था, अब वो अनकैरेक्टरिस्टिकली क्वाइट, हम दोनों पीछे बैठे हुए थे और वो बस क्या कहते हैं गाड़ी में बाहर बस देख रही थी और चुप थी।
0: आपके लिए तो बहुत अनकंफर्टेबल हो गया।
1: अच्छा, अब मैं यू नो मैं तो एकदम अननर्व हो गया ना
0: जी,
1: मैं बहुत ज्यादा अननर्व हो गया, मैं बहुत परेशान हो गया कि मैंने कहा यार मुझसे कोई गलती हुई है, मैंने कोई गलत बात बोल दी, पता नहीं क्या चक्कर क्या है, इतनी क्वाइट क्यों है, क्योंकि वो कभी भी इस तरह से, मैंने उनको कभी इस तरह से इतना चुप नहीं देखा। तो देयर वाज दिस वेरी अनकंफर्टेबल साइलेंस इन द कार। अच्छा, मैंने कोशिश की थोड़ी सी पोलाइट कॉन्वर्सेशन, यू नो ठीक ठाक सोई आप कुछ चीज़ की, हाँ सब ठीक ठाक, देन शी वुड स्टॉप क्वाइट, मैं कुछ और मैं बात बोलूँ तो एक एक अल्फाज के साथ जवाब दे दिया, ये नहीं कि कोई गुस्से में या कुछ, नहीं बस क्वाइट। थोड़ी देर गुजरी, मैंने कहा हिम्मत करके मैंने आशा जी से पूछा, मैंने कहा आशा जी क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? तो शी सेड मैं सोच रही हूँ। मैंने कहा किस बात की सोच रही हैं आप? सोच रही हूँ कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं। मैंने कहा क्या कर पाएंगे, मुझे अभी तक समझ नहीं आई, सोच रही हूँ कि मैं ये रिकॉर्डिंग ठीक तरह से कर पाऊंगी कि नहीं। मैंने कहा आशा जी आप ये कह रही हैं, मुझे तो फिर चुल्लू पर पानी में डूब जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप दी आशा भोसले इज स्केर्ड और फियरफुल, इफ यू आर स्केर्ड कि आपसे रिकॉर्डिंग होगी या नहीं होगी, तो मैं मतलब कि मैं फिर किधर जाऊं?
0: जी जी,
1: मैं तो बच्चा हूं आपके सामने। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं उनको थोड़ा सा, मैं कहा आशा जी फॉर गॉड सेक यू नो एंड ऑल दैट, नहीं नहीं समय तुम्हें नहीं पता, यू नो जब भी हम जब नया काम पकड़ते हैं तो ये फीलिंग होती है
0: जी।
1: तो मैंने कहा अच्छा, यू नो मैं चुप, मैं क्या बोल सकता हूँ। तो अच्छा, उनकी बेटी वर्षा
0: जी
1: वो भी उनके साथ आई हुई थी लंदन
0: जी।
1: तो जब हम पहुंचे स्टूडियो में, मैंने वर्षा को फोन किया। अच्छा, वर्षा के साथ मेरी बड़ी बहुत क्लोजनेस, बहुत दोस्ती थी, शी वाज अ वंडरफुल पर्सन, गॉड ब्लेस हर सोल। मैंने वर्षा को फोन किया, मैंने कहा वर्षा मुझे एक चीज बताओ, ये आशा जी शी इज वेरी क्वाइट, मैंने पूरा पूरा बताया। अच्छा, वर्षा यूज टू बी अ रियल चिल्ड आउट पर्सन, यू नो आई इज लाइक दैट ओनली। मैंने कहा क्या मतलब? वो डोंट वरी अबाउट इट, वो हर नए प्रोजेक्ट से पहले उनका यही हाल होता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, और ये करके उसने ठक कर दी। मैंने कहा यार ये ऐसी कैसी हो सकता है। श्योर इनफ जैसे वो माइक्रोफोन के सामने गई,
0: रूप बदल गया,
1: मतलब कि इट वॉज लाइक अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द स्पॉट।
0: वाओ,
1: शी सडनली बिकेम अ जायंट।
0: क्या बात, मेटामॉर्फोसिस
1: सामने वो मेटामॉर्फोसिस लिटरली जैसे होता है ना
0: जी।
1: माई गॉड, उसके बाद जो एटीट्यूड था ना कि यू नो थ्रो एनीथिंग एट मी आई कैन टेक इट, बल्कि मैं इसको लेके इसको चबा के उसको 10 और तरीकों से, इट वॉज लाइक दैट, इट वॉज लाइक मैं उनको एक लाइन देता था, वो कहती मैं इस तरह भी गा लेती हूँ, मैं इस तरह भी गाती हूँ, इस तरह भी गाती हूँ। मैं कह रही यार मुझे सारे पसंद है, मैं क्या करूँ। आई वॉज लाइक अ किड इन अ कैंडी स्टोर, जिसे वो होता ना लालच नहीं हो जाती कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। शी कुड इंटरप्रेट मेलोडी इन सो मेनी डिफरेंट वेज दैट शी वुड स्पॉइल यू फॉर चॉइस।
0: वाओ, क्या बात।
1: एंड शी वुड स्पॉइल द म्यूजिक कंपोजर, क्योंकि बाद में आप किसी और के साथ काम करो ना, क्योंकि बस यही है।
0: तो आपको याद आए कि चॉइस
1: थी? ऑफ कोर्स, मतलब कि यार मतलब कि इन्होंने आदत खराब कर दी। हाँ, मतलब कि कभी कभी दूसरों के साथ कई दफा काम करके मतलब कि यार मुझे एक और ऑप्शन है, बस यही है। तो यू नो आई मीन द पॉइंट ऑफ द मैटर इज दैट ऑफ कोर्स अदर सिंगर्स आर ग्रेट, दैट्स नॉट अ पॉइंट, बट शी वॉज अ फिनोमेना
0: जी,
1: शी वॉज अ फिनोमेना, एंड दैट इज वाई शी वॉज आशा भोसले। यू नो जैसे लता जी ने कहा, लता जी ने एक बड़ी खूबसूरत बात बोली, उन्होंने कहा जो गाने मैं गा सकती हूँ वो आशा गा सकती है, लेकिन जो गाने आशा गा सकती है वो मैं भी नहीं गा सकती।
0: वाह,
1: आई मीन दैट कुड,
0: कितनी खूबसूरत बात,
1: कितनी खूबसूरत और कितनी बड़ी बात
0: जी।
1: और कौन इंसान कह रहा है लता मंगेशकर, दैट्स अ ह्यूज थिंग, एंड दैट्स प्रोबब्ली वन ऑफ द अल्टीमेट कॉम्प्लीमेंट्स शी कुड हैव गॉटन फ्रॉम एनीवन
0: जी।
1: तो दैट इज व्हाई शी वाज आशा भोसले। लेकिन मजे की बात, ये तो एक किस्सा था, एक और बड़े मजे का किस्सा जो था
0: जी
1: वो इसी प्रोजेक्ट में था। अब हम लंदन में रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब हमारा कल्चर और ब्रिटिश कल्चर या यूरोपियन कल्चर जो है वेस्ट का, वो बड़ा डिफरेंट है इन द सेंस कि हमारा जो एक ट्रेडिशन है हमारे कल्चर में, जिस तरीके से हम बड़ों की इज्जत करते हैं, हम या तो जी लगा देते हैं या फिर अगर हमारे

0: माँ बाप के अगर दोस्त हों तो वो ऑटोमेटिकली अंकल बन जाते हैं या आंटी बन जाते हैं, यू नो व्हाट आई मीन। तो हम इस तरह की तहजीब जो है हमारे कल्चर में बहुत अंदर है कि हम सबको बहुत इज्जत प्यार के साथ। इसका ये मतलब नहीं कि वेस्ट जो है वो अगर नाम से पुकारते हैं उसका ये मतलब नहीं कि वो उनकी इज्जत नहीं करते, बस वहां का ट्रेडिशन अलग है,
1: जी
0: यू नो। तो अच्छा, अब क्या था कि मैं तो जानता हूं कि हमारा ट्रेडिशन क्या है। अब आशा जी हैं और या फिर आशा आंटी हैं या आशा ताई हैं या जो भी जो हमारे अब जैसे मेरी बेटी मदीना 9 साल की है, वो आशा जी को आशा दादी बुलाती है,
1: वाह,
0: यू नो।
1: क्या प्यारी
0: तो
1: बात।
0: हाँ, तो द पॉइंट इज कि ये हमारे अंदर एक एक चीज होती है। अब अगर मेरे कोई कॉलीग है तो वो उनको अंकल बुलाएगी या काका बुलाएगी या व्हाटएवर। तो ये चीजें हमने सिखाई, हमारे ट्रेडिशन में है, व्हिच आई थिंक इज अ ब्यूटीफुल थिंग।
1: जी
0: अच्छा, अब क्या हुआ कि पहली दफा आशा जी मेरे साथ रिकॉर्ड कर रही है लंदन में। तो अब मैंने सोचा, मैंने कहा यार आशा जी कम्स फ्रॉम एन ओल्ड स्कूल ऑल्सो। मुझे बाद में पता चला था शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव पीपल आउट
1: यस
0: देयर, यू नो व्हाट आई
1: यस
0: मीन। लेकिन मुझे इतना नहीं पता था उस वक्त। तो मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा यार ये सारे बंदे जो हैं जो इंजीनियर्स और ये जो सारे जो काम करते हैं तो सब गोरे हैं, तो ये तो बिल्कुल फट से क्या कहते हैं फर्स्ट नेम बेसिस पे आ जाते हैं बेतकल्फी के साथ। अब उसका ये मतलब नहीं कि वो डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनका
1: जी
0: तरीका ही ऐसा है, उनका ट्रेडिशन ऐसा है। लेकिन मैंने कहा अगर आशा जी माइंड कर जाए तो फिर तो मेरी तो ऐसी की तैसी हो जाएगी, मैंने तो रिकॉर्डिंग करनी है उनके साथ अगले हफ्ते, एक मतलब पूरे हफ्ता भर रिकॉर्डिंग करनी। तो अगर उनका मूड पहले दिन ही खराब हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा। तो उन्होंने पूछा, है अच्छा मुझे सैमी बुलाते थे क्योंकि अदनान उस वक्त जरा मुश्किल था। ऑलराइट सैमी, व्हाट्स योर नेम। आई सेड लिसन शी इज अ लेजेंड। या आई नो यू टोल्ड दिस बिफोर, शी इज अ लेजेंड, या बट व्हाट्स योर नेम। मैंने कहा कि यार अगर मैं उनको बोलूंगा आशा बोसे, हे आशा, यू नो। मैंने कहा यार
1: दिक्कत हो
0: ये जो दिक्कत हो जाएगी अगर
1: जाएगी
0: वो माइंड करेंगे तो फिर मेरा क्या होगा। तो
1: जी
0: मैंने कहा हर नेम इज आशा जी।
1: वाओ,
0: तो ही सेड बट व्हाट्स द फर्स्ट फुल नेम। आई सेड हर नेम इज आशा जी भोसले।
1: व्हाट अ ट्रिक।
0: हाँ, तो उन्होंने कहा आशा जी भोसले। आई सेड या ओके ओके फाइन। और तो वही हुआ, नाम फर्स्ट नेम पे ही बुलाना था ना उन्होंने। तो
1: जी
0: जैसे आशा जी एंटर हुई क्या कहते हैं स्टूडियो के अंदर, हाय आशा जी, इट्स ऑनर टू मीट यू। अच्छा, आशा जी जो थी बड़ी इंप्रेस्ड हुई
1: जी हो रहे
0: मेरी तरफ। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये हमारी परंपरा को कितना अच्छा जानते हैं। मैंने कहा बस देख लो आशा जी। आशा जी कैन यू जस्ट से दैट वन मोर टाइम अ लिटिल लाउडर प्लीज। कितने तहजीब वाले हैं ना। वो इतनी खुश हुई कि
1: वाह
0: उन्होंने सब, आई विल मेक इंडियन टी फॉर यू। तो शी वेंट इन टू द किचन, शी मेड कड़क चाय,
1: वाह वाह,
0: टिपिकल कड़क चाय सबके लिए। और वहां से शुरुआत हुई हमारी रिकॉर्डिंग की।
1: क्या बात
0: एंड
1: है।
0: एंड बाद में बड़े सालों बाद मैंने फिर आशा जी को वो किस्सा सुनाया। मैंने कहा पता कि वो कैसे हुआ, बड़े शैतान हो तुम, तुमने मुझे बताया नहीं इस तरह। मैंने कहा शी सेड एंड शी हरसेल्फ सेड टू मी,
1: जी
0: सामी इस तरह से मैं जानती हूँ उनका कल्चर, मैंने बहुत काम किया उनके साथ, मैं जानती हूँ कि वो इस तरह से। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता था ना,
1: जी
0: तो मैं तो अब चाह रहा था कि आप किसी भी तरीके से ऑफेंड हो जाएं किसी भी तरीके से, कि होता है कि भाई कभी कभी कुछ लोग जो है वो बुरा मान जाते हैं। तो चीज़ें नहीं, नहीं मैं इस तरह की चीज़ों पर बुरा नहीं मानती। मैंने तो जिंदगी में ऐसे ऐसे लोग देखे जो ऐसी ऐसी इज्जत करते हैं लेकिन पीछे से छुरा मार देते। तो नाम से कुछ नहीं होता,
1: जी
0: नियत
1: क्या
0: से
1: बात
0: होता
1: है,
0: है, जो बहुत
1: वाह
0: बड़ी बात है, जो सच बात भी है। तो बहुत तरह की बहुत सारी चीजें थी अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक, देयर वर मेनी मेनी थिंग्स दैट आई लर्न फ्रॉम हर। जैसे मैंने कहा ना कि वो एक माँ का दर्जा रखती थी मेरे दिल में, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, ना सिर्फ संगीत के बारे में, ना सिर्फ माइक्रोफोन के सामने आने की जो जो जो टेक्निक्स होती हैं, लेकिन जिंदगी के बारे में बहुत कुछ उन्होंने मुझे सिखाया।
1: क्या
0: बहुत
1: बात है।
0: छोटी छोटी ऐसी ऐसी बातें उन्होंने मुझे सिखाई जो अक्सर बहुत सारे लोग इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन उनकी बातें, उनकी जो कहावतें थीं वो बहुत अनमोल थीं और आज भी मेरे दिल में बसती हैं। और बहुत कुछ सीखा और बहुत प्यार वाली थी।
1: जी
0: शी वॉज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन।
1: यस
0: जो थी वो दिल के सामने और शक्ल पे दिखता था उनका। मुझसे लड़ती भी थी।
1: अच्छा,
0: ओ एंड हाउ, मतलब कि वो मेरे साथ लड़ती भी थी। अगर मैं लेट से 2-4 महीने अगर मैंने फोन ना किया किसी वजह से या विजिट नहीं किया तो मतलब कि बरस जाती थी।
1: ओ
0: अच्छा वक्त आया, अच्छा आगे, अच्छा अब आज कैसे याद आई, फोन गलती से तो नहीं लगा दिया, बस सार्केसम टू द कोर, एंड देन शी वुड गिव इट टू मी एंड आई वुड जस्ट सिट देयर से अच्छा अच्छा जी आप बोलिए जो आपने बोलना है. अच्छा फिर मैं जब उन्होंने कहीं पे पॉज किया तो मैंने कहा हो गया. हाँ हो गया, मैं ठीक हूँ, अब बोलो तुम्हें क्या कहना है.
1: जिनसे वो प्यार करती थी उनके लिए खाना भी बनाती थी.
0: ऑफ कोर्स, एंड यू नो शी वुड, वो ताना भी मुझे देती थी इस बात का, तुम भूल गया ना रात के 12 बजे कभी कभी आते थे, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए पराठे और ऑमलेट बना के तुम्हें देती थी. एंड दैट इज अ फैक्ट. She did.
1: क्या बात है.
0: You know, so you know, she would love to, like I said, she was motherly, you know, and उनके साथ कोई तकल्लफ नहीं था
1: जी.
0: उनके साथ वही अपनापन था और वो भी कई दफा, क्योंकि she used to also be awake till late, तो कभी कभी मैं अगर उस साइड पे होता था तो मैं अचानक आ जाता था तो उन्हें सबसे पहले पूछ खाना खाया तुमने कि नहीं, मैंने कहा नहीं खाया, अच्छा बैठो. जो भी उस वक्त किचन में था अगर और कुछ नहीं तो वो ऑमलेट और पराठा बना देती थी. यू नो लाइक आई सेड शी वाज वेरी मदरली, तो वो दिल से सब कुछ करती थी, जो भी था दिल में था
1: जी. you know? कितने प्यार से आपने उन्हें याद किया है, कितनी शिद्दत से याद किया है, ये महसूस हो रहा है.

0: प्यार और वो शिद्दत नजर आती है। खासतौर पर मैं उस फिल्म का जिक्र करना चाहता हूँ जिसका जिक्र लोग कम करते हैं, लकी नो टाइम फॉल आउट।
1: जी,
0: जितने
1: जी।
0: मीठे और प्यारे गाने आपने बनाए हैं।
1: थैंक यू।
0: आपने और क्यों नहीं किया ऐसा काम?
1: इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा सुस्त हूँ,
0: लगता नहीं आपको देख के।
1: मेरा मतलब है कहने का कि अगर आप मेरा डिस्कोग्राफी अगर आप देखोगे तो आपको
0: देर देर से आते हैं।
1: हाँ, और दूसरी चीज ये कि मेरे में आपको ज्यादा, इफ यू कंपेयर इट टू अ लॉट ऑफ अदर म्यूजिक कंपोजर्स इन हिंदुस्तान, मेरा बॉडी ऑफ वर्क जो है वो उतना ज्यादा नहीं है जितना उनका है। लेकिन एक चीज जो आपको नजर आएगी, यू विल फाइंड अ वास्ट बॉडी ऑफ वर्क ऑफ अलग अलग किस्म के जॉनर्स। मैंने शुरुआत की इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक की एज अ पियानिस्ट, एज एन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक पियानिस्ट।
0: वहां भी जाकिर भाई जैसे लोगों के साथ बजाया।
1: जी, तो मेरा सबसे पहला प्यार जो था वो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक था और है। अच्छा, हकीकत ये है मेरे होते ना कि बचपन की जो एम्बिशंस होती हैं, ख्वाहिशें होती हैं, उसमें सिंगर बनने का कोई इरादा नहीं था।
0: ओके,
1: आई वॉन्टेड टू जस्ट बी अ पियानिस्ट एंड अ कंपोजर।
0: जी,
1: गायकी जो थी वो मेरे अंदर कभी वो ख्वाहिश नहीं थी। गाना, मैं इसलिए मैंने गाना शुरू किया क्योंकि हर म्यूजिशियन जो है गुनगुनाता तो है ही। तो क्या होता था, मैं जब कोई ट्यून कंपोज करता था तो उसका डेमो बनाता था।
0: जी,
1: अच्छा, डेमो में मैं खुद ही गा देता था,
0: जाहिर है।
1: फिर बैठ के मैं फैंटेसाइज करता था, क्या किशोर दा अगर गाएंगे तो क्या बात होगी, या रफी साहब अगर गाए तो क्या बात होगी। अच्छा, रफी साहब या किशोर दा, मैं कहाँ बैठा हूँ, लंदन बैठा हूँ या मैं जिधर भी बैठा हूँ, मैड्रिड बैठा हूँ, अब वहाँ पे मेरा क्या एक्सेस है उनके साथ। और फिर उसके थोड़ी देर, कुछ अरसे बाद तो उन सब का भी इंतकाल हो गया। तो मैं एक्चुअली गायकी में इसलिए पढ़ा क्यों, मैं अपने गाने इसलिए मैंने गाने शुरू की क्योंकि और कोई गाता नहीं था। तो मजबूरी के तहत मैंने खुद गाना शुरू कर दिया। और जब भी मैं रिकॉर्ड करता था तो मैं कहता था कि यार ये गाना जो है ना, ये अगर फलाना सिंगर गा, तो थोड़े अरसे बाद लोगों ने मुझे ये कहना शुरू कर दिया कि यार लेकिन तुम्हारी आवाज़ में भी बड़ा अच्छा लग रहा है, तुम तो अपनी आवाज़ में रखो।
0: जी,
1: तो जब मुझे ऐसे लोगों ने मुझे कहना शुरू किया, सवाई मैंने कि मेरी वालदा के अलावा, क्योंकि माँ के लिए तो सबकी आवाजें अच्छी होती है ना, अपने बच्चों की हर चीज अच्छी होती है। तो लेकिन जब क्या कहते हैं दूसरों ने कहना शुरू किया तो थोड़ा सा हौसला बढ़ा मेरा। तो उसमें फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता मैं गायकी में आया। तो मेरा जो बॉडी ऑफ वर्क है उसमें इंस्ट्रूमेंटल इंडियन क्लासिकल भी है, फ्यूजन भी है, वर्ल्ड म्यूजिक, देन इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी है, और फिर फिल्म म्यूजिक भी है। तो सिर्फ एक तरह का म्यूजिक नहीं है, एक जॉनर में म्यूजिक नहीं है मेरे। यू विल फाइंड ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स एंड मीडियम्स, इंस्ट्रूमेंटल हो
0: ऑफ कोर्स
1: यू नो एंड ऑल दैट। तो वो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, लेकिन क्वांटिटी ऑफ ईच ऑफ देम माइट नॉट बी एज मच।
0: यस,
1: तो मेरा ये था कि लकी का म्यूजिक मैंने किया, मैंने कुछ और फिल्मों का भी किया, लेकिन फिर मैंने एक और भी चीज महसूस की। मैंने ये अक्सर देखा कि कभी कभी, और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, कि बड़ी मेहनत करते हो एक म्यूजिक पे, एक साउंड ट्रैक पे, और फिल्म फ्लॉप हो जाती है।
0: जी,
1: तो क्या होता है कि एवरीथिंग गोज डाउन विद द शिप। अब क्या है कि वो गाना, जो गाने हैं वो आपने बेशक बेहद अच्छे कर दिया हूं, मगर उनको मौका ही नहीं मिला उभरने का, क्योंकि फिल्म जो थी वो पहले दिन ही डूब गई थी। तो अब आप भी उसके साथ ही डूब गए, आपका म्यूजिक भी डूब गया, और फिर किसी ने उसको सुना ही नहीं। तो ये मेरे लिए बड़ी मायूसी की बात थी, क्योंकि मैं बहुत लगन के साथ, बहुत मेहनत के साथ, आई गेट वेरी इमोशनली अटैच टू एवरीथिंग दैट आई डू। आई डोंट माइंड कि मैंने अगर कोई इंडिपेंडेंट गाना बनाया और उसको ठीक तरह से लोगों को मौका मिला उसको सुनने के लिए, और अगर लोगों को नहीं पसंद आया, नो प्रॉब्लम, कम से कम सुना तो सही।
0: जी,
1: उसने कम से कम थोड़ी सी रोशनी तो देखी कि भाई आपको मौका तो मिला उसको ना पसंद करने का, लेकिन अगर आपने सुना ही नहीं
0: तो अफसोस होता है,
1: तो फिर अफसोस होता है ना, जंगल में मोर नचा किसने देखा।
0: जी, लेकिन अगर लकी की म्यूजिक की बात की जाए, आपका फेवरेट क्या है?
1: अच्छा, लकी की बड़ी इंटरेस्टिंग मैं बात बताता हूँ।
0: जी जी,
1: वो फिल्म भी फ्लॉप हुई थी,
0: लेकिन वापस रिवाइव हुई।
1: नहीं, लेकिन उसकी वजह पता क्या?
0: जी,
1: इसमें आई हैव टू गिव क्रेडिट कि जो प्रोड्यूसर थे, विच वॉज भूषण कुमार, ही कुड सी दैट इस मूवी में गड़बड़ है।
0: जी,
1: अच्छा, उस जमाने में सीडीज और कैसेट्स का जमाना था, और गाने बड़े अच्छे शूट हुए थे
0: बहुत।
1: हाँ, तो अब क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया कि फिल्म की रिलीज को डिले कर दिया, और उन्होंने गानों को भरपूर

0: बट द साउंड ट्रैक डिड रियली रियली वेल.
1: लोग आज भी याद करते.
0: हाँ, लोग आज भी याद करते. हालांकि कभी कभी ऐसा भी होता है. अब जैसे कि पंचम दा का शोले,
1: जी,
0: ही गॉट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अवार्ड्स एंड सेल्स बिकॉज ऑफ शोले. But frankly speaking, even he used to acknowledge that Chole is not my best piece of work.
1: Of course, that's the truth.
0: Yeah, and that's the truth. And he used to also say it.
1: Ji.
0: But because the film was such a colossal hit, that it automatically helped
1: everything.
0: Everything.
1: Yeah.
0: अच्छा, अगर आपको याद हो लगान पिक्चर, अगर आपको याद हो जब वो शुरू में उसका साउंड ट्रैक जब रिलीज हुआ तो किसी को समझ नहीं आ रही थी उसका.
1: जी.
0: And it was, you know, it was people were confused. कि यार किस तरह के गाने हैं, किस तरह के, they were not working. The movie released and it became a colossal hit of its time. And overnight, the music suddenly became a sensation. Because of the visual and the story line attached to the songs, they were very situational songs. So now people understood those songs. They understood the context.
1: Right.
0: And suddenly people then started to listen to the songs. अच्छा, I loved the songs even before the movie was released.
1: जी.
0: क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूँ कि गाना जो है उसको अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए.
1: वो एक सेपरेट एंटिटी.
0: वो एक सेपरेट, मैं हमेशा उसको ऐसे देखता हूँ. मैं कहा यार, क्योंकि देखो फिल्म जो है वो फेड आउट हो जाती है.
1: जी.
0: गाने जो है वो रहते हैं क्योंकि दे आर वेरी इजी. यू कैन लिसन टू अ सॉन्ग एनीवेयर ना.
1: राइट.
0: यू कैन लिसन टू अ सॉन्ग इन योर हेडफोन्स, इन ऑन योर फोन, इन योर कार, एवरीवेयर. यू कांट वॉच अ फिल्म एवरीवेयर. ऑफकोर्स टूडे you have the mobile phones and all
1: still,
0: that lekin phir bhi
1: ji.
0: You don't have the time to watch a film all the time,
1: ji.
0: But music stays with you. Music always stays with you and it's very convenient. So I always feel that a song should be, yes, it should be situational, it should help the film's narrative, lekin it should stand on its own two feet.
1: Right. Very.
0: Ab jaise kuch gaane aise hain jo bade khoobsurat bane hue hote hain lekin uski picturization itni zyada achhi nahi hoti. Kabhi bhi banda kehta hai yaar, काश मैंने पिक्चराइजेशन नहीं देखी होती तो बेटर होता.
1: पल पल दिल के पास,
0: पल पल दिल के पास. मुसाफिर हूँ यारो.
1: जी.
0: मैं जिंदगी भर मैं उसको बचपन से सुनो, मैंने सडनली देखा यार ये तो टांगे पे ऊपर गाना शूट हुआ है.
1: जी.
0: एंड इट वाज ओके, यू नो व्हाट आई मीन. बट यू नो सॉन्ग्स अल्टीमेटली आउटलिव द मूवी. सो देन यू नीड द सॉन्ग नीड्स टू स्टैंड ऑन इट्स ओन टू फीट. There are very few examples of songs which were part of the narrative, but they're still out, even though you would not under, like, for example, a song like Julie. Ab Julie ka naam kyun hai? Kyunki film ka naam Julie tha.
1: और
0: उसका मेन कैरेक्टर जूली था. लेकिन आज भी आप अगर सुनो, कितने लोगों ने जूली फिल्म देखी है आज के दौर में, लेकिन गाना कितने लोगों ने सुना है?
1: जी.
0: भूल गया सब कुछ क्योंकि वो गाना इतना खूबसूरत है.
1: एंड कैन वी बिलीव दैट हम 50 साल पहले की म्यूजिक की बात कर रहे हैं.
0: एग्जैक्टली. एंड इट इज स्टिल सो ब्यूटीफुल एंड रिलेवेंट.
1: रिलीज इन 1975.
0: वाओ, देयर यू गो. तो देखिए बात ये है ना कि यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ. मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि म्यूजिक जो है वो अब इट शुड स्टैंड ऑन इट्स ओन टू फीट. एंड देन व्हाट हैपेंस इज दैट यू सी, क्या था कि वो जो गाने थे, जो अगर फिल्म ने अच्छा काम नहीं किया फॉर वट एवर रीजन, लेकिन द रेकॉर्ड लेबल उस जमाने में HMV थी, तो वट दे यूज टू डू वाज वो उन गानों को पुश करते थे.
1: जी.
0: कॉम्पाइलेशंस में और इस तरह से. तो वो गाने जो थे जिन बेस्ट ऑफ किशोर और या फिर फलाना, किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में वो उसको पुश करते थे. और जब वो पुश करते थे तो वो गाने जो थे वो बहुत मकबूल हो जाते थे ऑन देयर ओन. अच्छा, यहाँ आज के और कुछ अरसे से दौर ये है कि भाई अगर फिल्म नीचे गिर गई तो उसकी सारी चीजों को भूल जाओ.
1: जी, ये आज के जमाने.
0: हाँ, आज के जमाने. तो व्हाट हैपेंड वाज कि ये मेरे साथ दो चार दफा हुआ जहाँ पे पिक्चरें जो थी वो नहीं चली और वो म्यूजिक जो था वो डूब गया फिल्म के साथ. तो वो मेरे लिए बड़ा वो डिसहार्टनिंग था. तो देन आई सॉर्ट ऑफ सेड यू नो व्हाट, आई विल बी वेरी वेरी चूजी ऑफ हुम आई वांट टू वर्क विद व्हेन इट कम्स टू कॉम्पोजिशन.
1: राइट.
0: फिल्म में गायकी तो मैं करता हूँ सबके साथ, लेकिन मैंने कहा जहां तक कॉम्पोजिशन करता, क्योंकि मेरे लिए कॉम्पोजिशन इज लाइक गिविंग बर्थ टू समथिंग.
1: उसमें आपका अपना एक सिग्नेचर होता है जो सुन के ही अगर कीन लिसनर है वो अंदाजा लगा सकता है कि भाई ये आपका म्यूजिक है.
0: हाँ, तो इसके अंदर मैं अपनापन बहुत अंदर से निकालता हूँ.
1: जी.
0: तो वो आई गेट टू इमोशनली अटैच टू इट. जैसे मैंने कहा ना, अगर आपने उस गाने को प्रॉपर प्लेटफॉर्म दिया और उसको एक मौका दिया उभरने के लिए, और वो अगर उसके बावजूद नहीं उभरा तो मैं डिसअपॉइंट नहीं होऊंगा.
1: जी.
0: मैं कहूंगा यार ठीक है, लोगों को नहीं पसंद आया, चलो ठीक है, विल ट्राई बेटर. लेकिन कम से कम लोगों ने सुना तो सही. लेकिन यहाँ पर कई दफा होता था कि लोगों ने सुना ही नहीं, उनके तक पहुंचे ही नहीं, और वो पहले से डूब गया. अच्छा, कई दफा जब मैं कभी कभी कोई पुराना उस तरह का

0: उन फिल्मों में से अगर कोई गाना मैं किसी को सुना, अरे यार ये तो बड़ा अच्छा है, कब रिलीज हो रहा है, मैं कह यार ये क्या मैं
1: ये
0: बताऊं
1: और
0: तुम्हें,
1: तकलीफ बढ़ाने
0: ये और
1: वाली
0: तकलीफ
1: बात है
0: रहती है यू नो।
1: जी।
0: अच्छा लेकिन फिर ये क्या हुआ, मैं चुप हो जाता हूँ।
1: तो उनमें से कौन सा गाना आपके दिल के सबसे करीब है?
0: देर वॉज अ सॉन्ग फ्रॉम अ फिल्म, दिस रादर द साउंड ट्रैक
1: ओके
0: ऑफ अ फिल्म कॉल्ड सदियां।
1: जी
0: द फिल्म आई रियली इंजॉयड मेकिंग द साउंड ट्रैक ऑफ द फिल्म सदियां, और उसमें बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के गाने हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब है आज भी।
1: जी
0: एंड मुझे बड़ा उससे बड़े दुख हुआ
1: क्योंकि फिल्म नहीं चली।
0: कि वो फिल्म नहीं चली, और लिहाजा वो गाने जो थे वो रह गए, लेकिन वो गाने जो हैं वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। अगर आप
1: जी
0: उनको सुनोगे तो आप यू विल अंडरस्टैंड मे बी व्हाई मे बी आई एम इमोशनली वेरी अटैच टू दो
1: एंड
0: सॉन्ग्स।
1: लकी के कौन से गाने की बात
0: सुन
1: की जाए?
0: जरा, मैंने कि सुन जरा आई लव्ड, नहीं एक्चुअली ऑनेस्टली आई लव्ड सो मेनी ऑफ द सॉन्ग। आई लव्ड शायद ये तो प्यार है, क्योंकि
1: हाँ
0: मेरी पहली मरतबा लता जी के साथ गाने का ऑनर हुआ,
1: जी
0: तो जो एक एक अगेन वो एक ख्वाब था मेरा।
1: कितनी धड़कनें बड़ी हुई थी।
0: लता जी के साथ अगेन एक जो एक्सपीरियंस था वो अनमोल था। मतलब कि मैं लता जी को पहले से जानता था, क्योंकि मेरा आशा जी के साथ आना जाना हमेशा रहता था, तो कई मरतबा दीदी के साथ भी मुलाकात होती रहती थी, और वो बहुत ही दिलचस्प खातून थी, वो बड़े मज़ेदार, शी वॉज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशनलिस्ट, बड़ा मज़ा आता था उनके साथ गुफ्तगू करने का और गपशप मारने का, लेकिन कभी काम नहीं किया। और जब पहली दफ़ा जब उनके साथ इसी गाने के लिए जब मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो मैं तो बहुत नर्वस था, यू नो आई वॉज वेरी नर्वस। और अच्छा पता है ये जो महान लोग होते हैं ना, इस हुआ बियॉन्ड अ सर्टन लेवल, दे नो देयर ग्रेटनेस, दे
1: यस
0: नो इट, दे वेरी मैटर ऑफ फैक्ट अबाउट इट। मतलब उनके अंदर उस तरह का कोई मगरूरपन नहीं होता, लेकिन उनको पता है कि भाई मैं लता मंगेशकर हूँ या मैं अमिताभ बच्चन हूँ, और मुझे पता है कि मेरा असर जो है, ऑरा जो है, वो अगले बंदे जो मुझसे कई दर्जे जूनियर है उसके ऊपर इस वक्त क्या बीत रही होगी। उनको पता है, और उनका सबसे बड़ा जो बड़ापन है
1: जी
0: वो ये होता है कि वो आपको सबसे ज्यादा, सबसे पहले आपको
1: ईज करा
0: ईज कराते हैं, यू नो, टू मेक यू फील
1: रिलैक्स्ड
0: रिलैक्स, बिकॉज दे नो दैट आपके अंदर क्या, मतलब कि
1: हवाइयां उड़ी हुई हैं।
0: हवाइयां उड़ी हुई हैं, उनको पता है। तो उनका सबसे पहले तो ये होता है कि आपको थोड़ा काम डाउन करें। तो अच्छा अब क्या हुआ कि मैं पहली दफा रिकॉर्ड कर रहा था लता जी के साथ, तो मैंने फोटोग्राफर बुलाया। अच्छा उस जमाने में कहाँ BTS हुआ करता था,
1: जी
0: कहाँ जिस इस तरह की जो चीजें जो आजकल में होती हैं, और पैप्स तो होते ही नहीं थे, तो
1: जी
0: देर वॉज नो सच थिंग। तो मैं अपना ही किसी फोटोग्राफर को बुलाया, तो अब मैं बैठा हूँ स्टूडियो में, मैं उनको गाना सिखा रहा था, ठीक है, मैं गाना बता रहा था उनको, मैं कीबोर्ड पे था और वो मेरे साथ बैठी हुई थी। उन्होंने देखा कि एक कैमरामैन है, तो उन्हें ये कैमरामैन, अच्छा मैं एकदम घबरा गया, मैंने कहा हाँ जी लता जी कैमरामैन आप माइंड तो नहीं कर रही अगर कोई अगर कुछ दो चार फोटोज ले ले। हाँ नहीं नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं, नहीं एक सेकंड एक सेकंड, मुझे खड़ा होने दो। मैंने कहा खड़ा किस लिए? मैं यहाँ पे खड़ी होंगी और ये, और शी हैड द पेपर विद द लिरिक्स, जब यहाँ पे खड़ी होंगी ना आपके सामने तो फोटोग्राफ में लगेगा कि मैं आपसे सीख रही हूँ।
1: अरे गजब।
0: मेरा तो जबड़ा गिर गया उस वक्त।
1: ओ
0: शी वॉन्टेड मी टू हैव दैट मेमोरी,
1: वाओ
0: कि वो अगला बंदा जब देखेगा उस फोटो को उसको नजर आएगा कि मैं आपसे गाना सीख रही हूँ। मैंने कहा यार कौन करता है ये,
1: कौन करता है?
0: कौन करता है आप, मतलब कि यू आर गिविंग मी दैट ऑनर दैट यू स्टैंडिंग एंड
1: वाओ
0: लर्निंग एंड गिविंग मी दैट ऑनर एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, दैट यू गिविंग मी दैट रिस्पेक्ट, एंड आई एम जस्ट आई एम अ किड इन फ्रंट ऑफ यू। मैंने उस दिन उनसे इतना बड़ा ये एक सबक सीखा कि वहां पर वो करने से वो छोटी नहीं हुई, वो मेरे आंखों में इतनी बड़ी हुई कि मैंने उससे सबक सीखा कि ये होता है जेन्युइन ह्यूमिलिटी।

0: देखिए लता जी, आशा जी की बात हुई, बच्चन साहब के साथ भी तो ऐसी कुछ हुआ है।
1: ऑफ कोर्स बच्चन साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ
0: जी।
1: मैं देखिए उनसे अच्छा मेरा जो यू नो आई मीन ही फॉर मी वाज ऑलवेज यू नो अ स्टार एंड आइकॉन एंड एंड यू नो अ लेजेंड यू नो एंड ही विल ऑलवेज बी। तो उनके साथ जब जब मैं इंटरैक्ट मैंने करना शुरू किया और सबसे जो खूबसूरत बात थी वो ये थी कि इन इन सब लेजेंड्स के एक चीज जो कॉमन थी जो मेरे लिए बहुत अहमियत रखती थी वो ये था कि आई वाज एबल टू गेट ए फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस टू सी हाउ दे क्रिएटेड देयर मैजिक कि व्हाट वाज द प्रोसेस कि वो किस मरहले से गुजरते हैं और अपने दिमाग को किस तरह से तैयार करते हैं उस तरह के लेवल की परफॉर्मेंस निकालने के लिए कि व्हाट प्रोसेस दे वेंट थ्रू। और हर एक बंदे का अपना अपना तरीका होता है अपने आप। तो वो मैंने बच्चन साहब के साथ भी देखा, मैंने आशा जी के साथ भी देखा, लता जी के साथ भी देखा।
0: उनके साथ शूट कितना डिफिकल्ट था आपके लिए?
1: ओ इट वाज अमेजिंग। अमित जी के साथ तो शूट ऐसा था कि मतलब कि हर एक टेक जो थी वो अनमोल थी।
0: अच्छा।
1: और हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी सबसे ज्यादा मुश्किल बात ये हुई जब हम एडिट पे बैठे क्योंकि उन्होंने हर एक शॉट के हमने तीन चार वर्जन किए थे। अच्छा वो इम्प्रोवाइज करते मैं भी इम्प्रोवाइज करता हूँ क्योंकि मेरा तो क्लासिकल म्यूजिक से ही मतलब कि बैकग्राउंड है और हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में तो सब कुछ इम्प्रोवाइज होता है तो वो इम्प्रोवाइजेशन का कीड़ा जो है वो मेरे भी बचपन से है तो वो तो ऑफ कोर्स ही इज अ मास्टर एट दैट। तो वो जब जो अलग अलग टेक्स थी हम कहते यार ये भी अच्छा है ये भी अच्छा है। हम कई दफा ऐसी उलझन में पड़ जाते थे तो वी यूज्ड टू लिटरली फ्लिप अ कॉइन कि कौन सा शॉट रखें क्योंकि वी डिडंट नो विच वन टू कीप यू नो बिकॉज दे वर ऑल सो गुड एंड डिफरेंट इन देयर ओन वे ही वुड गिव अस एवरी शॉट ही वुड गिव इन अ डिफरेंट वे। तो वो उनके साथ काम करके जो एक्सपीरियंस मिला वॉज समथिंग दैट वॉज एब्सोल्यूटली प्राइसलेस and I learned so much from all of these people.
0: Kya
1: and it was such an incredible pleasure.

0: चलते चलते विविध भारती के सुनने वालों के लिए आप क्या गुनगुनाएंगे जो दुनिया भर में आपको सुन रहे हैं और म्यूजिक के ट्रूली दीवाने लोग हैं?
1: इश्क तो

0: वाह वाह वाह वाह, सबसे अच्छी मुलाकातें वो होती हैं जिनमें आगे की गुंजाइश बाकी रहे।
1: बेशक।
0: तो हमारे साथ ये वादा कीजिए कि अपनी पसंद के 10 गानों पर इसी तरह फ्री व्हीलिंग बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में लाइव आएंगे।
1: जरूर आऊंगा, विद प्लेजर, विद प्लेजर।
0: शोर मचा के आपको बुलाएंगे।
1: तफसील में,
0: तफसील में, तफसील में, बिल्कुल। तब दूसरों की भी बातें होंगी, आपके उस्तादों की,
1: जरूर जरूर,
0: और इंस्पिरेशन की, आपके फेवरेट गानों की।
1: ऑफकोर्स।
0: तो उस मुलाकात का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: माय प्लेजर, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: दोस्तों, आज के रंग तरंग कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने गायक, संगीतकार और पियानो वादक पद्मश्री अदनान सामी से यूनुस खान की ये बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग योगिता जाधव, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। तो अब
3: आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम आप सुन रहे थे। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अभी आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि विपक्ष आज ही चर्चा के लिए सदन में उपस्थित हो। उन्होंने कहा कि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलाने देने की अपील की। अध्यक्ष ने कहा कि सरकार विपक्ष की मांग पर सहमत हो गई है और गृहमंत्री अमित शाह बयान देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष से सहमति बनाने तथा संवाद के जरिए आगे बढ़ने की अपील की। लगातार हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर हंगामा किया, जिस वजह से सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय, मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का मार्गदर्शन उनके लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने युवा पीढ़ी से रामनाथ कोविंद के जीवन की कहानी उन्हीं के शब्दों में जानने और उनके लेखन और अनुभवों को पढ़ने का आग्रह किया।
5: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
4: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक जरिया भी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 संस्थागत, पारदर्शी और जवाबदेह न्यायाधिकरण प्रशासन की दिशा में परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग को एक मजबूत न्यायाधिकरण प्रणाली के केंद्र में रखता है। एक अंग्रेजी दैनिक के लिखे लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायाधिकरणों के मूल अधिकार क्षेत्र में कोई परिवर्तन किए बिना उनकी शासन संरचना को मजबूत करने का प्रयास करता है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि सेवानिवृत्त आरआरपीएस डॉक्टर भूमा वीजी को मॉरिशस के अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन AIPSI के कुलपति पद के लिए चुना गया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि AIPSI मॉरिशस का पूर्व सिविल सर्विस कॉलेज है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के

0: प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने मार्च 2025 में संयुक्त रूप से किया था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान, गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलेवार्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। ब्यूरो हमारे संवाददाता से।
1: छात्र संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, सीबीआई जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग दोहरा रहे हैं। छात्रों ने कल शाम मौन जुलूस निकाला और कहा कि इसका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची और आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने दोहराया कि उनकी प्रमुख मांगे पूरी होने तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंकफील्ड कप के दूसरे दौर में जावोखोरिन सिंदारोफ को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंदा 2 मैचों में 1.5 अंक पर पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, आइए पुनः सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

रंग दे बसंती फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। अभी प्रसून जोशी के बोल थे, एआर रहमान का संगीत था, नरेश अय्यर, मोहम्मद असलम और साथियों की आवाजें थीं। यादों की महफिल कार्यक्रम के बाकी गाने छोटे से अंतराल के बाद।

0: दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहा हुजूर।
0: दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। इस उपलक्ष्य में हमने कुछ ऐसी फिल्में चुनी हैं जिनमें युवाओं की उपस्थिति दर्ज होती है। चलिए आज युवाओं के लिए हम करते हैं ढेर सारी शुभकामनाएं कि उनका भविष्य उज्ज्वल हो, उनके सारे सपने पूरे हों और उनके हौसले सदा बुलंद रहें। फिल्म 3 इडियट्स, सोनू निगम, श्रेया घोषाल की आवाजें।

வந்தே மாதரம். ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लेखनी से अवतरित दिव्य रचना जो बनी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तेजोमय प्रेरणा। स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर सुनिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अनुवादों पर आधारित वंदे मातरम एक जय घोष इस रूपक श्रृंखला की विशेष कड़ी।

शनिवार 15 अगस्त 2026 को दिन में 11 बजे केवल विविध भारती पर। विशेष मेगा एपिसोड वंदे मातरम, एक जय घोष।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: 1947 अर्थ इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाजों में। जावेद अख्तर के बोल थे, एआर रहमान का संगीत था।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम।

0: जो जीता वही सिकंदर। इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे उदित नारायण और विजेता पंडित की आवाजों में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, जतिन ललित का संगीत था।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लू। सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
3: सखी सहेली।
0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए अब सुने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म का गाना। फरहान अख्तर और साथियों की आवाजें हैं।

चक दे इंडिया फिल्म का गाना आप सुन रहे थे हेमा सरदेसाई की आवाज में। जयदीप साहनी के बोल थे, सलीम सुलेमान का संगीत था। लागा चुनरी में दाग ये नाम फिल्म का है। इसी फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजों में।

0: लगा चुनरी में दाग फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजों में स्वानंद किरकिरे के बोल थे शांतनु मोइत्रा का संगीत। इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज़ पर। अभी आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और संसद में सदस्यों की ओर से उठाए गए सभी सवालों का जवाब देगी। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और वो चर्चा के लिए तैयार है।
3: आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दें, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
2: श्री शाह ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार नीट परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इतने गंभीर मुद्दे पर चर्चा संसदीय प्रक्रिया के अनुसार होनी चाहिए। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही मांग रहा है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि विपक्ष को गृहमंत्री के किसी बयान में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि जवाबदेही चाहिए। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलाने देने की अपील की। लगातार हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही सुबह शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। रक्षा, वित्त, परिवहन, पर्यटन और संस्कृति, कृषि, पशुपालन तथा खाद्य प्रसंस्करण, कोयला खान और इस्पात से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों की रिपोर्ट भी सदन में प्रस्तुत की गई। हंगामे के बीच सभापति ने सदन की बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय, मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने युवा पीढ़ी से रामनाथ कोविंद के जीवन की कहानी उन्हीं के शब्दों में जानने और उनके लेखन और अनुभवों को पढ़ने का आग्रह किया।
4: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
2: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक माध्यम भी है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का शुभारंभ करेंगे। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न लाइब्रेरियों को एक साथ जोड़ने के लिए विकसित किया गया है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 संस्थागत, पारदर्शी और जवाबदेह न्यायाधिकरण प्रशासन की दिशा में परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतीक है। एक अंग्रेजी दैनिक के लिए लिखे आलेख में

0: श्री मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायाधिकरणों के मूल अधिकार क्षेत्र में कोई परिवर्तन किए बिना उनकी शासन संरचना को मजबूत करने का प्रयास करता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र में गैटलोक के पास एक बुलेरो पिकअप वाहन गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में 4 लोगों की मृत्यु हो गई जबकि 9 लोग घायल हो गए। सिरमौर के पुलिस अधीक्षक निश्चिंत सिंह नेगी ने बताया कि मामले की जांच जारी है। ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावुखेर सिंदारोव को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंदा के 2 मैचों में 1.5 अंक हो गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए गए थे हिंदी में समाचार। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, आइए हम पुनः सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम। रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

साहिल लुधियानवी गीतकार, ये हमने पूछा था आपसे, सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द जवाब दिया। संगीतकार का नाम भी सही लिखा, रवि मोहम्मद रफी की आवाज़, फिल्म आज और कल। एक श्रोता ने लिखा, छोटा सा घर होगा बादलों की छाव में, रिमझिम सितारों का आंगन होगा, बीते हुए दिन कुछ ऐसे, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। और बहुत सारे श्रोताओं ने गाने के बोल लिखे हैं। एक श्रोता ने लिखा, पर्वत, घर, फूल, वक्त, ख्वाब, नाम, प्रेम, प्रेम कहानी। भाई गाने के बोल भी तो लिखिए, इतनी कंजूसी क्यों? और कंजूसी वहाँ कीजिए जहाँ हमने कहानी पूरी करने की बात कही है। सिर्फ एक या दो लाइन में आप कहानी पूरी कीजिए कि क्या होता है वो पर्वत, पर्वतों के बीच में, पेड़ों के झुरमुटों के बीच, जब वो वापस लौटती है, एक बार उनके ख्वाब टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, जब वो वापस आती है और गाना गूंजता है वादियों में, बूझ मेरा क्या नाम रे, तो उस समय क्या वो उसका प्रेमी वापस आता है या नहीं, ये आपको बताना है। पूरे प्रोग्राम में हम पूछते रहेंगे, आखिर में इसका हम जवाब देंगे, मतलब कहानी पूरी करेंगे। ये अधूरी कहानी हमने दी है आपको। एक श्रोता ने पूरी करने की कोशिश की है, देखते हैं क्या लिखा है। बिछड़ते समय प्रेमी ने प्रेमिका को एक पीला दुपट्टा दिया और कहा, जो इस जगह पहले लौटेगा वो इस पेड़ की ऊपरी शाख पर ये दुपट्टा बांध देगा, तब दोनों को यकीन हो जाएगा कि अभी भी हमें एक दूसरे से प्रेम है और इंतज़ार है। जब प्रेमिका गांव लौटी तो देखा पेड़ की ऊपरी शाख पर एक नहीं अनगिनत पीले दुपट्टे लहरा रहे थे। क्या बात है भाई, हमारी आंखों के सामने तो सीन आ गया है, कैसे दुपट्टे लहरा रहे होंगे। तो ज़रा आप अपना निजी अनुभव बताइए कि आपने कभी किसी के लिए ऐसा पीला दुपट्टा, नीला दुपट्टा, लाल बांधा है, या फिर किसी के लिए प्यार का धागा बांधा है। वैसे मंदिर में जाते हैं तो अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए हम धागा बांध कर आते हैं, कभी अपने प्यार की खातिर कोई धागा बांधा है? ज़रा बताइए, वो अनुभव ही साझा कर सकते हैं, हम आप तक पहुंचाएंगे। और इस तरह की मन्नतों वाला धागा जब बांधते हैं तो ये अच्छी बात है, उसमें दुआओं की बाकायदा तावीज़ होती है। एक श्रोता ने लिखा है, कदम आवाज़ की दिशा में बढ़े तो देखा आंगन में लहराते उसी पेड़ की छांव में बैठा वो आज भी उसी के इंतज़ार में वही गीत गा रहा था। क्या बात है भाई, नज़रों से नज़रें मिलते ही जैसे सालों की दूरी मिट गई और अधूरा प्रेम हमेशा के लिए पूरा हो गया। आज के शब्द, पर्वत, चंबा, ख्वाब, पगडंडी, खूबसूरत गाना और गाने के बोल भी लिखे हैं, लेकिन हम अभी नहीं बताएंगे क्योंकि आपको बूझते रहना है हम कौन से गाने सुनवाने वाले हैं। अब ज़रा हमें हीरो हीरोइन का नाम बताइए, फिल्म है आदमी और इंसान।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे।

विविध भारती से यह है कार्यक्रम सुरीला सफर। आदमी और इंसान फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया था इस प्रोमो से पहले, और आपसे पूछा था हीरो हीरोइन का नाम। धर्मेंद्र और सायरा बानो सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया, जल्दी जवाब दिया। एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपने इबारत को पूरा करने का हम साथियों को मौका दिया है, बहुत अच्छा लगा आपका नया तरीका। तो हुआ ये कि जिस समय वो उस जगह पर पहुंची थी, उसी समय वो शख्स भी अपनी पुरानी यादों को पुनः जीने के इरादे से संयोगवश वहाँ पर पहुँच गया था और वही गीत गाकर खुश हो रहा था। दोनों अपने इस गीत को गुनगुनाते हुए फिर से मिले, क्या बात है भाई। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब प्रेम सच्चा है तो मिलेंगे ही ना, मिले मतलब वो प्रेमी जोड़ा मिल जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये जैसे कि पुनर्जन्म की कहानी हो।

और अगले जन्म में मिले। एक श्रोता ने ये लिखा है, एक श्रोता ने लिखा है कि एक प्रेमी जोड़ा अर्थात मेरी धर्मपत्नी और मैं स्वयं इन दिनों कश्मीर के पर्वतों के बीच बाबा बर्फानी के दर्शन के बाद अभी इस समय एक कश्मीर के हॉलिडे होम में रुके हुए हैं, जिसकी खिड़कियों से पहाड़, वादियां, पेड़ पौधे और खूबसूरत फूलों के अद्भुत नज़ारों का दर्शन कर रहे हैं और मन बस यही कह रहा है कि धरती पर अगर जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। और इस जन्नत को बचाए रखने के लिए हम सबको कोशिश करनी पड़ेगी, मतलब हरितिमा बचाए रखना है हम सबको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमें अभी आपके जवाब का और आपकी कहानी पूरी करने का इंतज़ार है कि देखते हैं कौन सही मंजिल तक पहुंच पाता है, कहानी की थीम को कौन पकड़ पाता है। बहुत सारे श्रोताओं ने पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन आप अपनी जो विचारधारा है वो साझा करते रहिए। अब हम आपको सुनवा रहे हैं सीआईडी फिल्म का गाना और ये वही गाना है जिसे उसने सुना पर्वतों की वादियों में और इसी गाने के जरिए अपने प्रेमी को याद किया। तो आपको पूछना है आवाज़ किसकी है और गीतकार कौन है और संगीतकार कौन है। फिल्म है सीआईडी।

शमशाद बेगम की आवाज थी मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे ओपी नैयर का संगीत था। श्रोताओं ने सही लिखा है, सीआईडी फिल्म थी। और जरा बताइए कि ऐसा कोई गाना याद आ रहा है जिसमें कि गांव हो, पीपल हो और इसमें गांव का पूरा परिवेश हो, ऐसा कोई गाना याद आ रहा है जिसमें नदी भी हो? क्योंकि आज की इबारत में ये शब्द कई बार आ गए हैं, तो नदी, गांव और पीपल वाले अगर कोई और गाने आपको याद आते हैं तो ज़रूर बताइए, हम आप तक पहुंचाएंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रेमी अक्सर लौटते ही हैं, कुछ या बहुत कुछ खोकर, टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है। और एक श्रोता ने लिखा है कि सालों बाद लौटने पर जब उसने देखा सफ़ेद स्वेटर जिस पर गुलाब के फूल की बहुत सुंदर कढ़ाई थी, उसे तुरंत ही याद आ गया उसके द्वारा दी गई प्यार की निशानी उसके प्रीतम प्यारे ने पहनी है। क्या बात है, हमारे श्रोताओं के अंदर एक कथाकार भी है, बहुत अच्छा लग रहा है जानकर। बहुत सारे श्रोताओं ने एक कथाकार की तरह पंक्तियाँ लिखी हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही से मैं लिखी हुई दास्तान हूँ, मेरे दिल के टुकड़ों में चांद की उदासी छिपी और धुंधली कुछ तस्वीरें लिखी रहीं। कहानी सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही से मैं लिखी हुई दास्तान हूँ। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि नीले पर्वतों की धारा, बहुत ही खूबसूरत छायांकन, पर्वत, झरने, नदियाँ, आपकी इबारत से बिल्कुल मैच कर रहा है ये गाना। एक श्रोता ने लिखा है कि इबारत अधूरी बताई गई है और लिखा है कि हम पूरी करें। मिलना बिछड़ना नियति में था, जब गाना सुना पुराना सजन मिल गया, फूल खिल गए, मिलन हो गया, गिले शिकवे सब दूर हो गए, प्रेम में बड़ी ताकत होती है। सिर्फ प्रेम में बिछड़ने की वजह गिले शिकवे ही नहीं होते हैं, कई बार मर्यादा भी होती है, समाज भी आड़े आता है, परिवार भी आड़े आता है। तो ये अब हम आपको एक क्लू दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं, ज़रा बुनिए आगे वाली कहानी सिर्फ दो लाइन में, एक लाइन में। हमें पता है कि आप बुन सकते हैं ये कथा। चलिए अब हम आगे बढ़ें और आपको सुनवाएं अमानत फिल्म का गाना। आपको बूझना है कि ये गाना किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। हमें लगता है कि ये फिल्म आप सबने देखी ज़रूर होगी, तो बूझिए ज़रा कि किन कलाकारों पर पिक्चराइज किया गया है। संगीतकार का नाम अगर पता है तो वो भी आप बता सकते हैं।

आज की इबारत में जो कथानक है कुछ निचोड़ इस गाने में है। जब प्रेमी जोड़े बिछड़ते हैं तो दिल से दिल की बात होती है, एक पुकार होती है, एक तड़प होती है, पीड़ा होती है। तो कुछ ऐसा ही ये गाना भी था और हमने पूछा था कि इसमें कलाकार कौन है। मनोज कुमार साधना, सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और साहिल लुधियानवी के बोल होते हैं, रवि का संगीत है और बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया है। फिल्म गोदान, नदिया के पार, नीले गगन तले गाने के बोल भी लिखे हैं बहुत सारे श्रोताओं ने। गांव के परिवेश पर हमने पूछा था कि ऐसा गाना जिसमें नदी है और गांव है तो कोई गाना याद आता है, तो वो भी बताइए। श्रोताओं ने वो भी बताया है और हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोता लगातार अपनी यादों की गलियारों में विचरण कर रहे होंगे और गाने याद कर रहे होंगे। याद कीजिए, बहुत सारे श्रोता अगर एक ही गाना लिखेंगे तो हम वो गाना बजाएंगे भी और बहुत सारे श्रोताओं के लिखे हुए गाने भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि वो मुड़ी तो सामने वही खड़ा था, बालों में सफेदी, आंखों में वही प्यार और हाथ में उस पेड़ की एक हरी टहनी जिसे उन्होंने कभी साथ लगाया था। दोनों कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुरा दिए, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वो बस सही वक्त आने का इंतजार करता है। एक श्रोता ने लिखा है कि रही बात कहानी की तो दिल हमेशा उसे ढूंढता रहता है जो कभी मिला नहीं या मिल नहीं सकता। जब उसने वो गीत सुना तो कुछ पल के लिए वो अतीत में चली गई, पर देखा तो एक छोटी सी पहाड़ी पर एक लड़का वो गीत गुनगुना रहा था। जब उसने पूछा कि उसे ये गाना कैसे आता है तो उस लड़के ने बताया कि उसके पिता अक्सर गुनगुनाते रहते थे और कहते थे एक दिन कोई ये गीत सुनकर उसके बारे में ज़रूर पूछेगा। क्या बात है भाई, ये तो एक अलग सी कहानी डेवलप हो रही है। तो ठीक है, आज अपने कहानीकार दिल को टटोलिए और लिख डालिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। एक श्रोता ने लिखा है, गाने के बोल की लंबी फेहरिस्त भेजी है। पर्वत के पीछे चंबेदा गांव, देखो मैंने देखा एक सपना, काश ऐसा होता, तेरी गली में होता मेरा चौबारा, वगैरह वगैरह। बहुत लंबी फेहरिस्त है जो विविध भारती के फेसबुक पेज पर सुरक्षित रहेगी, आप चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं। फिलहाल मधुमती फिल्म का गाना आ रहा है, आपको बूझना है गीतकार और संगीतकार का नाम। उम्मीद है आप सही सही बताएंगे, जल्द बताएंगे।

मधुमती फिल्म का गाना था। हमने गीतकार संगीतकार का नाम पूछा था, त्वरित जवाब आया, श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया, शैलेंद्र और सलील चौधरी, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी। और श्रोता कोशिश कर रहे हैं कहानी की बात को आगे बढ़ाने की। और अगर आपको नहीं सूझ रहा है तो बस ये तो बताइए कि अंत क्या होता है कहानी में, प्रेमी जोड़े में वो प्रेमी आता है इस गाने को सुनकर या फिर नहीं आता है। जो भी गाने आज बज रहे हैं, मेरे ख्याल से उस प्रेमी तक इन गानों के ज़रिए आवाज़ पहुंचनी चाहिए, तो जो कहानी इबारत की थीम है उसमें। अब एक श्रोता ने लिखा है कि इंसान बहुत कुछ भूल जाता है पर पहला प्यार नहीं भूल पाता, क्योंकि वो उसकी आत्मा और जहन में पत्थर की लकीर की तरह इंगित हो चुका होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज सुरीला सफ़र में नदी पहाड़ों के वातावरण में रहने वाले प्रेमियों के मिलने बिछड़ने पर आने वाले गीत सुनने को मिलेंगे। चंबा का गांव और प्रेमी क्या कहते हैं वो भूली दास्तां फिर याद आ गई, बीते दिन वो प्यारे दिन कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बूझ मेरा क्या नाम रे। बहुत सारे गानों को मिलाया है इन्होंने, एक कड़ी सी बनाई है, अच्छी बात है ये। एक श्रोता ने लिखा है कि वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, हवाएं गुंजायमान है, यही वो जगह है, यही हैं फिजाएं, यहीं पे कभी आप हमसे मिले थे, यहीं पे कभी हाथों में हाथ लेकर कभी ना बिछड़ने का वादा किया था। एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी भावुक सुंदर इबारत की परिपूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं हम। विरह दर्द को आंचल में समेटे, मन की सारी शक्ति बटोरे, वो उस हरे भरे फूल पेड़ के पास पहुंची जो उन दोनों ने लगाया था और बोल उठी, ओ मेरे मनमीत, तेरा नाम है अमर प्रेम, तेरी यादों को दिल से कैसे मिटाऊं, तुम्हें भुलाना नामुमकिन है क्योंकि जन्म जन्म का साथ है निभाने को, सौ सौ बार हमने जन्म लिए। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात आपने लिखी है। और अब बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र किया है जो हम सुनवाने जा रहे हैं, लेकिन ज़रा आपको बताना है हीरो हीरोइन का नाम, किन हीरो पर किन हीरोइन पर फिल्माया गया है ये गाना, फिल्म महबूबा, जल्द बताइए ताकि अगले सवाल का जवाब आप दे सकें। हीरो हीरोइन लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें हैं।

महबूबा फिल्म का गाना था। हमने आपसे पूछा था कौन है हीरो कौन है हीरोइन, राजेश खन्ना और हेमा मालिनी। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया और दरअसल इस गाने का जिक्र भी हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने किया था, तो समझ लीजिए कि आप सभी की फरमाइश पर यह गाना हमने बजाया। तो आज की इबारत से कोई शब्द आपको सूझ रहा है जिस पर बहुत सारे गाने आपको सूझ रहे हैं, तो वो आप लिख डालिए, फिर वही गाना हम आप तक पहुँचाएंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो हरियाली अमावस्या है, सुरीला सफ़र में नदी पहाड़ों की बातें हैं और वैसे ही गाने हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है आज का सुरीला सफ़र। एक श्रोता ने लिखा है कि बीते हुए दिन और हालात लौट कर नहीं आते, लेकिन अगर दोनों का प्यार सच्चा और पवित्र है तो बिछड़े हुए प्रेमी फिर से मिल सकते हैं। सच क्या है, बीता हुआ कल जो समय निकल गया शायद वापस नहीं आता, टूटे हुए ख्वाब पुराने जख्मों को भरने में समय लगता है, हालात अगर हालात बदल जाएं तो अलग हुए रास्ते फिर से जुड़ जाते हैं। अब बात बीते हुए दिन की चली है, तो चलिए एक ऐसा ही गाना सुनते हैं। आपको पूछना है किसकी है आवाज और गीतकार का नाम। फिल्म है फर्स्ट लव और बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र भी किया है।

सभी श्रोताओं ने सही बताया, सुमन कल्याणपुर की आवाज़ है, गुलशन बाबरा के बोल हैं। ये बात, ये जानकारी कम श्रोताओं ने दी है। दत्ताराम का संगीत और फिल्म थी फर्स्ट लव। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि उसने देखा कि गाना एक कुटीर से आ रहा है, जाके देखा तो प्रेमी की बेटी गा रही थी, प्रेमी तो गुजर गए थे। ये एंड लाइन हमारे श्रोता ने लिखी है और सब अपने अपने विचारधारा के अनुरूप लिखें कि कहानी का अंत क्या होना चाहिए। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज आप द्वारा प्रस्तुत शानदार इबारत के साथ सुरीला सफ़र के लाजवाब कमेंट सुनकर पढ़कर मन प्रफुल्लित हो रहा है। हमारा भी मन प्रफुल्लित हो रहा है कि एक ज़रा सी कहानी है छोटी सी, उसमें आप सभी उसमें शामिल हो रहे हैं, उस छोटी सी कहानी को कितना विस्तार दे रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अब ज़रा बताइए हीरो हीरोइन का नाम और कौन से शब्द इस गाने में आते हैं इबारत वाले, और कौन से शब्द वाले गाने बाकी हैं, ज़रा ये भी तो लिखिए। फिल्म मेरा नाम जोकर, आपको हीरो हीरोइन का नाम बूझना है। और हाँ, अगर वो प्रेमी मिल जाता है तो फिर वहां पर कौन सा गाना होना चाहिए, जरा ये भी बताइएगा।

आप सुन रहे थे ये गाना, फिल्म थी मेरा नाम जोकर, मुकेश की आवाज़, हसर जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत था। और श्रोताओं ने बताया है राज कपूर और सिमी गरेवाल इस फिल्म में होती हैं, इस गाने में। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज आजा सनम मधुर चांदनी में हम ये भी गाना होना चाहिए। अब देखते हैं कि वो मुलाकात कैसी होती है, मतलब वो प्रेमी जोड़े मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। वहाँ पर जब अगर वो जोड़े मिलते हैं तो कौन सा गाना होना चाहिए, ज़रा ये बताइए। देखते हैं, आपने बहुत सारे श्रोताओं ने कोशिश की है कहानी पूरी करने की, अगर वो गाना भी बता देते हैं तो हम समझ जाएंगे कि हमारी आपकी पसंद बिल्कुल मिलती जुलती है। एक श्रोता ने लिखा है कि आवाज़ के पीछे गई तो वहाँ कोई नहीं था, बस हवा थी जिसमें उसकी आवाज़ और उसके बीते दिनों की खुशबू घुली हुई थी। उसने आंगन के उस पुराने पेड़ को छुआ जिस पर दोनों के नाम अब भी साथ साथ खुदे थे। गुजरा हुआ वक्त लौट कर नहीं आता, बस उसकी आहटें दिल के किसी कोने में ठहरी रहती हैं। बरसों बाद जब यादों की कोई खिड़की अचानक खुलती है तो बीते दिनों की खुशबू के साथ एक हल्की सी टीस भी लौट आती है। कुछ प्रेम कहानियाँ इस ज़मीन पर मुकम्मल नहीं होती, वे बिछड़ कर आसमान की हवाओं में हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं। क्या बात है, एक कहानी आपने रच दी है, बहुत अच्छा लगा। अब बुझिए कि कौन है कलाकार जिन पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना, फिल्म है किनारा। गीतकार और संगीतकार का नाम पता होगा आपको शायद, तो लिख डालिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।

किनारा फिल्म का गाना था, भूपेंद्र हेमलता हेमा मालिनी की आवाज़ें थी, गुलजार के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत था और बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया है हेमा मालिनी पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना। और ये गाना हमें अधूरा छोड़ना पड़ा क्योंकि इस गाने में पूरी कहानी निहित थी, इसलिए गाना सुनवाया। और एक गाना अभी ज़रूरी है जिसका जवाब आप सभी ने नहीं दिया, देखिएगा शायद वो आपका भी फेवरेट सॉन्ग हो और आपने भी वही गाना सुना चुना हो। एक श्रोता ने लिखा है कि सच्चा प्रेम तो वो है जिसमें मिलने की नहीं एक दूसरे के लिए सच्चा समर्पण हो, यही प्रेम की पराकाष्ठा भी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही से लिखी हुई दास्तान हो, इसे कृपया आप पूरा कर दें। ये टिप्पणी पढ़ी जा चुकी है, शायद ये दोबारा और तिबारा भी आई है एक टिप्पणी। और अब वो इबारत मैं आप तक पहुंचा रही हूं जिस इबारत की बात बार बार की इस प्रोग्राम में। पर्वत के पीछे चंबेदा गांव था, वहां एक प्रेमी जोड़ा था, उन्होंने मिलकर एक खूबसूरत ख्वाब देखा था, एक छोटा सा घर जिसकी खिड़की से पहाड़ और वादियां दिखाई दें, आंगन में दोनों के नाम के एक पेड़ हो, लेकिन बीते दिन लौट कर नहीं आते, हालात ने उन्हें एक दूसरे से दूर कर दिया, वक्त की आंधी में उनके टूटे हुए ख्वाब कहीं बिखर गए। सालों बाद फिर उसी गांव में वो लौटी, पहाड़ वही थे, पगडंडियां वही थी, मगर वो नहीं था। तभी हवा में उसकी आवाज़ गूंजी, बूझ मेरा क्या नाम रे, वो ठिठक गई। ये वही गीत था जिसे उसने कई बार उसके साथ गुनगुनाया था, उसने आंखें बंद की तो लगा जैसे बीते हुए दिन फिर उसके सामने खड़े हैं। कुछ प्रेम कहानियां पूरी होकर भी अधूरी रह जाती हैं और कुछ टूटे ख्वाब उम्र भर आंखों में अपना घर बनाए रहते हैं। अब इस इबारत के मुताबिक तो मिलता है वो प्रेमी जोड़ा, प्रेमी आता है मिलता है, लेकिन एक बेनाम रिश्ते के साथ। वो रिश्ता ऐसा था कि उसका मिलना न मिलना एक समान था, लेकिन कई मुलाकात ऐसी होती है कि आपके जहन में बस जाती है, लगता है कि अधूरा प्रेम भी मुकम्मल प्रेम है। अब सुनिए

0: तो क्या बताइए, आपने ये गाना आखिर में सोचा था कि ये गाना बजाया जाएगा? वापस फिल्म का ये गीत था और अधूरी मुलाकात को हमने मुलाकात पूरी करवा दी, और बहुत सारे श्रोताओं ने यही चाहा भी था इस कहानी में कि अंत ऐसा ही हो कि सच्चा प्रेम हो तो ज़रूर मुलाकात होती है, प्रेमी जोड़े मिलते हैं। एक श्रोता ने लिखा भी है कि कभी जिस बरगद की छाँव में बैठ कर वे घंटे बातें किया करते थे, वो बरगद आज भी इतने सालों बाद भी खड़ा है, उसकी शाखाएँ फैल गई हैं, छाया घनी हो गई है, उसके नीचे वो बंसी बजा रहा है और वो दौड़कर अपने पुराने प्रेमी के पास पहुंच गई है। कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पाती।
1: विविध भारती के कार्यक्रम आप सुन रहे थे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया, इस राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं पर लगाया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावोखेल सिंदारोव को हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और संसद में सदस्यों की ओर से उठाए गए सभी सवालों का जवाब देगी। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और वो चर्चा के लिए तैयार है।
1: आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दें, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
0: श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रही।
1: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही मांग रहा है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि विपक्ष को गृहमंत्री के किसी भी बयान में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वो जवाबदेही चाहता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों को प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही सुबह शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। इस समय दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजधानी रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि सरकार द्वारा उनकी मांगे स्वीकार किए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से छात्रों के साथ संवाद करने की अपील की। प्रदर्शनकारियों के अनुसार वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी देर रात आंदोलन स्थल पहुंचे और आमरण अनशन कर रहे छात्रों से अनशन समाप्त करने का आग्रह किया। हालांकि छात्रों ने अनशन जारी रखने की बात कही और बताया कि आंदोलन की आगे की रणनीति कोर कमेटी तय करेगी। इस बीच झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र कल निर्धारित समय से एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। परीक्षा विवाद और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सदन में लगातार हंगामा हुआ। छात्रों का कहना है कि केवल परीक्षा रद्द करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच कर दोषियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वो अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ें और रील्स तथा सोशल मीडिया

0: सेंसर्स के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचे। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया।
1: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का मार्गदर्शन उनके लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा है।
1: कोविंद जी ने ये काम हम सबके लिए किया है, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कितना कुछ है जिसमें गरीब वंचित तबके से आए तमाम लोग अपने जीवन की परछाई देख सकते हैं। कैसे एक साधारण परिवार मुश्किल हालातों में भी जीवन की शुचिता और ईमानदारी से समझौता नहीं करता।
0: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक माध्यम भी है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और हाईस्पीड डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया है। संशोधित दरें कल आधी रात से लागू हो गई हैं। इससे प्राप्त राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए दिया जाएगा। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और विधायक राकेश जम्वाल ने इस फैसले को जन विरोधी बताया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय व्यापार महोत्सव का उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करना है, जिससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश की प्रगति को गति मिल सके। नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने ये बात कही। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा कि प्रौद्योगिकी और व्यापार भारत की विकास यात्रा के दो प्रमुख आधार हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का शुभारंभ करेंगे। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न लाइब्रेरियों को एक साथ जोड़ने के लिए विकसित किया गया है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने हथकरघा क्षेत्र में एक बड़े बदलाव का आह्वान किया है। उन्होंने उद्योग को पुनर्जीवित करने और बुनकरों तथा कारीगरों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए नवाचार, बाजार उन्मुख डिजाइन और टिकाऊ उत्पादन पर बल दिया। नई दिल्ली में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले वार्षिक सम्मेलन सूत्र 2026 में श्री सिंह ने ये बात कही। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।
2: इस वर्ष हर घर तिरंगा 2026 अभियान वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के जज्बे को समर्पित है। यह अभियान देशभक्ति, तिरंगे के प्रति गर्व और हमारे राष्ट्रगीत में झलकने वाले मातृभूमि के प्रति प्रेम का जश्न मनाता है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आजादी के उपलक्ष्य में उसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसकी शुरुआत इस सोच के साथ हुई थी कि राष्ट्र ध्वज के साथ हमारा रिश्ता हमेशा व्यक्तिगत होने के बजाय औपचारिक और संस्थागत रहा है। इसलिए एक राष्ट्र के तौर पर सामूहिक रूप से तिरंगे को घर लाना न केवल तिरंगे के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव का प्रतीक बन गया, बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का भी प्रतीक बन गया। इस पहल का मकसद लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और भारतीय राष्ट्रध्वज के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि वंदे मातरम की भावना ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया और आज भी ये देश की पहचान को मजबूत कर रही है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित हर घर तिरंगा बाइक रैली में हिस्सा लेने वालों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कही।
3: इन तिरंगा यात्रास, बाइक एंड साइकिल रैलीज, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड कंसर्ट्स, ईच एक्टिविटी हैज अ डिफरेंट फॉर्म बट द सेंटीमेंट बिहाइंड देम इज कॉमन। द नेशनल फ्लैग इज द सिंबल इन व्हिच एवरी सिटीजन कैन फाइंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान, गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का

0: किया। सोशल मीडिया पोस्ट में एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा हर मन तिरंगा अभियान के तहत हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज युवाओं से देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उठाने और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। नई दिल्ली में तिरंगा यात्रा के दौरान युवा छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही। जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलेवार्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में भी हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देशभक्ति का रंग देखने को मिला। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तिरंगा यात्राओं से लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
1: स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान जोर पकड़ रहा है। प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक चल रहे इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में तिरंगा यात्रा के साथ की। इसके बाद से प्रदेश भर में तिरंगा यात्राएं, बाइक और साइकिल रैलियां निकाली जा रही हैं। गांवों से लेकर शहरों तक तिरंगा मेले, प्रदर्शनियां, मानव श्रृंखला और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्कूल कॉलेजों में भी रंगोली, चित्रकला, निबंध और देशभक्ति गीतों जैसी प्रतियोगिताओं के जरिए बच्चों और युवाओं को अभियान से जोड़ा जा रहा है। 13 से 15 अगस्त तक लोगों से अपने घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने की खास अपील की गई है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए चर्चा शुरू हुई। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने ये विधेयक प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 में और संशोधन करना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे के लगभग 89% आरक्षित टिकट ऑनलाइन बुक किए जा रहे हैं। वर्ष 2013-14 में ये आंकड़ा लगभग 49% था। श्री वैष्णव ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के एक चौल में भूस्खलन होने से 6 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
2: मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 6 लोगों की मौत हो गई। बृहन मुंबई महानगर पालिका के अनुसार यह घटना चिराग नगर स्थित गौसिया चौल में हुई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पहाड़ी का एक हिस्सा चौल पर गिर गया, जिससे 2 से 3 मकान मलबे की चपेट में आ गए। घटना के बाद मुंबई की महापौर ऋतु तावड़े और अतिरिक्त नगर आयुक्त पूर्वी उपनगर डॉक्टर अविनाश ढाकने ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और जारी बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। प्रार्थना के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से मैं स्वीटी जैन।
0: वहीं मौसम विभाग ने राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कल तक बिजली चमकने और तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा तट के पास उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उत्तरी और तटीय ओडिशा के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है, जिससे उड़ीसा में बारिश बढ़ गई है। भद्रक, केंद्रापड़ा और जगत सिंहपुर में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज चेतावनी जारी की गई है। 25 अन्य जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की गई है। IMD को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उड़ीसा में व्यापक बारिश होगी और आज व कल कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। तटीय इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। खेलों में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावुखेर सिंदारोव को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। 95 चालों तक चले इस मैच में प्रज्ञानंदा ने शुरुआत से अंत तक अपना दबदबा बनाए रखा। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंदा के 2 मैचों में 1.5 अंक हो गए हैं। अभी अभी समाचार मिला है कि लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया। हर घर तिरंगा अभियान

0: को लेकर लोगों में उत्साह, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता के दूसरे दौर में जावुखेल सिंधारोप को हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए गए थे अंग्रेजी और हिंदी में दोपहर समाचार। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, अभी आप पुनः सुन पाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

लेखनी से अवतरित दिव्य रचना जो बनी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तेजोमय प्रेरणा। स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर सुनिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अनुवादों पर आधारित वंदे मातरम एक जय घोष, इस रूपक श्रृंखला की विशेष कड़ी।

शनिवार 15 अगस्त 2026 को दिन में 11 बजे केवल विविध भारती पर। विशेष मेगा एपिसोड वंदे मातरम, एक जय घोष।

0: फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र की रचना थी, सलील चौधरी की धुन थी। रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो

0: मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहां से हुजूर।
3: वो कॉमिक क्रिएटर है।
4: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
3: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
4: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
3: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
4: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
3: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: रहना।
1: गर्लफ्रेंड फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और सुधा मल्होत्रा की आवाजों में। लिखा था इसे साहिल लुधियानवी ने, धुन बनाई थी हेमंत कुमार ने।

0: मेरा गांव मेरा देश फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। शब्दकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। ये जिद्दी फिल्म का गाना है, गीता दत्त और मन्ना डे की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: मैं क्या क्या ना बना, मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना बना, दिल बदल

जिद्दी फिल्म का गाना था, गीता दत्त और मन्ना डे की आवाजें थी, हसरत जयपुरी के बोल सचिन देवबर्मन का संगीत था। आइए प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं बहू बेगम फिल्म का गाना, लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, रोशन का संगीत है। सुनिए प्रोग्राम का आखिरी गाना और इसी के साथ अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: ಸಹೇಲಿ कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाली हमारी सारी सखियां सहेलियां और श्रोता भाइयों को और सोनाली तुम्हें भी दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: दीपा आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार।
0: बिल्कुल आपका जो नमस्कार है सभी ने उसे
1: स्वीकार
0: लिया है और हेल्थ का ध्यान रखना बिल्कुल अच्छे हैं और हेल्थ का ध्यान रखना सेहत का ध्यान रखना इसलिए जरूरी है कि बदलते मौसम में देखिए ना घर घर में हम सुन रहे हैं किसी को नजला हो गया है किसी को
1: खांसी
0: हो गई है कहीं बुखार है तो ऐसे में अगर हम पहले से ही थोड़ा सा अपना ध्यान रखते चलते हैं ना तो ये जो बदलते मौसम में तबीयत जो खराब हो जाती है ये जरा संभल जाती है
1: और जो लोग रोज अखबार पढ़ते हैं ना दीपा उन्हें मालूम होता है कि भाई अभी बहुत जगह पे इस तरह की बीमारियां फैली हुई है
0: जी।
1: तो पानी उबालकर पीना चाहिए या अपना ध्यान रखना चाहिए यानी बहुत सारी सूचनाएं होती हैं बहुत सारी योजनाएं होती हैं तो हमें रोज अखबार पढ़ते रहना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा और ऐसे ही देखो ना ये मौसम ऐसा है कि यहाँ पे अलग अलग व्यंजन खाने का और बनाने का बड़ा मन करता है। अच्छा चलिए सखियाँ बनाने का भले मन नहीं करता होगा लेकिन खाने का तो करता होगा ना।
1: मेरा तो मन करता है।
0: बिल्कुल तो वैरायटी सबको चाहिए एक विविधता होनी चाहिए न सिर्फ अपने जीवन में खाने में भी।
1: हाँ और है ना वही वही तरह के जब हम खाने खाते हैं ना तो बच्चे क्या बड़े बूढ़े सारे लोग ना परेशान हो जाते हैं कि अरे वही बना लिया। तो ओट्स जो होते हैं ना प्रोटीन से भरे होते हैं तो उसके व्यंजन बहुत सारे व्यंजन हमारी सखियों ने हमारे श्रोताओं ने लिखकर भी भेजे हैं।
0: बिल्कुल
1: किसी ने डोसे का लिखा है किसी ने उपमा लिखा है तो किसी ने खीर लिखा है तो आप भी लिखकर भेजिए कि आपके घर में ओट्स के व्यंजन बनते हैं और नहीं बनते तो क्या बनने चाहिए।
0: बिल्कुल और देखिए थोड़ी मेहनत तो लगेगी लेकिन मेहनत का फिर फल भी तो बहुत मीठा होता
1: बहुत
0: है।
1: मीठा होता है।
0: और जब सारे खुश हो जाएंगे और उस मेहनत का जब रंग निखर के आएगा तो फिर देखिए न सिर्फ हर दिन हमारा जीवन भी सवर जाएगा और यही शब्द है हमारा आज का
1: मेहनत। तो आज का है शब्द हमारा विचार आपके इसमें मेहनत है यानी किसी भी क्षेत्र में चले जाओ बिना मेहनत के हमें बहुत सफलता नहीं मिल सकती।
0: बिल्कुल और आजकल की जो हमारी बेटियां हैं उन्हें लगता है साड़ी पहनने में बहुत मेहनत लगती है लेकिन जो अनुभवी महिलाएं हैं वो कहती हैं तुम जितनी देर में ड्रेस पहनोगी हम उतनी देर में साड़ी पहन लेंगे
1: हम चट से पहन लेंगे।
0: तो साड़ियों का अपना एक सुंदर संसार है और एक महिला जितनी खूबसूरत साड़ी में लगती है किसी अन्य परिवेश में परिधान में शायद कम लगती है। ये आपको क्या लगता है आप जरूर बताइएगा सखियां कि साड़ी पहनना आसान है या ड्रेस पहनना आसान है और अगर आसान ड्रेस है तो खूबसूरत किस में ज्यादा दिखते हैं।
1: और श्रोता भाई भी बताएं कि महिलाएं किस ड्रेस में यानी किस परिधान में ज्यादा सुंदर लगती है
0: जी।
1: तो खंडुआ साड़ी ओडिशा के बारे में हम जानकारी देंगे और हमारी बहुत सारी श्रोताओं ने हमारी बहुत सारी सखियों ने भी इस विषय में मैसेज लिखना शुरू कर दिया है। साथ ही आज एक खास दिन है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है तो सारे युवाओं को भी हम बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देते हैं।
0: बिल्कुल उन सभी को उनकी ऊर्जा को सलाम और उन्हें ये एक सीख भी देते हैं कि अपनी ऊर्जा को एक सकारात्मक पथ पे आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन को संवारते चलें
1: जी।
0: और अब हम क्या करें
1: गीत सुनते हैं
0: चलो।

0: सोनाली, कहाँ खोई हुई हो संदेशों में।
1: यहाँ आने के बाद में हम दोनों नहीं होते हैं दीपा, हमारे साथ में इतने सारी श्रोता, इतनी सारी सखियां जो घर में सुनते हैं और हम उनके संदेश पढ़ते हैं।
0: बिल्कुल, तो संदेशों के माध्यम से बहुत सारी हमारी सखियां इस वक्त हमारे साथ हैं,
1: जुड़ी हुई हैं। और आज एक खास दिन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस।
0: बिल्कुल,
1: तो युवा जो होते हैं ना, किसी भी देश का वर्तमान और भविष्य की सबसे मजबूत नींव होते हैं। उनके भीतर असीमित ऊर्जा, कुछ नया करने की ललक और दुनिया को बदलने का साहस होता है। और इसी ऊर्जा और सामर्थ्य को सम्मानित करने और युवाओं से जुड़े मुद्दे पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। और ये दिन युवा दुनिया भर के युवाओं की उपलब्धियों का उत्सव मनाने का दिन है और समाज निर्माण में उनकी भागीदारी को रेखांकित करने का एक साझा मंच है।
0: बिल्कुल सही कहा। और अगर हमारे देश की हम बात करें तो इस संदर्भ में देखा जाए तो ये दिन और भी खास और जीवंत हो उठता है, क्योंकि हमारा देश जो है वो दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, जहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा 35 वर्ष से कम आयु का है। तो भारत का युवा जो है उसको हम केवल जनसांख्यिकीय लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड ये नहीं हम बोल सकते, ये आंकड़ा नहीं है, वो लोग ये नहीं हम मान सकते, बल्कि देश के आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक बदलाव का मुख्य कारक भी हमारे युवा हैं।
1: ये तो बात आपने बहुत सही कही दीपा। और आज का भारतीय युवा केवल अवसरों की तलाश नहीं कर रहा है, बल्कि स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और नए विचारों के जरिए खुद अवसर पैदा कर रहा है। अंतरिक्ष से लेकर खेल के मैदान तक या तकनीक से लेकर सामाजिक क्रांति तक भारत का युवा हर क्षेत्र में विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और एक देश के युवाओं का ये संगम इस बात का प्रतीक है कि जब युवा सशक्त होता है तो वह न केवल अपने देश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि पूरी दुनिया को एक नई दिशा दिखाने का भी सामर्थ्य रखता है।
1: बस युवाओं को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे समय का बहुत ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल सही
1: कि ये जो महत्वपूर्ण वर्ष है ना, ये जिंदगी में बार बार नहीं आती।
0: बिल्कुल, और ये ऊर्जा भी बार बार नहीं मिलेगी, है ना, इसे संगठित करके रखना होता है।
1: तो बस ये जो समय है इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भाई समय का ध्यान रखो, थोड़ा मोबाइल से दूर रहो, थोड़ा पढ़ लिख लो, तो उन बातों को जो युवा ध्यान में रखते हैं ना, उनका जीवन उज्जवल हो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: और सबसे जरूर बात है मेहनत।
0: जी बिल्कुल सही कहा। और ये वो सुनहरे वर्ष हैं जहां आप जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास आजादी है, स्वतंत्रता है, क्योंकि आगे चल के जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी जिम्मेदारियां हमेशा बढ़ती जाती है, और उस वजह से कई बार अपने सपनों को हमें पीछे छोड़ना होता है क्योंकि जिम्मेदारी ज्यादा बड़ा रूप ले लेती है। तो आप चाहें जो चाहें वो कर सकते हैं, बशर्ते बस ये ध्यान रखिएगा कि हमारे घर वाले कहीं पे उनका उनकी मानहानि ना हो या उन्हें ऐसा ना लगे कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। अगर आप अपने गाँव, देश, प्रदेश कहीं से भी बाहर दूर हैं, तब भी माता पिता को ये लगे जहाँ भी हमारा बच्चा है बिल्कुल सही है और एक सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ रहा है।
1: और अपने देश, अपने बड़े बुजुर्ग और अपने घर का नाम रोशन हो, इस बात का युवाओं को ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल। अच्छा, एक संदेश आया है, ये पढ़ना चाहती थी सोनाली। इन्होंने आधिकारिक जो थीम है इस साल की वो बताई है, थीम है अलग परिस्थितियां, समान आकांक्षाएं। तो इस विषय पर जोर देता है इस साल का ये थीम कि भले ही दुनिया भर के युवाओं की सामाजिक और भौगोलिक स्थितियां अलग हो, लेकिन उनके सपने और जरूरतें एक जैसी हैं।
1: बहुत सुंदर संदेश लिखकर भेजा है। और आप क्या किया जाए,
0: आज थोड़ी हल्की सी फुहार यहाँ पर रिमझिम सी बरसात हो रही है, तो चलिए दोस्तों
1: उसे महसूस करते हैं गीत के माध्यम से।

0: चलो चलते हैं
1: साड़ियों के संसार में।
0: हाँ बिल्कुल। अच्छा साड़ियों से संदेश भी आया, लेकिन हम पहले जानकारी दे दें कि ये खंडुआ साड़ी होती क्या है। ओडिशा में इसकी प्रसिद्ध ये साड़ी है, वहाँ की पारंपरिक बांध कला तकनीक से बनाई जाने वाली साड़ी है। वैसे तो उड़ीसा के कई क्षेत्र में बुनी जाती है ये वाली साड़ी, लेकिन मुख्य रूप से कटक जिले के नुआपटना और गंगा मणिबंध गाँव में बुनी जाती है।
1: और दीपा, इस साड़ी का आध्यात्मिक महत्व भी है। पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के वस्त्र खंडुआ रेशम से ही तैयार किए जाते हैं, जिन पर जयदेव रचित गीत गोविंद के श्लोक भी बुने हुए हैं।
0: और इक्कत तकनीक से इसमें ताने और बाने के धागों को पहले से बांध कर और रंग रंग करके पैटर्न तैयार किया जाता है, जिसे बंध कला कहा जाता है। और जो दूसरे ट्रेडिशनल जो सिल्क साड़ियां हैं ना, उनकी तुलना में खंडुआ साड़ी काफी हल्की होती है, जिसे पहनना बहुत आसान होता है। इसके सिल्क और कॉटन दोनों में इसे बुना जाता है।
1: और डिजाइन की बात की जाए तो इसमें मुख्य रूप से हाथी, मोर, कछुआ, शंख, फूल और मंदिर की आकृति यानी टेंपल बॉर्डर जैसे शुभ प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। और रंगों की बात की जाए तो लाल, पीला, नारंगी और केसरिया जैसे जीवंत रंगों का अधिक इस्तेमाल होता है। और इस विशेष साड़ी के दो और तीन प्रकार हैं, जैसे खंडुआ पाट जो शुद्ध रेशम से बनी साड़ी होती है, इसका उपयोग मुख्य रूप से मांगलिक अवसरों, त्योहारों, विवाह और धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है।
0: जी, और सूती खंडवा उसी तरह होती है, लेकिन इसमें शुद्ध कॉटन से बनाई जाती है। ये वाली साड़ी हल्की होती है, ब्रीदेबल यानी कि सांस लेने योग्य। अगर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि साड़ी पहन के कुछ भारी सा लग रहा है
1: ये
0: या
1: चुभ रहा है।
0: चुभ रहा है, वैसा नहीं लगता इसे पहनकर। एकदम आरामदायक होती है ये वाली साड़ी। आप चाहें तो सखियां रोजमर्रा के उपयोग में ले सकती हैं इसको, और गर्मी के मौसम के लिए तो बहुत उपयुक्त साड़ी है ये।
1: और गीत गोविंद खंडुआ, ये खंडुआ का सबसे पवित्र और पारंपरिक रूप माना जाता है। इसके बॉडी या आंचल पर देवनागरी या ओडिया लिपि में गीत गोविंद के श्लोक बुने जाते हैं। इसे मुख्य रूप से भगवान जगन्नाथ के वस्त्रों के रूप में और धार्मिक अनुष्ठानों में पहना जाता है। और एक है टसर खंडुआ, इसमें टसर सिल्क का उपयोग किया जाता है। इसमें साड़ी को एक प्राकृतिक हल्का सुनहरा और मैट टेक्सचर मिलता है।
0: अब देखो ये इतनी तरह की साड़ी है, तो अगर आपको टसर जो फैब्रिक है वो पसंद है तो उसकी साड़ी ले सकते हैं, अगर कॉटन पसंद है तो वो ले सकते हैं। सिल्क पहनना चाहती हूँ बहनों का है भाई, बात तो सही है, लेकिन खरीदनी तो जाने जाना तो आप ही को पड़ेगा ना। आगे लिखते हैं कि इस विषय में मुझे कुछ नहीं पता, केवल साड़ियों के विषय में सुनकर जानकारी बटोरेंगे। आप सिर्फ जानकारी नहीं बटोरेंगे, इस साल उन्हें दिलाएंगे भी।
1: हाँ बिल्कुल, प्रॉमिस चाहते हैं। और एक साथी ने लिखा है कि काश साड़ी परिधान पुरुषों के लिए भी होता, पैंट शर्ट तो महिलाओं के परिधान में सम्मिलित हो चुका है, धोती थोड़ा साड़ी से मैच करती है, पूरी नहीं। पर देखा है ना, आजकल साड़ियों से भी ना पुरुष उसके परिधान बनाते हैं, उसके धोती सिलवाते हैं,
0: हाँ
1: कुर्ते
0: बिल्कुल।
1: बनवाते हैं, जैकेट बनवाते हैं। तो पुरानी अगर साड़ी हो चुकी है तो उससे जो हमारे पुरुष भाई हैं वे भी उससे कुछ कुछ जैकेट्स वगैरह, धोती वगैरह बनवा सकते हैं।
0: बिल्कुल, और वो भी कहीं दिखा सकते हैं कि देखिए हमारा भी अंदाज अलग है, निराला है। जैसे कि इस गाने में हमारी हीरोइन देखिए क्या कह रही है।

0: गजब घूंघट तो जरा ओढ़ो।
1: वंदे मातरम। ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लेखनी से अवतरित दिव्य रचना जो बनी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तेजोमय प्रेरणा। स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर सुनिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अनुवादों पर आधारित वंदे मातरम एक जय घोष, इस रूपक श्रृंखला की विशेष कड़ी।

0: शनिवार 15 अगस्त 2026 को दिन में 11 बजे केवल विविध भारती पर। विशेष मेगा एपिसोड वंदे मातरम, एक जय घोष।
1: सोनाली, अब एक वक्त हो चला है अंतराल का,
2: तो लेते हैं ब्रेक।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है सखी सहेली। और एक मैसेज को पढ़ के ना दीपा मैं थोड़ी भावुक हो गई।
1: कितना
0: सुंदर मैसेज है, हमारे एक साथी लिखते हैं कि मेरी माताजी के देहांत को 19 साल हो गए हैं, पर आज भी मेरी माताजी के नाम से हर साल एक बार एक साड़ी खरीदता हूँ और यथा उचित प्रसंग नहीं तो उनके जन्म दिवस पर किसी जरूरतमंद बुजुर्ग महिला को ये साड़ी दान में दे देता हूँ। निजी तौर पर जब भी मैं अकेला महसूस करता हूँ तब मेरी माताजी की साड़ी को ओढ़ के सो जाता हूँ, तो मुझे मेरी माताजी की कमी महसूस नहीं होती। इस विषय को आज चर्चा में लाने के लिए आप सभी और विविध भारती का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ।
1: जी, ये कुछ इसी तरह की भावनाएं शायद हमारी बहुत सारी सखियों की भी होती होगी। हम जो हमारे प्रिय हैं, जो हमसे दूर चले जाते हैं, उनकी कोई पहनी हुई चीज सदा हमारे पास रहती, तो एक धरोहर के रूप में
0: हमारे साथ रहती है
1: और याद उनकी ताजा बनी रहती है। तो आपने भी ये अपना अनुभव शेयर किया तो उसके लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं।
0: और भाई देखिए ना, कभी कभी दीपा ऐसा होता है ना कि बहुत सारी साड़ियों के सेल भी लगे होते हैं, उसकी भी सूचना हमें अखबारों से मिल जाती है
1: जी,
0: कि फला फला कंपनी की जो साड़ियां हैं वो बहुत सस्ती और बहुत अच्छी होती है, तो उसका हमारे शहर में सेल लग गया, उसमें 50% ऑफ है, तो कभी 25% है, और खासकर बारिश के मौसम में बहुत साड़ियों के सेल लगते हैं।
1: सोनाली, आपका इशारा समझ गए हम, मान गए भाई कि अखबार रोज पढ़ना बेहद जरूरी है।
0: और उसमें सिर्फ सिर्फ साड़ी के बारे में नहीं पढ़ना है, नहीं तो ऐसा है कि उस पन्ना खोल लिया, देख लिया कि कहाँ सेल लगा है।
1: हम महिलाएं यही करती है ना, सबसे पहले उस पन्ने पे जाती है जहाँ पे एग्जीबिशन कहाँ चल रही है, सेल कहाँ चल रही है, सबसे पहले हम वो पढ़ते हैं और फिर घर में कहते हैं भाई शनिवार रविवार को हम तो बिल्कुल व्यस्त रहने वाले हैं।
0: नहीं, यानी रंग बिरंगा जो पन्ना होता है ना वो महिलाओं को ज्यादा भाता है। पर ऐसे नहीं है, गृहिणियों को भी सहारा पेपर सारा अखबार रोज पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, अखबारों से हमें बहुत बहुत नए नए विषयों की जानकारी मिलती है और बहुत कई बार हम सचेत भी हो जाते हैं दीपा, कि अगर देखिए ना वो जो दुर्घटना घटी, अगर उसमें ऐसा होता, यानी कोई मेन होल में गिर गया है, मोबाइल में लगा हुआ था लड़का बच्चा जो था, तो हमें बाहर जो निकलते वक्त मोबाइल ऐसे मोबाइल में झुककर देखते नहीं जाना है, हमें रास्ते से चलते वक्त सावधानी से जाना है। ये मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे कई सारे ऐसे वाकया होते हैं कि जो हम अखबारों के कारण हम सचेत हो जाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और कहीं हमारे शहर के किसी और क्षेत्र में जहाँ बहुत दूर है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हमें सब कुछ पता चलता रहता है। यहाँ तक कि देश विदेश की सारी मुख्य जानकारियां भी हम प्राप्त कर पाते हैं, जो कि ऐसा नहीं है कि महिलाएं हैं तो हमें कुछ बाहर के बारे में ना पता चले, ये जरूरी नहीं है। हर चीज के लिए सतर्क और सचेत रहना आज के जमाने में सबके लिए, उम्र कोई भी हो, बेहद जरूरी है।
0: वैसे दीपा, अखबार केवल कागज के कुछ पन्नों का संग्रह नहीं होता है, बल्कि वर्तमान समय का सजीव दस्तावेज होता है। इसमें मौजूद हर तरह का समाचार हमें समाज, देश और विश्व स्तर से जोड़कर रखता है। और जो लोग रोज अखबार पढ़ते हैं वे केवल घटनाओं से परिचित नहीं होते, बल्कि बदलते समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना भी सीख जाते हैं। और ऐसा होता है ना कि सुबह की चाय की चुस्कियों के साथ जब हम अखबार के पन्ने खोलते हैं तब मानो ज्ञान की एक नई खिड़की खुल जाती है। कहीं विज्ञान की नई उड़ान है, कहीं खेल जगत की नई विजय गाथा है, कहीं संस्कृति की सुगंध है, तो कहीं समाज की चुनौतियों का आईना हमें नजर आता है।
1: ये इसी बात पर देखो एक संदेश आया है, ये संदेश में हमारे श्रोता भाई कहते हैं कि मैं सुबह सुबह हमेशा चाय पीते पीते अखबार पढ़ता हूँ और दोपहर में आराम से क्रॉसवर्ड, जो उसमें सेक्शन होता है जिसमें शब्द खाना पूर्ति करना होता है, वो करता हूँ। इससे मेरे दिन की शुरुआत अच्छी होती है और मूड भी फ्रेश होता है।
0: ये बहुत अच्छी आदत है, ये ना खासकर बुजुर्गों को भी ये करना चाहिए। जो क्रॉसवर्ड होते हैं ना, उससे हमारा दिमाग तेज रहता है, उससे हमारा दिमाग चलता है।

0: हर रोज हिंदी की हेडलाइन के प्रेयर में पढ़ने के लिए बोला जाता था। मैट्रिक में स्कूल में टीचर ने बताया इंग्लिश पेपर पढ़ो, इससे इंग्लिश अच्छी होती है। बस वो आदत दिनचर्या में शामिल हो गई है। बहुत लोग सुबह की चाय के साथ अखबार देखते हैं, जो एक बेहतरीन दिनचर्या है जो ना सिर्फ देश दुनिया की खबरों से जोड़ता है बल्कि मानसिक विकास में भी मदद करता है।
1: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अखबार जो भाषा का मूक शिक्षक है, इसकी शब्द संपदा हमारी अभिव्यक्ति को निखारती है, विचारों को परिपक्व बनाती है और दृष्टिकोण को व्यापक भी करती है। और संपदीय लेख जो अगर पढ़ते हैं तो उससे हम तर्क करना सीखते हैं, जबकि प्रेरणादायक समाचार जीवन में आशा और उत्साह का संचार करते हैं। और देखो ना सोनाली, आज सोशल मीडिया के तेज बहाव में सूचनाएं क्षण भर में आती जाती रहती हैं, पर लेकिन अखबार सत्य, संतुलन और विश्वसनीयता का दीपक बनकर हमारे विश्वास को प्रकाशित करता है।
0: एक हमारी सखी ने भी लिखा है कि मुझे संपादकीय पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, इसमें तार्किक और गंभीर सोच विकसित होती है। स्क्रीन पर स्क्रॉल करने के बजाय प्रिंट या अखबार पढ़ने से ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ जाती है। वर्षों से सुबह का अखबार निश्चित और शांत होकर पढ़ना चाहती हूँ। सुबह का काम निपटाकर 9 बजे के बाद नाश्ता करने के बाद मैं पेपर पढ़ती हूँ और ज्ञानवर्धन के साथ मेरा बहुत समय अच्छा व्यतीत होता है। किसी कारणवश अगर दिन में पेपर छूट जाए तब भी मुझे समय मिलता है तो रात में मैं पेपर जरूर पढ़ती हूँ।
1: बिल्कुल, और ये संपादकीय लेख जो होती है, संपादकीय लेख जो है, इसे पढ़ना बेहद जरूरी है बच्चों को भी, क्योंकि अगर आप किसी भी तरीके की प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव और मतलब पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, तो इसमें ये एडिटोरियल सेक्शन आपको बहुत काम करता है, बहुत मदद करता है जानकारी हासिल करने के लिए। और कहीं पर कुछ ऐसा सेक्शन आता है कि आपको ऐसे या निबंध कहीं पे लिखना है, तो ये खंड आपको आसानी से उसको पार करने में मदद करता है।
0: और आप क्या करना है,
1: हमें तो गीत सुनना है।
0: सुनते हैं गीत।

0: तो भाई अखबारों से यारी करनी है, और थोड़ा ये मोबाइल में भी बैठना जरूरी है, लेकिन वो
1: मोबाइल से दूरी
0: स्क्रोलिंग से ना
1: करना
0: उतनी नहीं, अगर ज्ञान की जरूरत उसके द्वारा लेनी है तो वो भी लेना जरूरी है। लेकिन एक देखिए संदेश यहाँ पर आया है, हमारे श्रोता ने लिखा है कि अखबार पढ़ना, ये सबसे पहले स्कूल में हर रोज हिंदी की हेडलाइन प्रेयर में पढ़ने के लिए बोला जाता था, और मैट्रिक में स्कूल में टीचर ने बताया था कि इंग्लिश पेपर पढ़ो, तो इंग्लिश इससे हमारी अच्छी हो गई। उसके अलावा एक और संदेश आया है, ये कहता है कि स्कूल में किताबें पढ़ने का शौक हुआ और स्कूल की लाइब्रेरी के कारण, उसके बाद बाहर की किताबें कुछ चुनिंदा लेखकों का पता चला, उसको पढ़ा, फिर अखबार थाम लिया, जो अब तक साथ है।
1: एक साथ ही लिखते हैं, अखबार पढ़ना ये ऐसी आदत है, जिस दिन अखबार की छुट्टी होती है उस दिन बहुत खालीपन लगता है, वो दिन अधूरा लगता है। जो समय अखबार पढ़ने का होता है समय कटता नहीं। मेरा समय दोपहर का है अखबार पढ़ने का, जब काम से फ्री होकर बैठती हूँ तो अखबार पढ़ती हूँ, और इसी समय सखी सहेली कार्यक्रम आता है तो उसको भी सुनते हुए अखबार पढ़ते हुए। अखबार हम जो पढ़ते हैं हमको वही अखबार अच्छा लगता है, जिस दिन गलती से कोई दूसरा डाल जाए तो पढ़ लेते हैं तो मजा नहीं आता है उस अखबार। मैंने अपने बच्चों के लिए अंग्रेजी अखबार भी शुरू किया था, दोनों बस स्पोर्ट की खबर पढ़ लेते थे बस, बाकी कुछ नहीं। अखबार पढ़ने की आदत सभी को होना चाहिए, जिससे शहर देश विदेश के समाचार मिलते हैं, जिससे हमारा ज्ञान बढ़ता है।
0: बिल्कुल, और ज्ञान बढ़ाने के लिए मेहनत करना जरूरी है ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सकें, और यही हमारा आज का शब्द भी है। तो बहुत सारे विचार आए हैं, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मेहनत सफलता की कुंजी है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, कठिन श्रम के बिना तो कुछ भी नहीं मिलता। किसी लक्ष्य को पाने या काम को पूरा करने के लिए किया जाने वाला शारीरिक या मानसिक प्रयास, इसे लोग पुरुषार्थ या श्रम भी कहते हैं, जो सफलता की तरक्की की नींव है। मजदूरी, खेलकूद या खेती जैसे काम जिसमें शरीर की ताकत लगती है, मानसिक श्रम पढ़ाई योजना बनाना या बौद्धिक कार्य जिसमें दिमाग का उपयोग होता है।
1: एक
0: और
1: साथी कहते हैं
0: जी
1: ये पढ़ना चाह रहे हैं।
0: बस इसमें एक बात और इन्होंने कही है कि इंसान हर कठिनाई का सामना करना सीखता है, मेहनत से व्यक्तित्व का विकास और मजबूती भी आती है।
1: एक कहते हैं कि कहते हैं मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, मेहनत वो सुनहरी कुंजी है जो भाग्य के बंद कपाट को खोलती है, मेहनत ही सफलता का रहस्य है। यानी इन्होंने पूरा जीवन का सार ही लिख दिया इस छोटे से संदेश में।
0: सही बात है। एक संदेश और ये कह रहा है कि मेहनत हमारा जीवन, मेहनत हमारा नारा, मेहनत में जगमगाता है तकदीर का सितारा। इतिहास गवाह है कि मेहनत हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, बिना मेहनत जीवन में सफलता नहीं, मेहनत सफलता की ऊंचाइयों तक हमें पहुंचने में संभव कर देता है हमारा रास्ता।
1: एक सखी ने लिखा है, हमारी दोनों सखियां मेहनत करके इतने सुंदर और अच्छे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करती है, फिर उन्हें सजाकर प्रस्तुत करती है, हम सभी मिलकर सुनते हैं, उनके बारे में दो शब्द कहते हैं, अंत में हम और आप दोनों ही खुश होते हैं। मेहनत करने के बाद जो मिलता है उसकी खुशी का कोई वर्णन नहीं कर सकता, इसलिए मेहनत तो जरूरी करनी चाहिए, कभी कभी परिणाम देर से मिलता है पर मिलता जरूर है।
0: बिल्कुल सही कहा,
1: और
0: और
1: धन्यवाद कहते हैं।
0: बिल्कुल धन्यवाद उन्हें। और देखिए मेहनत सिर्फ सखियां नहीं, आप भी उतनी ही करते हैं,
1: कितने
0: आप
1: सुंदर
0: किस
1: सुंदर
0: इतने
1: मैसेज
0: सुंदर
1: लिखते
0: सुन
1: हैं।
0: बिल्कुल कभी कभी तो ऐसा लगता है इस मैसेज को लें, किस मैसेज को छोड़ें, ये भी असमंजसता हमारे सामने आ जाती है। और मेहनत के बगैर तो कहीं कोई सुंदरता आ ही नहीं सकती, जैसे कि इस गाने में ये सुंदरता है।

0: दीपा
1: जी
0: हमारे इतने सारे श्रोताओं ने सखियों ने मेहनत पर भर भर के कमेंट्स लिखे हैं। एक साथ ही लिखते हैं कि मेहनत सफलता की पहली सीढ़ी है, मेहनत के बिना कोई भी सपना अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। किसान तपती धूप में खेत में पसीना बहाता है तभी धरती सोना उगलती है। विद्यार्थी दिन रात पढ़ाई करता है तभी सफलता उसके कदम चूमती है। कलाकार बार बार अभ्यास करता है तभी उसकी कला में निखार आता है। यानी सफलता अचानक नहीं मिलती, उसके पीछे अनगिनत छोटे छोटे प्रयास छिपे होते हैं। याद रखिए, किस्मत का रास्ता दिखा सकती है, अवसर दरवाजा खोल सकता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का काम मेहनत ही करती है।
1: बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर बात। और इसी तरह एक और संदेश आया है, ये कहते हैं कि कभी कभी हम मन में कुछ बातें ठान रहते हैं और कि अमुक काम करेंगे, पर सिर्फ मन में ही सोचते ही रहते हैं और उस कार्य को करते ही नहीं। कार्य सिर्फ सपना बनकर रह जाता है, यानी मेहनत नहीं करने से कार्य सिद्ध नहीं होता है। संस्कृत में एक श्लोक है, उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि नाम मनोरथे, यानी कि भाई तभी कोई भी काम पूरा होगा जब आप उसको सिद्ध करने की कोशिश करेंगे।
0: और एक साथी कहते हैं कि बिना मेहनत के कोई भी कार्य संभव नहीं है, और इस कड़ी मेहनत से जो प्राप्त होता है उसका आनंद ही कुछ अलग होता है। परिश्रम से मिली सफलता में जो सुकून है वे कहीं और नहीं है। बेशक सफलता देर से मिले पर निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मकान बनाने से ज्यादा समय महल बनाने में लगता है।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक और संदेश है, ये कहते हैं कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, मेहनत वो सुनहरी कुंजी है जो भाग्य के बंद कबाड़ को खोलती है, मेहनत ही सफलता का रहस्य है।
0: और दीपा, जब हम कोई व्यंजन बनाते हैं तब भी हमें थोड़ी मेहनत करना पड़ता है।
1: बात तो बिल्कुल सही कही,
0: क्योंकि ऐसा होता है ना कि बोलते हैं कि सिर्फ ये तो 2 मिनट में बन जाएगा। हाँ, बनने में भले ही उसे 2 या 4 या 5 मिनट लगते हैं, पर उसके पीछे जो तैयारी होती है ना, उसमें 1 घंटा चाहिए। कि उसमें जब हमें प्याज काटना होता है, मिर्ची काटना पड़ता है, फिर अगर कुछ हरी धनिया है तो उसे साफ करना पड़ता है, धोना पड़ता है, फिर उसके बाद में फिर बर्तन कौन से, सब चीज के जिस चीज में बनाना है हमें वो बर्तन अलग अलग चुनने पड़ते हैं, तो उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। यानी मेहनत के सिवा हमारा व्यंजन भी नहीं बन सकता।
1: बिल्कुल सही कहा भाई, मेहनत हम करते चलेंगे लेकिन साथ में कैसे बनाना है वो भी सीखते चलेंगे। तो ओट्स की एक रेसिपी आई है सोनाली, ये इसमें सामग्री दिया है, ओट्स को लेना है आधा कप, पानी या दूध ले

0: सकते हैं आप 1 ही से 1.5 कप तक। सब्जियां लेनी है, प्याज, टमाटर, गाजर या मटर बारीक कटी हुई, आपके पसंद की और भी सब्जियां आप बढ़ा सकते हैं। तड़के और मसाले के लिए घी या तेल ले लें, जीरा, हल्दी, नमक और लाल मिर्च। बनाने की विधि है कि कढ़ाई में घी या तेल गरम करें, जीरा और प्याज डालकर हल्का भूने, बारीक कटी सब्जियां और टमाटर भी डालें, हल्दी, नमक और मसाले डालकर इसको मिलाएं, ओट्स डालकर 1 मिनट तक और भूने। अब पानी या दूध डालकर उबले इसमें उबाल आने दें, 3 से 4 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं। ये थोड़ा सा गाढ़ा होता चलता चला जाएगा, ये ओट की तासीर, आप जितना जितना पानी डालेंगे वो सोखता चला जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए एक तरह की खिचड़ी की तरह ही हो गई। अब इसमें ओट्स के साथ आप चाहें तो थोड़ा हुआ भीगा हुआ इसी रेसिपी में भीगी हुई दाल डाल सकते हैं, जैसे मोगर की दाल या मूंग की दाल की, जो छिलके वाली मूंग की दाल है वो भी डाल सकते हैं। तो ये अपने आप में एक पूर्ण आहार बन जाएगा।
1: और एक साथी ने लिखा है कि ओट्स को कढ़ाई में भून ले, उसे ठंडा कर ले, उस भुने हुए चने के साथ उसे पीस ले। आपके लिए स्वादिष्ट पौष्टिक सत्तू आटा तैयार है, और इसी आटे से आप नमकीन पराठे और रोटी बना सकते हैं। ये सुपाच्य भी है और खाने में बहुत लजीज लगती है। देखिए ना, ओट्स के बहुत सारे व्यंजन बनाए, ओट्स का चीला बनाया जा सकता है। ओट्स को सूखा ही हमें पीस लेना है, उसमें फिर आप थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा चावल का आटा मिला दे, उसमें अदरक लहसुन मिर्ची की पेस्ट डाल दे, और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उसका घोल बना के, और उसके चीले बना सकते हैं। गरम गरम भी अच्छे लगते हैं। उसके बाद में इसी मिश्रण में अगर आप थोड़ा सा रवा डाल के, दही डाल के उसे थोड़ी देर के लिए ढककर रख दे, और जब बनाना हो तब तो उसमें फ्रूट सॉल्ट डाल के उसका हम ढोकला भी बना सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो
0: और एक और संदेश देखिए, ये एक छोटी सी रेसिपी आई है सोनाली, कहते हैं कि ओट्स का चीला बनाने के लिए आप 1 कप ओट्स लें और 1 कप बेसन, दोनों मिक्स कर लें। इसमें लौकी, प्याज, टमाटर, हरी धनिया, आप चाहें तो गाजर वगैरह भी कीस के कद्दूकस करके डाल सकते हैं। घी लगाकर इसको चीले बनाएं और हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। और जब ये चीले बनाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा घर में बच्चों को कि आपने इन्हें ओट्स का चीला खिला दिया है ना।
1: नहीं, बहुत अच्छा लगता है ओट्स, और उसकी खीर भी बहुत अच्छी बनती है। कि घी में थोड़ा सा ओट्स को भून लिया और उसके बाद में उसमें दूध डाल दिया। अगर आप उसमें शक्कर नहीं डालना चाहते हैं तो उसमें खजूर है ना, खजूर को थोड़ा सा घी में ऐसा नरम करके और उसे मिक्सी में से चला के उसकी जो पेस्ट है, खजूर पेस्ट डाल के उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के दे सकते हैं। तो ये बुजुर्गों को भी दे सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। तो ऐसी पौष्टिक चीजें जब घर में बनती है ना, और जब घर उस खुशबू से महकता है, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते।
0: बिल्कुल सही। और ओट्स का सत्तू बनाना भी बताया है हमारे एक श्रोता ने। कहते हैं कि ओट्स को कढ़ाई में भून लें, उसे ठंडा कर लें, इसे भुने हुए चने के साथ पीस लें। आपके लिए स्वादिष्ट पौष्टिक सत्तू आटा तैयार है। इस आटे से आप नमकीन पराठे बनाइए या रोटी बनाइए, ये सुपाच्य भी है और खाने में बहुत लजीज है।
1: और अब क्या करना है?
0: देखिए क्या करते हैं।

0: दीपा हमारे एक साथी लिखते हैं कि साथे ओट्स में कुछ भी मिक्स नहीं होता, ये केवल जई ओट्स शुद्ध रूप होते हैं। हालांकि स्वाद और सेहत के लिए लोग इसमें दूध, फल और मसाले मिलाते हैं। मीठे ओट्स में मिलने वाली चीजें, उन्होंने कहा कि उसको पकाने भिगाने के लिए दूध या पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है, और उसमें केला, सेब, स्ट्रॉबेरी या आम, मेवे या बीज, बादाम, अखरोट, चिया सीड्स, कद्दू के बीज, या मीठेपन के लिए उसमें शहद, गुड़ या मेपल सिरप डाल दिया जा सकता है, और इस तरह से स्वादिष्ट ओट्स की रेसिपी बन सकती है।
1: तो आज तो बहुत सारे ओट्स बनाने के तरीके हमने भी सीख लिए हैं।
0: बहुत सारे सीखे, श्रोताओं से हम बहुत कुछ सीखते हैं दीपा।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखो, अब वक्त कहता है कि आज तो हमें लेना होगा विदा।
0: पहले श्रोताओं को धन्यवाद कह देते हैं, सारे श्रोताओं को दिल से धन्यवाद इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। और अब लेते हैं इजाजत, आप सभी को सोनाली पाठक
1: और दीपा माहेश्वरी का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। ये आकाशवाणी का हफलोंग केंद्र है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अभी आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी।
2: आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दें, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है।

0: इसकी जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
1: गृह मंत्री ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार नीट परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इतने गंभीर मुद्दे पर चर्चा संसदीय प्रक्रिया के अनुसार होनी चाहिए। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष को गृहमंत्री के किसी बयान में कोई दिलचस्पी नहीं है, उन्हें केवल जवाबदेही चाहिए। हंगामे के बीच लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। ये विधेयक विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगा। लोकसभा ने खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। दूसरे स्थगन के बाद दोपहर 3 बजे सदन की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 में और संशोधन करने के लिए विधेयक पेश किया गया। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सुसज्जित बनाना है। ये विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में सुबह कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। इस समय राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे के लगभग 89% आरक्षित टिकट ऑनलाइन बुक किए जा रहे हैं। श्री वैष्णव ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरक्षित और अनारक्षित टिकटों की डिजिटल बुकिंग को बढ़ावा देने के लिए रेलवे ने रेल वन ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से यात्री मोबाइल फोन से आरक्षित और अनारक्षित टिकट बुक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वे अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ें और रील्स तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचें। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया।
2: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
1: झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। विपक्ष के नेताओं ने भी प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को अपना समर्थन दिया है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का शुभारंभ करेंगे। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न लाइब्रेरियों को एक साथ जोड़ने के लिए विकसित किया गया है। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: श्रोताओं, हिंदी में समाचार आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है। अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
4: हाँ, मुझे मुंबई आना ही था, क्योंकि क्या हो रहा था, बैंगलोर में धीरे धीरे जो वहाँ की प्रादेशिक भाषा है कन्नड़ा, उसका संगीत बढ़ रहा था, जो कि बढ़ना ही चाहिए था। वहाँ कंपटीशन भी बढ़ रहा था, नए स्टेशन आ रहे थे, और मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब मुझे मुंबई चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं बैंगलोर में भी नेशनल प्रोग्रामिंग हैंडल करता था उस स्टेशन में, और यहाँ से मैं बैंगलोर से वॉइस करके उनको भेजता था।

0: वॉइस हिंदी में, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जगह शायद मुंबई है। तो हमारे स्टेशन में उस जमाने में लाफ्टर चैलेंज बड़ा चला हुआ था, तो रेडियो में भी एक ऐसा लाफ्टर चैलेंज का रेडियो वर्जन चल रहा था हमारे स्टेशन में, जिसके जज थे विनय पाठक। तो मैंने विनय पाठक का नंबर मेरे पास था, क्योंकि उनका मैं सैटरडे के सैटरडे रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया करता था। उसके अलावा जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था, और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस छिपका दी जाती थी, क्योंकि हिंदी सिनेमा मैं बेहतर तरीके से समझता था। तो इस बीच मुझे मन्ना दे साहब का एक पूरा 1.5 घंटे का कार्यक्रम प्रोड्यूस करने मिला, जिसमें मन्ना दे साहब खुद आए थे। तो वो मेरे लिए मेरा पहला जो कहना चाहिए सेलिब्रिटी मोमेंट था वो।
1: बिल्कुल।
0: हाँ, मन्ना दे साहब से मिलना, मधुशाला के सीडी पे उनसे साइन कराना, और प्रोग्राम के बाद जब मैं उनके साथ बैठा कुछ आधे घंटे, उनके साथ थोड़ी बात बात की, तो उन्होंने बोला यार ये सब सवाल तो अंदर करने चाहिए थे, अंदर वालों ने तो किया ही नहीं। तो उससे और मेरे कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा बूस्ट आ गया। उसके बाद मैं उनके साथ बराबर टच में बना रहा। मेरे ख्याल से 1 मई को उनका जन्मदिन होता है,
1: बिल्कुल
0: और
1: एक
0: हर
1: मई
0: एक
1: को
0: मई
1: होता
0: के
1: है,
0: 1 मई मैं उनको कॉल किया करता
1: क्या
0: था।
1: बात है, मैं भी
0: तो और मुझे लगता है कि उनके जैसा गायक ना कोई आया ना कोई आएगा। तो ये हुआ था। इसके अलावा जितनी भी फिल्में रिलीज होती थी या कोई कलाकार आ रहा होता था, तो मुझे वो जिम्मेदारी दे दी गई थी कि भाई तू इनका इंटरव्यू कर लिया कर, तुझे जो जो पूछना है पूछ लिया कर, और बाद में पैकेज करके हम लोग इसको चला लिया करेंगे स्टेशन में। तो मुझे एक बार आशा भोसले जी का इंटरव्यू करने मिला, और मैं बहुत एक्साइटेड था। मैंने आधे घंटे इंटरव्यू किया, और जो फोन कटा मैंने देखा, मैंने रिकॉर्ड बटन दबाना है मैं रिकॉर्ड बटन दबाना ही भूल गया था, और वो बड़ी खुश थी कि अरे तुम्हारी तो रिसर्च बड़ी अच्छी है। मैंने कहा मैंने ऑल इंडिया रेडियो सुन के ये रिसर्च आई है। तो फिर मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने मुझे थोड़ा सा प्यार से डांटा, फिर बोली अभी 10 मिनट, अभी आधे घंटे नहीं मिलेंगे। फिर वो दोबारा हमने रिकॉर्ड किया।
1: मुझे लगता है कि यहाँ एक गाने की गुंजाइश बनाई जाए, तो बोलिए कौन सा गाना होगा?
0: तो मन्ना दे साहब का मेरा सबसे प्रिय जो गीत है, मेरे ख्याल से सबका ही होगा, जब हम मन्ना दे साहब के बारे में सोचते हैं, तो तू प्यार का सागर है,
1: सीमा
0: सीमा,
1: फिल्म का
0: शंकर
1: गाना।
0: जयकिशन,
1: हाँ बिल्कुल जरूर।
0: शैलेंद्र
1: हाँ सुनते हैं ये गाना।
0: जी।

0: ये सब एडवेंचर चल रहे थे। इस बीच में मुझे ऐसा लगा कि मुझे बम्बई आ जाना चाहिए। बम्बई में एक टीवी चैनल था, अभी भी है, उसमें फिल्मों के स्पूफ चला करते थे, फुली फालतू,
1: बिल्कुल।
0: तो वो मुझे बहुत पसंद था। वो मैं रेडियो में कर रहा था, मेरे पास एक मिमिक्री आर्टिस्ट था, मैं था, हम दोनों मिमिक्री कर वर के कुछ एक
1: बना रहे
0: दस
1: थे।
0: बारह मिनट का प्रोग्राम बना लेते थे संडे के संडे। तो मुझे ऐसा लगा कि अब जो अगला कदम है वो यही है कि अब मैं वहां जाऊं, उस चैनल में जाऊं और मैं बोलूं मैं ये करता हूं। तो मैंने मेरे सैंपल्स बनाए, वॉइस ओवर्स किए, ये वो करके पैकेज करके उनको भेजा। मुझे वहां से बुलावा भी आ गया, तो मैं यहाँ आया। यहाँ आया तो जिसने मुझे बुलावा भेजा था उसने नौकरी छोड़ दी थी। तो मैं यहाँ आया और मैं भटकता रहा 3 दिन बम्बई में। अब विनय पाठक को मैंने कॉल किया, विनय जी ने मुझे बुलाया। वो लोग द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो किया करते थे, तो उन्होंने बोला यहाँ आओ, राइटर्स से मिलो। वरुण ग्रोवर वो लिखा करते थे,
1: बिल्कुल उस जमाने।
0: राहुल और वरुण की जोड़ी हुआ करती थी उस टाइम पे। राजेश देवराज हेड राइटर होते थे, तो अब राजेश देवराज बहुत अच्छे दोस्त मित्र हैं, लेकिन उस समय उनसे मिलना नहीं हो पाया था मेरा। मैंने सिर्फ सुना था कोई देवी नाम के एक लेखक हैं जिनसे तुमको मिलाना है, लेकिन वो है नहीं यहाँ। मेरा बड़ा एक रहस्यमय ऐसा किरदार बन गया था मेरे दिमाग में, देवी कौन होंगे। बाद में मुझे पता चला राजेश से मिलने के बाद कि यही है देवी। तो और विनय सर बहुत सपोर्टिव थे, तो मतलब जरा भी मुझे दिक्कत नहीं आई। उन्होंने बुलाया, मैं स्टूडियो गया, मेरी लाइफ का मैंने पहला शूट देखा। कीकू शारदा थे वहां पे, बहुत सारे लोग थे, और मुझे लगा यार ये जगह है जहां मुझे आना है, ये चीज मुझे करनी है। वो कभी हो नहीं पाया, कॉमेडी शो में कभी नहीं कर पाया विनय सर के साथ में। हम मिलते रहे, दो तीन चार बार मिले उसके बाद। अभी तो मुझे लगता है उनसे मिले मुझे 20 साल हो गए। तो वो सब करके मैं यहाँ से गया और मुझे लगा कि मुझे बम्बई चल पड़ना चाहिए, बैग पैक कर लेने चाहिए बैंगलोर से। तो बैग पैक किए, यहाँ एक दूसरा रेडियो स्टेशन था जहाँ से मुझे ऑफर थी और ठीक ठाक ऑफर थी, तो मैं वो छोड़ के यहाँ आ गया। और मैंने कहा मैं रेडियो करता हूँ, तो रेडियो में फिर बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें हुई। सुनील ग्रोवर के साथ मैंने बहुत काम किया उस समय में, लल्लन नाम का एक हमारा शो हुआ करता था। वो जो सारी चीज़ें मैं टीवी में करना चाहता था वो मैं फिर रेडियो में करने लगा, और मेरा पेट भर गया उस चीज़ से 4-5 महीने में। मैंने कहा अगर यही करना है तो
1: क्या
0: मजा नहीं
1: मतलब
0: आएगा।
1: है?
0: हाँ, ये वही वही सर्कल वाली बात हो गई ना कि उसी सर्कल में आप फिर से भागने लग गए, तो अब इससे ज्यादा क्या होगा। तो फिर ऐसा लगा कि मुझे एनिमेशन करने का बहुत मन था, और किसी के थ्रू, एक जान पहचान के थ्रू मैं वहां पहुंचा। मुझे करीब 8-9 घंटे बाहर बिठा के रखा गया स्टूडियो के, बिठा के नहीं रखा गया बोलना चाहिए उसको, वो लोग बिजी थे और मैं बिना खाए पिए मैं बैठा रहा बाहर। और फिर वो आए, वेंकटेश गायकवाड़ नाम था उनका, है अभी भी, वेंकटेश गायकवाड़ नाम है उनका। उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था
1: हाँ,
0: वेंकटेश में, वो
1: बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर।
0: बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर। तो वेंकटेश गायकवाड़ अपने आप में एक लेजेंड, लेकिन मुझे ही नहीं पता था। तो और वो जीनियस, मतलब मैड जीनियस जो बोलते हैं ना, मैड जीनियस थे वो। तो वो रैंडमली आए, बोले कुछ खाया तूने? मैंने कहा मैंने खाया है, तो सैंडविच खाते हैं चल। उन्होंने सैंडविच खाते खाते बात की, उन्होंने बोला तू क्या कर सकता है? तो मैंने कहा मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। तो वो मुंबई के साथ मेरा पहला साक्षात्कार। फिर उन्होंने बोला तू करना क्या चाहता है? मैंने कहा मैं फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ। फिर उन्होंने मुझे और गालियां दी। उन्होंने कहा फिल्म मेकर क्या, प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है? तो मैंने कहा मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ, मैं लिखना भी चाहता हूँ, और मौका मिला तो प्रोड्यूस भी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरा बहुत मजाक बनाया, उन्होंने बोला ये सब हम भी चाहते हैं, लेकिन हम
1: नौकरी कर रहे
0: नौकरी कर रहे हैं हम लोग,
1: हैं।
0: तू यहाँ क्या करने आया? अगर तेरा ये सपना है तो जा वहां पे बन किसी का थर्ड असिस्टेंट, उठा सबके जूते चप्पल, वहां से शुरू होती है जर्नी, हम तो ये करके आए हैं। उन्होंने काफी बड़े डायरेक्टर्स को असिस्ट किया हुआ था उस समय तक, तो ये करना पड़ेगा, ये रास्ता है। मैंने कहा ये तो नहीं हुआ मेरे से, क्योंकि

0: रेडियो में मैं बहुत अच्छा काम करके आ चुका था, कॉमिक्स में ठीक ठाक काम कर चुका था, तो दम्भ नहीं था, गर्व था अपने काम पर। तो ये भी था कि यार ये मैं पता नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। मतलब मैंने देखे किस तरीके से लोग असिस्टेंट डायरेक्टर्स के साथ बर्ताव करते हैं, मैंने कहा ये तो नहीं करूंगा मैं, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि लाख चमड़ी मोटी सही लेकिन इतनी मोटी अभी भी नहीं हुई है। और हम छोटे शहर से आते हैं तो हमारा गर्व का जो परसेंटेज है थोड़ा ज्यादा भी होता है। तो मैंने कहा ये तो नहीं करूंगा मैं, तो आप बताओ क्या करना है। तो उन्होंने कहा प्रोमो बनाना जानता है तू? तो मैंने कहा जानता तो नहीं लेकिन बना लूंगा मैं। तो उन्होंने एक एनिमे आता था उस समय में, उसका मुझे एक दो तीन एपिसोड दिए, उन्होंने कहा कि इसका प्रोमो बना के लिया। तो मुझे ना एडिटिंग आती थी ना कुछ आता था, मुझे साउंड आता था क्योंकि मैं रेडियो से था। तो मैंने सबसे पहले किया कि मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी, उसको मैंने अशोक कुमार की आवाज़ में खुद ही रिकॉर्ड किया, और फिर उसके ऊपर एक एडिटर के साथ बैठ के उसको एडिट लगाया एक रात में, और दूसरे दिन सुबह मैं पहुंच गया वापस। मैंने कहा ये प्रोमो हो गया, इतनी जल्दी? मैंने कहा मुझे आना है तो मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा, अगर मैं यहाँ नहीं आऊँगा तो मुझे रेडियो में फंसे रहना पड़ेगा। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा एक आवाज़ किसकी है? तो मैंने कहा मेरी है। उन्होंने कहा स्क्रिप्ट किसकी है? तो मैंने कहा मेरी है। अरे ठीक है, तू हायर हो गया। तो इस तरीके से मैं टीवी में आ गया। बहुत बहुत घिसाई हुई टीवी में भी, ऐसा नहीं है कि चीजें आसान थी, मगर ये था कि मजा था उस काम में, बहुत मजा था। और लोग सब हम लोग जैसे ही थे, सब पागल थे, सब यंग लड़के थे, और सबके दिमाग अलग अलग तरीके से चलते थे। किसी को म्यूजिक बहुत अच्छा समझता था, किसी को एडिट बहुत अच्छा समझता था, मैं थोड़ा बहुत वॉइस करता था, लिखता था, मुझे एडिट नहीं समझ में आता था। तो ये सब हम लोग एक दूसरे के पूरक हो गए, और वो किया मैंने, वो करीब 1-1.5 साल किया मैंने।
1: यहां एक गाना सुनते हैं।
0: जी बिल्कुल।

0: और जावेद जाफरी वाला शो कैसे आया?
1: वो तो बहुत बाद, वो तो इसके थोड़े बाद में है। तो वो उसकी भी बड़ी मजेदार सी कहानी है। तो ये करते करते क्या हुआ कि पूरी टीम बाहर चली गई और एक नया चैनल आया। इस नए चैनल में अलग तरीके की प्रोग्रामिंग थी, क्योंकि मैं प्रोमोस करता था और मैं बहुत आलसी हो चुका था तब तक, तो मैं प्रोमोस बनाना बंद कर चुका था। मैं लिखता था सिर्फ, मैं प्रोमोस लिख देता था और जाके सिर्फ एडिट चेक कर लेता था जो मेरे दोस्त बना रहे होते थे उसका। तो इन्होंने मुझे बोला यहाँ एडिट कर, यहाँ भी आ जा प्रोमो करने के लिए। तो मैं वहाँ प्रोमो करने के लिए गया। वहाँ बातचीत चल रही थी, एक वो लोग एक थ्रिलर बना रहे थे, पीरियड थ्रिलर, दरिबा डायरीज। तो दरिबा डायरीज का ये हो रहा था कि आइडिया बहुत सॉलिड था लेकिन उसकी स्क्रिप्ट उनको वैसी नहीं मिल रही थी। तो वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि अरे कोई थ्रिलर लिखने वाला मिल जाए तो। तो मेरे कान खड़े हो गए, मैंने कहा मैं लिखता हूँ, मैं लिख के दूँ। तब तो मैंने लिखा नहीं था थ्रिलर कोई भी।
0: ऐसी बोल दिया।
1: हाँ मतलब क्या होगा, रिजेक्ट करेंगे, उससे ज़्यादा क्या है, ऑडिशन देना है ना। तो उन्होंने कहा तू लिखेगा, तू तो बच्चों का शोज वगैरह करता है, तू तो बच्चों के चैनल से आ रहा है। तो मैंने कहा उससे आपको क्या मतलब है, मैं लिख के देता हूँ, नहीं पसंद आए तो मत यूज़ कीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे शर्लक होम्स बहुत पसंद है, मुझे पीरियड सेटिंग बहुत पसंद है, दरिबा मुझे समझ में आता है। तो मैंने एपिसोड नंबर 16 लिखा उसका, जो उसका पायलट बना बाद में। हाँ उनको इतना पसंद आया कि उसमें कोई नोट्स नहीं था। अभी भी मैंने वो डॉक्यूमेंट मेरे पास रखा है जिसमें लिखा है कि दिस इज हाउ स्क्रीन प्ले शुड बी रिटन।
0: वाह
1: ये
0: वाह।
1: नोट के साथ मेरे पास वो वापस आया। वो एक्चुअली आना नहीं चाहिए था मेरे पास वापस, वो कोई बीच में एग्जीक्यूटिव था जिसने बिना पढ़े फॉरवर्ड कर दिया ये सोच के कि इसमें नोट्स होंगे। और मैंने कहा यार इसमें तारीफ आ गई है गलती से। तो अब उसके बाद उसके जो प्रोड्यूसर्स थे उनका ये था कि तू और लिख ले इसमें। तो मैंने 3 एपिसोड्स लिखे, 2 एपिसोड किसी और के लिखे हुए डॉक्टर किए, किसी एपिसोड में डायलॉग्स लिखे। तो उनको मेरा लिखा हुआ काम पसंद आने लग गया जो मैं शो के लिए कर रहा था। तो मुझसे

0: गया कि तुम कुछ शो पिच करना चाहोगे क्या हमको। तो मेरे पास एक शो था जो मैं, वो काफ़ी बड़ा शो था, वो या तो एनिमेशन होता या कॉमिक्स होता, लेकिन इस पर्टिकुलर चैनल में बड़े शोज़ बन रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे पास दो शोज़ हैं, मैं आता हूँ आपको पिच करता हूँ। और तकदीर ऐसी थी कि मैंने जो पहला शो पिच किया, हम एंटर कर रहे थे स्टूडियो में, मीटिंग रूम में, 20 सेकंड में शो चैनल ने खरीद लिया मेरे से। 20 सेकंड
1: वाह वाह
0: मैं
1: वाह।
0: अंदर भी नहीं पहुंचा था, मैं बैठा भी नहीं था। उन्होंने कहा हम लोग ये कर रहे हैं, दूसरा सुना भी मत, हम यही करते हैं। तो ये मेरे लिए बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं तो अभी सोचे चल रहा था कि 3 महीने तो जद्दोजहद में गुजरने वाले हैं, ये सारा शॉर्टकट हो गया एकदम से।
1: बिल्कुल।
0: तो मुझसे पूछा गया कि एक्टर्स कौन रहेंगे इसमें, तो मैंने एक्टर्स के नाम दिए कि ये नसीर साहब कर सकते हैं। विलन के लिए मेरे दिमाग में हमेशा जावेद जाफरी का नाम था, तो वो जावेद भाई का मैंने नाम लिया। कि तो उन्होंने बोला कि जावेद इज डूइंग अ शो विथ अस, हमारे साथ एक शो कर रहे हैं जावेद भाई, लेकिन हमें लगता है कि इसको थोड़ा एडिट की जरूरत है, तू देखेगा क्या। तो इतना कॉन्फिडेंस उनको मेरे पे आ गया था। एक तो उनको ये पता था कि मैं रेडियो से आ रहा हूँ, मुझे सिनेमा समझ में आता है, मुझे पुराने फिल्म और पुराने गानों की समझ है, ये सब उनको पता था। तो मुझे उनका एक एपिसोड दिखाया गया, डिस्को डांसर का एपिसोड था।
1: बिल्कुल, वो सिनेमा की बातें कर रहे थे, प्रॉपर वही शो की बात हो रही है।
0: वही शो की बात हो रही है। तो डिस्को डांसर का एपिसोड था जो मैंने देखा, जो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मुझे जावेद भाई के दो शोज, एक शो उनका हुआ करता था फ्लैशबैक और एक काउंटडाउन शो हुआ करता था, ये दो मैं देख के बड़ा हुआ था। मैं ऐसा कुछ करना चाहता था जो मैं रेडियो में कर रहा था, और
1: राइट।
0: अचानक मेरे सामने ऐसे थाली में सजा के एक शो आता है और बोलते हैं ये जावेद जाफरी कर रहे हैं, तुम क्या करना चाहोगे इसमें। तो फिर तो मैं लालची हूँ, मैं सब करना चाहता था, मैं लिखूंगा भी, मैं डायरेक्ट भी करूंगा, मैं एडिट पे भी बैठूंगा, और नसीब से वो चीज़ मेरे प्लेट में आके गिर गई। तो मैं जावेद भाई को मिला जाके, उनको लगा ये नया लड़का है, इसको क्या ही पता होगा। तो उन्होंने कुछ बहुत ऑब्स्क्योर फिल्मों के रेफरेंस के साथ में मेरे साथ डिस्कशन शुरू किया। तो उसमें एक फिल्म है जिसका नाम है फिल्म ही फिल्म।
1: बिल्कुल
0: हाँ,
1: बिल्कुल।
0: उन्होंने ऐसे बात शुरू की कि राज कपूर की एक फिल्म है जिसमें एक डॉग है जो राज कपूर से बात करता है। मैंने कहा वो राज कपूर की फिल्म नहीं है, वो एक्चुअली फिल्म ही फिल्म नाम की फिल्म है जिसमें मोन्टाजेस हैं अनमेड फिल्मों के
1: राइट
0: फुटेज
1: राइट।
0: लेके। तो उन्होंने बोला तुमको पता है, तो मैंने कहा मुझे पता है, मैंने देखी है फिल्म। ऐसे दो तीन बहुत भयानक अंदरूनी फिल्मों की उन्होंने बात की, वहां हमारा आइस ब्रेक हो गया, वहां उनको लगा कि
1: आता है इसको।
0: इसको कुछ तो पता है, अगर सब पता नहीं भी है तो। उन्होंने भी फिर टेस्ट दिया मुझे, धर्मवीर मनमोहन देसाई की फिल्म है, तो उनको धर्मवीर का एपिसोड करना था। उन्होंने कहा इसका तू स्क्रिप्ट लेके आ, फिर देखते हैं। तो मैंने धर्मवीर देखी कुछ 6-7 बार, मुझे बहुत मजा आया, पहले भी देखी हुई थी। और मनमोहन देसाई साहब के बारे में मुझे पता था, मुझे बहुत सारी उस फिल्म के बारे में ट्रिविया वगैरह पता थे। तो मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी, उसके साथ में थोड़ा बहुत जो एनिमेटेड जोक्स हैं वो जोक्स डाले उसमें, कि कैसे टिकर आएगा, टिकर में जब उस समय में बाघों की गिनती कम हो गई थी, 1411 बचे थे इंडिया में, तो उसमें वो शेर को प्राण मार देते हैं, तो हमने ऐसे काउंटडाउन रखा था कि जितने शेर मरते हैं ना, हम 1411 से कम करते जाते हैं उनको ग्राफिक्स में।
1: अच्छा
0: तो
1: रहा ये
0: हाँ
1: पंच।
0: हाँ हाँ तो
1: हाँ
0: ये सब पंचेज उसमें मैंने भरे, और ये पंचेज थोड़े नए जमाने के थे ना, क्योंकि
1: बिल्कुल।
0: हाँ टिकर विकर नहीं थे पहले, वो जब फ्लैशबैक वगैरह आ रहे थे तो टिकर में ये सब मस्ती नहीं हो सकती थी, एनिमेशन नहीं हो सकता था हमने। तो मैंने उनको बताया ये ऐसे करेंगे, फिर ये होगा, फिर वो सोमराई सोड है तो हम उसका एक टेलीशॉपिंग नेटवर्क का ऐड बना देंगे, कि वो समुराई नहीं बोलते ना प्राण साहब, सुमराई कला बोलते हैं उसको। तो
1: हाँ
0: मैंने कहा
1: बिल्कुल।
0: सुमराई कला कैसे सीखें, रैपिड एक सुमराई कोर्स का एक हम ये बनाएंगे ऐड।
1: लर्निंग कोर्स।
0: हाँ, तो
1: हाँ
0: ऐसे करके मैंने उनको 5-6 गैग्स बताए कि ये गैग्स हम लोग हर ब्रेक के पहले करेंगे, तो
1: हाँ
0: एक फेक ऐड आएगा, उसके बाद असली ऐड शुरू
1: असली
0: होंगे।
1: ऐड आएगा।
0: हाँ, तो उनको आइडिया जम गया, वो आइडिया मेरे लिए लैंडमाइन साबित हुआ, क्योंकि वो आइडिया उनको इतना जम गया कि वो अब हर एपिसोड में हमें करना पड़ता था। तो वो किसी एपिसोड में मिलते हैं ब्रेक के बाद था ही नहीं हमारे शो में, 26 एपिसोड में, 26 एपिसोड, हर एपिसोड में 4 ब्रेक्स, तो 100 ऐसे एड्स
1: लिखने थे।
0: इन आउट इन आउट, तो 200 एड्स हमने बनाए। तो वहां से उस शो की शुरुआत हुई, फिर वो शो मैंने लिखा भी, को डायरेक्ट भी किया, एडिट भी किया, उसके साथ ग्राफिक्स भी किए, उसमें एनिमेशन भी किया, VFX भी किया, मतलब उस शो में शायद ही सेट में झाड़ू भी लगाई है। तो उस शो में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें मेरा हाथ नहीं लगा हो। और वो करते करते एक मतलब जावेद भाई के लिए मन में एक बहुत रिस्पेक्ट तो है ही, लेकिन वो एक रिस्पेक्ट के साथ साथ ना प्यार भी बहुत बढ़ा, क्योंकि
1: बिल्कुल।

0: उसको बतौर इंसान जाने का मौका मिला, और मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि वो भी मुझे लगता है कि मुझसे उतना ही प्यार करते हैं, छोटे भाई के जैसा मुझे हमेशा वो ट्रीट करते हैं। मेरे एक कॉल पे वो मेरे लिए कहीं भी खड़े हो जाते हैं आके। तो वो जो एक रिश्ता बना मेरे ख्याल से उस शो से बना, वो
1: बिल्कुल
0: शो बनता रहा 1.5 साल तक। तो 1.5 साल तक मेरे ख्याल से मैं मेरे घर में कम रहा हूँ और उस सेट पे ज़्यादा रहा हूँ। तो इस तरीके से ये शो बना, ये शो बनते बनते उस चैनल के साथ ये हुआ कि उनके बजट्स खत्म हो गए, तो जो मेरा शो उन्होंने खरीदा था वो तो बना नहीं। हाँ, मैंने उनसे वापस खरीदा, जो उन्होंने मुझे पैसे दिए थे मैंने उनको वापस किए और शो वापस खरीदा, क्योंकि मैं वो शो कहीं छोड़ना नहीं चाहता था। और मेरा ये भी मानना रहता है कि चीज़ों को लीगली लॉफुली ठीक से क्लीन करके उनको क्लोज करना चाहिए, उनको लटकने नहीं देना चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूँ हम जो राइटर्स हैं और जो क्रिएटर्स हैं वो अपनी क्रिएटिविटी में इतना उलझे होते हैं ना कि वो लीगैलिटीज को नहीं समझते हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: और कानूनी दांव
1: लूज
0: पे
1: एंड
0: वो
1: छूट जाते हैं जो
0: लूज
1: बाद
0: एंड्स
1: में
0: ऐसे
1: बहुत
0: ऐसे
1: भारी पड़
0: छूटते
1: जाते हैं।
0: हैं जो बाद में अपना मतलब आप दो लोगों के बीच ऐसी कड़वाहट है जिसका कोई सेंस बनता ही नहीं है। तो हमेशा ये अच्छा है कि आप जाएं और उस लूज एंड को बंद कर दें,
1: बिल्कुल
0: या तो आपके हाथ में हो या सामने वाले के हाथ में हो, मन में कड़वाहट ना रहे, रिश्ते बने रहें। तो मैंने वो चैनल के पास जाके उनसे वापस खरीदा, वो उनको पैसे वापस किए। जावेद भाई के साथ मैंने फिर दूसरा शो किया, तो दो शोज हमने किए। उसके बाद काफ़ी काम किया हमने साथ में। ये करते करते एनिमेशन तो चल ही रहा था, तो एनिमेशन में मैंने बहुत काम किया, बहुत इन द सेंस कि बहुत वो शोज किए जिन पे मुझे बहुत गर्व है। तो वो कुछ 3-4 साल का एक कालखंड है जिसमें मैं विविध भारती भी आता था वाणी कोर्स करने, और एक फैंटेसी शो था जिसपे मैं क्रिएटिव डायरेक्टर था, जावेद भाई का एक शो था और दो एनिमेटेड शोज थे। तो टाइम ही नहीं होता था, मैं घर पे ही नहीं होता था। और मतलब ये पर्सनल बात है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जो क्रिएटिव लोग हैं कई बार पागल हो जाते हैं, क्योंकि जो कुछ चाहिए वो सब कुछ मिल रहा होता है, उस चक्कर में अपने स्वास्थ्य का वो ध्यान नहीं रखते हैं। तो मुझे इस बीच स्ट्रेस लेवल्स, नींद बराबर नहीं हो रही है, आराम बराबर से नहीं हो रहा है, लगातार भाग दौड़ है, खाने का कोई ठिकाना नहीं है, समय का कोई ठिकाना नहीं है। मुझे बहुत कम उम्र में डायबिटीज हुई इस वजह से, क्योंकि काम इतना था, चीज़ें इतनी हो रही थी, चारों दिशाओं में आप भाग रहे थे कि अपने लिए समय नहीं था। और मुझे लगता है कि क्रिएटिव लोगों को अपने लिए समय निकालना चाहिए, अपने स्वास्थ्य को थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य है जो आपके साथ लंबे समय तक रहेगा। प्रोजेक्ट्स क्या हैं,
1: बिल्कुल
0: वो आते हैं और जाते हैं।
1: यस, सही बात है। बहुत देर से हम बात कर रहे हैं और गाने नहीं सुने। बातचीत को यहां पर रोकते हैं आलोक, और एक गाने की जगह बनाते हैं। चूंकि जावेद जाफरी का जिक्र चल रहा है, तो एक ही गाना है जो जावेद जाफरी की सबसे बड़ी पहचान है,
0: उनका पहला गाना
1: मेरी जंग का।
0: मेरी जंग का, मेरे ख्याल से उससे पहले डांसिंग सिंगिंग विलन कोई आया ही नहीं था मेरी जंग के पहले।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो बोल बेबी बोल
1: वो सुनते हैं।
0: जी।
1: वेलकम फ्रेंड टू द शो दैट नेवर एंड्स। Taking the chance to make you dance. You will move your feet and groove the beat. So then, which beat would you like? Dosto, kaun sa dance pasand karenge aap? Rumba?
2: No!
1: Samba?
2: No!
1: Rumba?
2: No!
1: Samba?
2: No!
1: Tequila?
2: No!
1: Tango?
2: No!
1: Charleston?
2: No!
1: Polka?
2: No!

0: रॉक एंड रोल,
1: बोल बोल बोल
0: रॉक एंड रोल,
1: मेरे संग टोल
0: रॉक एंड रोल,
1: अरे दुनिया है गोल
0: रॉक एंड रोल,
1: अरे बोल बेबी बोल, बोल बोल बेबी बोल, जरा मेरे संग टोल, देख दुनिया है गोल, दिल में जाने दे मुझको, दिल के सब दरवाजे खोल
2: बोल बाबा बोल
0: रॉक एंड रोल।

0: आलोक, ये तमाम चीजें चल रही थीं और जाहिर है कि उसके बाद काम आगे बढ़ा, तो आगे के कुछ महत्वपूर्ण कामों के बारे में बताइए।
1: शोले की 40वीं वर्षगांठ थी 2015 में। मुझे शोले के एनिमेटेड वर्जन पर काम करने मिला, जिसका मैं क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी था और राइटर भी था, और कुछ हिस्से मैंने डायरेक्ट भी किए थे। मेरे लिए ये बड़ा खुशी का सबब था। ये फिल्म मेरी सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है, और जब इसका प्रमोशन शुरू हुआ इस एनिमेटेड फिल्म का, तो कई जगहों पे सलीम साहब का एक छोटा सा कोट है, फिर जावेद साहब का एक छोटा सा कोट है, उसके आसपास मेरा एक छोटा सा कोट है,
0: वाह
1: तो वो
0: वाह।
1: मेरे लिए बड़ा, उसको बोलते हैं किक, तो मेरे लिए बड़ी किक थी वो देखना। ये करते करते मैंने ग्राफिक इंडिया ज्वाइन किया, जहाँ मुझे सबसे पहला जो शो मिला वो था अमिताभ बच्चन साहब का पहला एनिमेटेड शो,
0: वाह वाह।
1: जो मैंने डेवलप भी किया, लिखा भी, डायरेक्ट भी किया, प्रोड्यूस भी किया। वो करते करते मुझे अमित जी के साथ काफी समय बिताने का मौका मिला। मैंने करीब उनके साथ 3 से 4 महीने डबिंग की है, और जो चीज मुझे वहां से सीखने को मिली वो मैं अभी भी कोशिश करता हूँ कि मेरे साथ रहे, वो है समय का पाबंद होना।
0: जिसके लिए वो बहुत मशहूर है।
1: बहुत ज्यादा वो 6 बजे की रिकॉर्डिंग सुबह करते थे, 5:55 वो स्टूडियो पे होते थे, तो हम
0: गजब।
1: लोगों को भाग के समय पे

0: पहुंचना पड़ता था। अगर उन्होंने 6 बोला है तो 5 मिनट पहले ही पहुंचेंगे, वो 6:01 पे कभी नहीं आए
1: बिल्कुल
0: इतने महीनों में। दूसरी चीज है जो उनकी अपने काम के प्रति लगन है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग ये बात बार बार बोलते हैं, लेकिन मेरे लिए ये एक बिल्कुल अलग तरीके का अनुभव था कि मैं बच्चन साहब के सामने कुछ भी नहीं हूं, लेकिन अगर मैंने उनसे 7, 8, 9, 10 टेक भी मांगे हैं तो मुझे 10वां टेक तक मिला है।
1: बाबा
0: उन्होंने कभी सवाल नहीं किया कि क्यों मांग रहे हो। हाँ, ये बोला है कई बार कि मुझे एक बार बता दीजिए आपको कैसा चाहिए, तो मैं, आप मुझे बोल के बताइए, मैं एग्जैक्टली वैसा बोल के बता दूंगा। तीसरी चीज जो मैंने वहां सीखी वो ये थी कि जितने टेक्स फाइनल होते थे, अब तो डिजिटल है तो आप टेक्स को फाइनल मार्क कर लेते हैं, लेकिन बच्चन साहब एनालॉग स्क्रिप्ट के ऊपर में लगातार लिख रहे होते थे कौन सा टेक मैंने फाइनल बोला है, सिक्स टेक, सेकेंड टेक, फर्स्ट टेक।
1: बाबा
0: जब डबिंग खत्म हुई, उन्होंने मुझे पूरे स्क्रिप्ट का ऐसा पुलंदा दिया, उन्होंने कहा कि इसमें सारे टेक्स लिखे हुए हैं। मैंने कहा सर हम मार्क कर रहे थे। बोले फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना, गलती की गुंजाइश ना रहे।
1: गजब
0: तो उतना डिटेल रखना। चौथी चीज जो मुझे बहुत पसंद आई वो ये थी, पहली बार मुंबई में मेरे से किसी ने देवनागरी में स्क्रिप्ट मांगी थी।
1: वाह वाह वाह वाह। वरना
0: सब
1: हम
0: सब
1: अपने
0: सब
1: सुनने वालों
0: रोमन,
1: को
0: सब
1: बता
0: रोमन
1: देंगे,
0: में
1: सब लोग
0: पढ़ते हैं,
1: रोमन
0: सब
1: में
0: रोमन में
1: मानते।
0: पढ़ते हैं।
1: जी
0: बच्चन साहब ने देवनागरी में मांगी क्योंकि उन्होंने कहा कि जो मेरे संवाद हैं वो देवनागरी में होंगे तो मैं बेहतर तरीके से पढ़ के बेहतर तरीके से अदा कर सकता हूँ। वहाँ एक बहुत अच्छी चीज़ हमारे साथ ये हुई कि उन्होंने पहले 2 दिन जब डबिंग कर ली, उसके बाद वो बाहर निकलते निकलते उन्होंने मुझे बोला कि आप यहाँ के नहीं हैं। तो मैंने कहा हाँ मैं यहाँ का नहीं हूँ लेकिन बहुत सालों से यहीं हूँ। उन्होंने कहा नहीं आप यहाँ के नहीं हैं क्योंकि मुझे हिंदी में कोई भी वर्तनी में त्रुटि नहीं मिली है। तो
1: क्या
0: वो
1: बढ़िया
0: एक
1: बढ़िया।
0: बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था हमारी टीम के लिए, हमारे लिए। मेरी सिस्टर ने ये सारी देवनागरी में ये संवादों को देवनागरीकरण किया था रोमन से। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं अगर देखें तो, लेकिन ये इतनी छोटी चीजें हैं नहीं। तो ये सीखने की चीज थी। एक समय था जब मैं 11 बजे की मीटिंग के लिए घर से 11:30 बजे निकलता था लेकिन एक बार अमित जी के साथ ये पूरा शो करने के बाद मुझे नहीं लगता मैं कभी भी समय पे नहीं पहुंचने वाला काम कर रहा हूं। मैं आमतौर पे कोशिश करता हूं या तो मैं समय पे पहुंच जाऊं या मैं कम से कम 1 से 1.5 घंटे पहले लोगों को बता दूं कि मैं समय पे नहीं पहुंच पाऊंगा। पहले बहुत बहुत केयरलेस था मैं। तो ये चीजें आप देखें तो यही चीजें हैं जो इन लोगों को इतना बड़ा बनाती हैं। और मैं जैसा मैं कह रहा हूं कि ये सब क्लिशे है, सब हजार बार आपने ये चीजें सुनी होंगी, लेकिन मेरे लिए वो वन ऑन वन पर्सनल चीज है जो उनसे सीखने की थी।
1: ऑफ कोर्स।
0: तो वो किया हमने, अस्त्रा फोर्स नाम था उस शो का, साइंस फिक्शन था और बहुत अच्छा उस पे हमें रिस्पांस मिला। उसके बाद दूसरा शो जो हमने किया वो एस एस राजामौली के साथ किया, मतलब बाहुबली आई थी तब, पहली बाहुबली आई थी, वो दूसरी बना रहे थे। तो हमने उनको एक एनिमेटेड शो पिच किया कि दोनों बाहुबली के बीच में एक एनिमेटेड शो आ जाएगा तो लोगों के बीच में वो एक
1: बनी
0: उत्साह बना
1: रहेगी।
0: रहेगा माहिष्मति के बारे में। तो वो भी एक सीखने वाली बात थी कि हम जब पहुंचे तो राजामौली साहब ने हमको 3 घंटे का समय दिया था और वो 11 बजे आने वाले थे। वो 11:15 बजे आए, उन्होंने बाथरूम स्लीपर पहनी हुई थी, एक हल्की सी टी शर्ट पहनी हुई थी जो अगर आप देखें तो नितांत साधारण कपड़ों में स्लीपर पहन के वो अंदर आए, जिन्होंने 1.5 साल पहले देश की सबसे बड़ी हिट फिल्म डायरेक्ट की थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: पूरे धूल में सने हुए थे वो, क्योंकि वो कोई तो एक्शन सीन देखने गए हुए थे और वो पूरा सेट का जायजा लेकर आए थे। उनके पिताजी थे वहां पे और वो दोनों तेलुगु में बात करते थे, फिर राजामौली साहब हम लोगों को ट्रांसलेट करके बताते थे। फिर उनको पता चला कि मुझे कॉमिक्स बहुत पसंद है, तो उन्होंने बोला इधर आओ मैं तुमको कुछ दिखाता हूँ। तो उन्होंने अपने
1: वाह
0: फोन पे मुझे अमर चित्रकथा के कुछ पैनल्स दिखाए जिनमें से डायलॉग्स उन्होंने बाहुबली में इस्तेमाल किए थे और कुछ डायलॉग्स वो आगे बाहुबली में इस्तेमाल करने वाले थे। उसमें एक शिवाजी का डायलॉग है छत्रपति शिवाजी महाराज पे, जो अमर चित्रकथा है उसके 2 संवाद थे, ऐसे बहुत सारी चीजें। तो वो उस दिन मुझे पता चला कि राजामौली असल में बहुत बड़े कॉमिक बुक फैन है। तो वो एक जो चीज थी उस चीज ने हमारे बीच का जो आइस ब्रेकिंग था बहुत ईजी कर दिया। तो वही है जैसे अरेबियन नाइट्स में होता है, आप छोटी छोटी चीजें करते चलते हैं और वो आगे जाके
1: बड़ी
0: जर्नी
1: हो
0: में
1: जाती
0: कहीं
1: हैं।
0: कहीं काम आती हैं। तो
1: बिल्कुल
0: ये जर्नी में ऐसा लग रहा था कि कॉमिक्स से ही छूट रही है, मगर फिर कॉमिक्स इस तरीके से वापस मेरे जीवन में आ जाया करती थी। तो इसकी वजह से हमें वो शो करने को मिला, हमने वो शो किया। पहला सीजन मैंने डेवलप करने में को डेवलप किया था लोगों के साथ में। इसके बाद कुछ और एनिमेशन की चीजें हुई, एनिमेशन छोड़ के फिर मैं बाहर आया। मैं एनिमेशन से थोड़ा सा एक रास्ता आ गई थी एनिमेशन में, तो मैं उससे बाहर आना चाहता था। दूसरी चीज थी कि मैंने मेरे जो हीरोज हैं जिनके साथ काम करने का एक सपना होता है हमारा, वो मैंने करीब करीब पूरा कर लिया था। मैंने राजा मौली साहब के साथ काम कर लिया है, अमिताभ बच्चन साहब के साथ काम कर लिया, स्टैनली के साथ काम कर लिया है। तो अब इससे बड़ा क्या, या तो इससे बड़ा कुछ हो।
1: बिल्कुल।
0: शोले कर ली थी तो इससे नीचे जाने का कोई मतलब
1: मतलब
0: नहीं
1: नहीं
0: बनता
1: था।
0: था। तो मुझे लगा कि अब इंडस्ट्री बदलनी चाहिए मुझे, नहीं तो फिर वही हो जाएगा, फिर मैं वो साइकिल में दौड़ता रहूंगा। तो मैंने लाइव एक्शन में हाथ आजमाना शुरू किया। मैं निर्देशक बनना चाहता था, तो मैंने कहा कि मैं निर्देशन करूंगा। इस बीच मैंने एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी बहुत पहले, तो वो फिल्म की स्क्रिप्ट घूम रही थी स्टूडियो स्टूडियो। वो 2018 के आसपास एक स्टूडियो ने ले ली और उन्होंने बोला इसको वेब सीरीज में कन्वर्ट कर देते हैं। ये एक मिडिल क्लास ह्यूमर था, मुझे ऋषिकेश मुखर्जी साहब की फिल्में बहुत पसंद हैं, तो ये उस स्पेस में था। और समय तक कोई मिडिल क्लास ह्यूमर कर नहीं रहा था, तो बहुत रिस्की माना जाता था ये। अब तो क्या है कि बहुत सारे शोज आ गए
1: ज्यादा
0: हैं,
1: हो रहे
0: बहुत सारी
1: हैं।
0: चीजें आ गई हैं, उस समय में बहुत रिस्की माना जा रहा था। और तकदीर से मुझे वो डायरेक्ट करने भी मिला, और मुझे कुछ मेरे बहुत पसंदीदा एक्टर्स हैं जिनको डायरेक्ट करने मिला मुझे, तो मैंने डायरेक्ट किया। फिर मुझे लगा कि, और वो हुआ क्या कि मेरे डायरेक्ट करते करते मैं वो सीरीज जो है पहले 6 एपिसोड की थी, फिर उन्होंने उसको 12 बना दिया, फिर उसको 24 कर दिया। अब 24 एपिसोड मैं लिखूं भी और डायरेक्ट करूं वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो पहले 6 एपिसोड करके मैंने वो सीरीज लिखी, और धीरे धीरे करके मैं लाइव एक्शन की तरफ मुड़ने लगा।
1: इस सीरीज का क्या नाम था?
0: इस सीरीज का नाम है बब्बर का टब्बर। नाम क्योंकि मैंने नहीं दिया है तो आप मुझे जज ना करें।
1: ठीक है।
0: हाँ,
1: इन दिनों क्या चल रहा है?
0: इन दिनों एक शो है जो मैं लिख रहा हूँ, और लिमिटेड शो है, 5 एपिसोड का वो लिख रहा हूँ। एक फिल्म लिखी है जो एक बड़े स्टूडियो ने ले ली है। एक फिल्म मैं खुद डायरेक्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे ख्याल से 1 महीने के बाद मैं उसको लिखना शुरू करूंगा। मगर उसकी कहानी मेरे पास है, तो मुझे मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा समय मुझे उसको लिखने में लगेगा। एक कॉमिक्स अभी अभी खत्म किए करके, जो अभी मुंबई में लॉन्च हुई थी, वो एक फिल्म पर बेस्ड कॉमिक है। वन नाम की एक फिल्म आ रही है, तो उसका एक स्पिन ऑफ कॉमिक है वो, तो वो काफी बढ़िया लॉन्च हुआ अभी पिछले हफ्ते। मैं चाहता हूँ इस साल मैं 2 किताबें और करूँ।
1: अच्छा।
0: हाँ, एक मेरी कॉमिक है जो किसी भी समय इस साल आ जाएगी, वो बन के रेडी है। हाँ, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जुलाई अगस्त तक आ जाएगी वो किताब। इसके अलावा मुझे पता नहीं, कुछ और छूट रहा हो तो।
1: यहां एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: मुकद्दर का सिकंदर,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: टाइटल ट्रैक, कल्याण जी
1: बोलिए।
0: आनंद जी, इंदिवर।
1: क्या बात है, क्या बात है, ये गाना सुनते हैं।

0: आलो, क्या आपको लगता है कि कॉमिक्स का दौर अब बहुत सुनहरा दौर बीत चुका है?
1: जो मेरे अंदर का कॉमिक्स प्रेमी है वो इसको कभी नहीं मानेगा। लेकिन कॉमिक्स या किसी भी मीडियम का दौर मुझे ऐसा नहीं लगता कि बीतता है, ये एक साइकिल है, चक्र है। तो ये खत्म होता है और फिर आता है। तो जैसे भारत में जो फैंस थे उन्होंने अपने या तो पब्लिकेशन शुरू किए हैं या किताबें बनानी शुरू की हैं। हम भी उनमें से एक हैं, हमने भी अपनी एक कॉमिक बुक कंपनी शुरू की है। तो उसमें आइडिया ये था कि हम वो किताबें करेंगे जो हम पढ़ना चाहते हैं, और हमें पढ़ने के लिए किताबें नहीं मिल रही हैं फिलहाल, तो वो कर रहे हैं। हम बच्चों के लिए किताबें कर रहे हैं और बहुत अच्छा रुझान है। और एक दूसरी चीज़ जो कॉमिक्स के लिए संजीवनी बूटी साबित हो सकती है वो है कॉमिक्स का अडेप्टेशन शोज में, फिल्म्स में, एनिमेशन शोज में। और मुझे लगता है कि वो दौर हमारे यहाँ करीब करीब आ चुका है। अगर अमेरिका भी देखें तो मार्वल या डीसी को अपनी पहली फिल्म बनाने के पहले, सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है, 77 या 78 में, तो करीब 40 साल लगे हैं, है ना। स्पाइडरमैन 1963 या 62 का है, 63, और पहली स्पाइडरमैन 2002 में आई है। तो इतना समय तो लगता है, 40 साल का समय तो लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा कॉमिक्स उद्योग है वो ये अपने 40वें वसंत में प्रवेश कर चुका है करीब करीब। तो अब दो चीजें हैं, एक तो जो अब नए फिल्म मेकर्स हैं या जो नए क्रिएटर्स हैं, ये वो लोग हैं जो ये कॉमिक्स पढ़ के आए हैं,
0: बिल्कुल
1: वो फैंस हैं पहले, क्रिएटर्स बाद में। बहुत लोगों का ऐसा है कि उनका सपना है कि एक नागराज पे कॉमिक बने या डोगा पे कॉमिक बने,
0: बनते
1: चाचा
0: बनते
1: चौधरी
0: रह
1: पे
0: जाती
1: शोभा।
0: है,
1: हाँ,
0: मतलब कई बार
1: डोगा
0: अनाउंस
1: डोगा
0: होता है।
1: डोगा की तो मैंने भी लिखी है फिल्म,
0: हाँ
1: एक ड्राफ्ट तो मैंने भी

0: हाँ तो वो बनी नहीं, लेकिन चाचा चौधरी पे शो बन गया है। लेकिन चाचा चौधरी पे मुझे लगता है कि फिल्म बन सकती है। चाचा चौधरी और राका बहुत अच्छे किरदार हैं जिन पे कुछ बन सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिन पे मुझे लगता है कि चीज़ें आज नहीं तो कल बननी शुरू हो जाएंगी। मेरी जनरेशन तो ये फिल्में देखेगी।
1: बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया।
0: तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि दौर चला गया है। मुझे ये लगता है कि इस मीडियम को थोड़ा सा इवॉल्व होने की ज़रूरत है, जो इवॉल्व वो हो रहा है। बस ये कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने का
1: दौर
0: जो
1: है
0: दौर है।
1: बिल्कुल। तो हम उम्मीद करें कि ये चीजें जल्दी सामने आएंगी। आलोक, बहुत अच्छा लगा आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और हमसे इतनी सारी बातें की।
0: शुक्रिया यूनुस भाई, मैं जैसा कह रहा हूँ कि ये मेरे लिए एक अलग तरीके का मोमेंट हो गया है, क्योंकि मैं स्कूल में था तब से मैं आपको सुनता आ रहा हूँ, आपसे मिलना भी होता रहा है, मैं यहाँ
1: बिल्कुल।
0: आके मैंने वाणी कोर्स भी किया है तो मेरे लिए घर वापसी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: हाँ, और क्या कहूँ मैं,
1: बहुत बहुत
0: शुक्रिया
1: शुक्रिया, फिर मिलते हैं।
0: जी।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे लेखक, निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम का संपादन किया मनीषा सिंह ने और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के मेहमान।

जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई। विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3:30-4।
3: श्रोताओं, विविध भारती के कार्यक्रमों का प्रसारण आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 5 बज चुके हैं। समय हो गया है आज की पहली सभा को यहीं पर समाप्त करने का। अब से 1 घंटे बाद यानी कि 6 बजे से दूसरी सभा लेकर हम आपके समक्ष फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें, नमस्कार।

नमस्कार, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 110.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हफलंग केंद्र है। हमारे स्टूडियो के घड़ी में इस समय शाम के 6:17 हुए हैं। आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करते हुए आरंभ करते हैं आज की दूसरी सभा।

श्रोताओ, कार्यक्रम को आरंभ करने से पहले आइए जान लेते हैं इस सभा में प्रसारित कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर में यानी 6:05 से आप सुन पाएंगे मार कार्यक्रम, जिसमें आज भक्ति गीत सुन पाएंगे देवोरी मार और उनके साथियों की आवाजों में। 6:25 से सुन पाएंगे जेमे कार्यक्रम, जिसमें लोकगीत सुन पाएंगे लुंगबुइले जेमे और उनके साथियों की आवाजों में। आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से रिले किए जाएंगे हंधियार आंचलिक बातरी, समय रहेगा शाम 6:45। शाम 7 सुन पाएंगे डिमासा कार्यक्रम, जिसमें खांडोलाल हकजर और खांडोलाल हकजर की आवाज में सुन पाएंगे

शाम 7:20 पर कार्बी कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे भक्ति गीत वेजो मिलिकपी और उनके साथियों की आवाजों में। कुकी कार्यक्रम के तहत आधुनिक गीत सुन पाएंगे चनमिन थांग थांगयू और उनके साथियों की आवाजों में शाम 7:40 पर। रात 8 बजे सुन पाएंगे कुछ हिंदी फिल्मी गीत

एक ही फिल्म से। ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे रात 8:30 पर, जिसमें एक ही फिल्म से कुछ हिंदी फिल्मी गीत आपको सुनवाएंगे। 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे समाचार संध्या। रात 9 का समय रहेगा नेपाली गीतों का, इसमें कुछ पारंपरिक नेपाली गीत आप सुन पाएंगे विभिन्न कलाकारों की आवाजों में। और सभा के अंत में यानी कि रात 9:30 पर सुन पाएंगे चित्र गीत कार्यक्रम। तो श्रोताओं, ये थे इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी।

दोस्तों समय हो गया है मार कार्यक्रम का। सुनते हैं कुछ भक्ति गीत देवोरी मार और उनके साथियों की आवाज़ों में।

देवोरी मार और उनके साथियों के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही आज का मार कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हफलंग केंद्र है। दोस्तों, आरंभ करते हैं जेमे कार्यक्रम और सुनते हैं लोकगीत लुंगबुइले जेमे और उनके साथियों के आवाजों में।

लुंगबुइले जेमे अरुण के साथियों के गाए इस लोकगीत के साथ ही आज का जेमे कार्यक्रम यही पर समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलाइन केंद्र है। श्रोताओ, कुछ ही देर में आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से रिले किए जाएंगे हंधियार आंचलिक बातरी।

आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से रिले किए गए हंधिया और आंचलिक बातरी अभी आप सुन रहे थे। सभी श्रोताओं का आकाशवाणी के हफलंग केंद्र में पुनः एक बार हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, अब आरंभ करते हैं डिमासा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में खंडोलाल हगजर की आवाज में सुनते हैं लोकगीत।

Yakung makasilam kafure cibudu.

Oh,

Chalechang akong malukase.

알레샹지 콩마 루카보 샹용니에 무코모 자이낭 안 파이시

이 김기지 발길에 냉랭.

đầu thế lễ đầu là đầu lấy là

Mit auf Angro Kanadao, sein Leila.

你想回西厢去接下张罗，安排西东去。

À, về lên lại số xa không ra đâu, đâu vào đây đâu là đâu, hóa ra đâu.

와 발게

0: যায়, এই জো হাজাই রে খরমন হাজাই রে ফাগে গাওয়া খাশেলে।
1: खंडोलाल हकजर के गाए इस लोकगीत के साथ ही आज का डिमासा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हफलंग केंद्र है। श्रोताओं, अब आरंभ करते हैं कार्बी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सुनते हैं भक्ति गीत वेजो मिलिक्पी और उनके साथियों की आवाजों में।

वेजो मिलिक भी और उनके साथियों के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही आज का कार्बी कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हाफलाइन केंद्र है। श्रोता, स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों का अंतिम कार्यक्रम है कुकी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सुनते हैं आधुनिक गीत चोनमिन थांग थांग यू और उनके साथियों की आवाजों में।

चन्मिन थाङ थाङ्यू अरुण के साथियों के गाए इस आधुनिक गीत के साथ ही आज का कुकी कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हफलंग केंद्र है। श्रोताओ, अब आरंभ करने जा रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक के गाए एक खूबसूरत गीत से। फिल्म का नाम है जानम समझा करो।

0: अब सुनते हैं सरफरोश फिल्म का एक गीत जिसे आमिर खान और अलका याग्निक ने गाया है।
1: अजय डोंट माइंड, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम्हें इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सूझता। गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
2: बिल्कुल आती है, सुनो।
1: सुना।
2: अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ न लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ न लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा न लगे। आदाब।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: दोस्तों, कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए आइए अब सुनते हैं उदित नारायण के आवाज में पापा कहते हैं फिल्म का एक गीत।

श्रोताओं, फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं कुछ खूबसूरत गीत। अगला गीत परदेस फिल्म से, और इसे गाया ही कुमार शानू ने।

फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम इस गीत के साथ ही समाप्त होता है, पर दोस्तों मनोरंजन का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। आइए अब सुनते हैं एक ही फिल्म से कुछ गीत, और आज का फिल्म है बाजीराव मस्तानी। पहला गीत जावेद बशीर की आवाज़ में।

पंडित बिरजू महाराज और श्रेया घोषाल के आवाजों में आपने सुने ये खूबसूरत गीत। दोस्तों, इस समय आप सुन रहे हैं एक ही फिल्म से कुछ गीत, और आज का फिल्म है बाजीराव मस्तानी। कार्यक्रम का अंतिम गीत श्रेया घोषाल और गणेश की आवाज में सुनते हैं

0: तो दोस्तों, इस गीत के साथ ही एक ही फिल्म से इस कार्यक्रम का भी अंत यहीं पर होता है। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 110.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफ लाइन केंद्र है। कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे समाचार संध्या।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा वे नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले दो दिन तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना। और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
3: सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
2: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा ने इसे कल पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने आज विधेयक संसदीय समिति को भेजने को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के

0: खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है।
1: पक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर एक बार फिर कहा है कि वे विभिन्न घटनाओं पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं।
2: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ओपोजिशन जवाब सुनना नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में चर्चा को लेकर विपक्ष पर बार बार अपना रुख बदलने का आरोप लगाया है।
3: विपक्ष पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। इस सत्र के शुरुआत से ही सरकार लगातार बातचीत कर रही है। पहले वो चर्चा डिमांड करते हैं, चर्चा के लिए सरकार तैयार होती है तो अपना स्टैंड बदल देते हैं। बार बार उनके रवैये में इस प्रकार का बदलाव ये स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष विषयहीन है, सदन चलने नहीं देना है।
0: उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक विकास के प्रमुख इंजनों में से है, लेकिन निजी पूंजी आकर्षित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। श्री गोयल ने भारतीय उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक बाजारों में ले जाते समय चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का आग्रह भी किया। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि नौ मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं।
4: भारत में उभरती हुई ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती है। पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है कि ये $4 trillion की आज की इकोनॉमी 2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के मनाएंगे तब ये $30 trillion की इकोनॉमी कम से कम बन जाने वाली।
0: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि एक जड़ी बूटी एक मानक पहल का उद्देश्य पारंपरिक औषधियों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता मजबूत करना है। नई दिल्ली में श्री जाधव ने कहा कि ये पहल भारत की समृद्ध जैव विविधता और पारंपरिक चिकित्सा विरासत की रक्षा में सहयोग देगी। इस बीच आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक आयोजित की। श्री जाधव ने कहा कि ये समिति हिंदी के उपयोग और प्रचार को मजबूत करने और इसे जन कल्याण तथा संचार का एक प्रभावी माध्यम बनाने के लिए महत्वपूर्ण मंच है। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडरब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है।

0: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि देश में लगभग 440 अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप पंजीकृत हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर देते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने 52 गैर सरकारी संस्थाओं को विभिन्न अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए 113 अधिकार पत्र प्रदान किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल और माओवाद से अत्यधिक प्रभावित रहे बस्तर इलाके में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए।
1: छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में शांति, एकता और राष्ट्र निर्माण का संदेश लेकर आज से तिरंगा यात्रा शुरू हुई है। इस यात्रा का नेतृत्व छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा कर रहे हैं। यह यात्रा बस्तर के दुर्गम और आदिवासी इलाकों से होकर गुजरेगी। विशेष तौर पर यह यात्रा उन क्षेत्रों से होकर गुजरेगी जहाँ पूर्व में माओवादियों ने बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था। 3 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा 14 अगस्त शुक्रवार को बीजापुर जिले के कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर पहुंचकर संपन्न होगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। हरियाणा के भिवानी में शहीद मदन लाल ढींगरा स्मारक से एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। महाराष्ट्र में देशभक्ति रैलियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान देशभक्ति, राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। मिजोरम में दोपहिया वाहनों की एक रैली का आयोजन किया गया। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की है। इसके कारण कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। इसके अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल और उससे सटे बांग्लादेश के तटों से होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। मुंबई में आज घाटकोपर पश्चिम के चिराग नगर स्थित एक चौल में भूस्खलन होने से 7 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। सुबह एक छोटी पहाड़ी से मिट्टी और मलबा चौल के 2 से 3 कमरों पर गिर गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12 की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपना परिणाम डिजी लॉकर रिजल्ट पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। JPSC और JSSC सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। विपक्ष के नेताओं ने भी प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को अपना समर्थन दिया है। आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर 31 राज्यों में 50,000 से अधिक पौधे लगाए गए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। दुनिया के कई हिस्सों में आज महत्वपूर्ण खगोलीय घटना पूर्ण सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण उत्तरी ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, अटलांटिक महासागर, स्पेन और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। बेंगलुरु स्थित रमन अनुसंधान संस्थान ने सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की जटिल चुंबकीय संरचना का अध्ययन करने की व्यवस्था की है। भारत से दिखाई न देने वाला ये पूर्ण सूर्य ग्रहण रात 9:04 पर शुरू होगा और चंद्रमा की छाया सूर्य को 2:18 तक ढक कर रखेगी। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के 3रे दिन भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। कनाग लक्ष्मी, राजेंद्रन, शांतिमोल शेरजन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किए। वहीं जॉयस आशिता ने रजत और कुमारिशन पद्मा गीशो निधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाथियों के

0: संरक्षण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री यादव ने कहा कि हाथियों की सुरक्षा के लिए कई आधुनिक उपाय किए जा रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा वे नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले दो दिन तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना। और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए गए समाचार संध्या अभी आप सुन रहे थे। श्रोताओ, आप सभी का आकाशवाणी के हाफलाइन केंद्र में पुनः एक बार हम स्वागत करते हैं।
2: हेलो हाफलॉन्ग, आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हाफलॉन्ग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हाफलॉन्ग, हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे, यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं। और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर। नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हाफलॉन्ग।

दोस्तों आज बुधवार है और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं नेपाली गीतों का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम के जरिए सुनते हैं कुछ नेपाली पारंपरिक गीत विभिन्न कलाकारों की आवाज़ों में।

श्रोता, अब तक आप आनंद ले रहे थे विभिन्न कलाकारों की आवाजों में कुछ नेपाली पारंपरिक गीतों का। इसके साथ ही आज का नेपाली गीतों का यह कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।

0: आपके गीत। दोस्तों, FM 100.2 MHz पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत, हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूजडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों, आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर WhatsApp करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, KYC अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओ, हम आकाशवाणी के हफलंग केंद्र से बोल रहे हैं। अब आरंभ करने जा रहे हैं हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्र गीत। इस कार्यक्रम में हम आपको हर रोज कुछ खूबसूरत गीत सुनवाते हैं। आज कार्यक्रम का शुरुआत हम करेंगे लता मंगेशकर और उदित नारायण के गाए एक बेहद खूबसूरत गीत से, और फिल्म का नाम है दुश्मन। तो आइए दोस्तों, लेते हैं आनंद इन गीतों का।

दोस्तों, ये मज़ेदार गीत आपने सुने जिंदा दिल फिल्म से, और आवाज़ें थी शब्बीर कुमार तथा सरिका कपूर की। इस समय आप सुन रहे हैं चित्रगीत कार्यक्रम, और आइए दोस्तों सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, गैम्बलर फिल्म से कुमार सानू और साधना सरगम के आवाज़ों में।

दोस्तों, इस खूबसूरत गीत के साथ ही समाप्त होते हैं आज का चित्रगीत कार्यक्रम। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। हमारी स्टूडियो के घड़ी में इस समय रात के 10 बज चुके हैं। समय हो गया है आज की दूसरी सभा को समाप्त करने का, यानी आपसे विदा लेने का। कल पहली सभा के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी संयुक्ता को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि। जय हिंद।